107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, शक संवत 1948, तदानुसार 26 मई सन 2026 है। प्रातः की 5:55 हुए हैं। अब हमारे

तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

राम क्षण क्षण में श्याम है। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान।

नमस्कार श्रोताओं, सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर आपका चहेता कार्यक्रम पुष्पांजलि। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आपके समक्ष उपस्थित हूं इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर। और इस आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश करते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की चरणों की वंदना के साथ।

श्रोताओं, प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। आज की इस भोर में चलिए अपने विचारों की मैल को भक्ति के इस निर्मल जल से धो डालें और खुद को उस परम सत्य के लिए तैयार करें, एक और सुंदर भजन की प्रस्तुति के साथ।

श्रोताओं, मंदिर के द्वार तो बंद हो सकते हैं, पर ईश्वर के द्वार कभी नहीं बंद होते। विश्वास की डोर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पुकार यहां से निकले और गूंज ब्रह्मांड के उस छोर तक सुनाई दे। आइए संगीत की इन्हीं लहरों पर सवार होकर अपने विश्वास को एक नई उड़ान दें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरी यानी तरुश्री के साथ। अक्सर हम पत्थर की मूरत में उस निराकार को ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे भीतर की करुणा में मुस्कुरा रहा होता है। आज जब ये भजन आपके कानों में घुलेंगे तो बाहर नहीं अपने भीतर जाकिएगा, शायद वहीं कहीं उसका वास मिल जाए, है ना। तो आइए एक और मधुर भजन

श्रोता, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन एक छोटा सा दिया उसे चुनौती देने के लिए काफी है। हमारे जीवन का अंधकार भी केवल ज्ञान और भक्ति की एक किरण से मिट सकता है। ये पुष्पांजलि जो कार्यक्रम है, उसमें हम सिर्फ मधुर भजन ही नहीं सुनते, बल्कि उनमें खोकर प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति के पुष्प अर्पित करते हैं। और जैसा कि आज मंगलवार है, ज्येष्ठ माह के मंगलवार की महिमा ही अलग है, तो आज पुष्पांजलि की यात्रा इस मधुर भजन के साथ पूरी करते हैं।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। समारोह में उत्तर प्रदेश के डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, डॉक्टर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटा में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी आज पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। चंदौली में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने जनगणना 2027 की प्रगति को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने जनगणना में लगाए गए सभी कर्मियों से जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि

जनगणना के दौरान किसी कर्मी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना से जुड़े सभी कर्मी की आपसी तालमेल बेहतर रखते हुए टीम भावना से काम करें। उन्होंने जनपद के लोगों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता और सहयोग की अपील की। प्रदेश में भी भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। कई जिलों में तापमान 43 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र भीषण गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां लगभग हर जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। गर्मी के चलते राज्य में बिजली की मांग भी अधिक है। मांग के अनुरूप प्रदेश के बिजली विभाग ने कल 31,824 मेगावाट की अधिकतम मांग पूरी की, जो न केवल राज्य में अब तक की सबसे अधिक बिजली आपूर्ति है, बल्कि देश के किसी भी राज्य द्वारा अब तक की सबसे अधिक आपूर्ति भी है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
6: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदा बहार गीत
5: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

एक बार फिर से बहुत ही प्यारी सी गुड मॉर्निंग दोस्तों, जरा एक बारी झांक लीजिए खिड़की के उस पार। जी हाँ, अब तो आजकल सुबह तो होती नहीं, डायरेक्टली दोपहर हो जाती है। जिस तरह से सूरज देवता हम पर ज्यादा मेहरबान है लेकिन फिर भी ये जो सिलसिला शुरू होता है ना 7 बजे से और 8 बजे तक ये जो चलता है, वो ये कारवां है जो आपको उस दौर में पहुंचा देता है, ऐसी महफिल सजा देता है जहां घड़ियां और वक्त रुक से जाते हैं और यादें अंगड़ाई लेती हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा दौर है ना, वो वापस आ जाता है इन्हीं खूबसूरत नगमों के साथ।

अपनी जिंदगी में कभी कोई शेर ना पढ़ा हो, लेकिन जब दिल में कोई खास जगह बना लेता है ना, तो दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है, लफ्ज खुद ब खुद मिलने लगते हैं और आप हैरान रह जाते हैं, अरे कहीं मैं शायर तो नहीं।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सिरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

दोस्तों लाइफ में बहुत कुछ सोच विचार कर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बिना सोचे समझे, बिना जाने पड़ताले, बस ऐसा लाइफ में ऐसा पल आता है जिसको मन कहता है बस उस फ्लो के साथ बह जाओ, है ना। तो अब इतने स्लो मोशन गानों के साथ अब थोड़ा सा थिरक लेते हैं और ये जो बीट्स है ना उस पर थोड़ा सा थिरकिए और सोचे विचारे बिना जो काम किया है ना उसको तो चलो हो गया, लेकिन जब कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि जब सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और बस लगता है बस इसी पल के साथ बह लो, तो आइए फिर रखते हैं

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार गीत। समय हो रहा है 7:32 और आपके साथ बनी हुई है आपकी दोस्त तरुश्री। इंतजार चाहे किसी भी शख्स का हो, पुरानी यादों का हो या फिर उस सुकून के पल का हो, जब वो इंतजार अपनी हद पार करता है ना, तो ऐसे खूबसूरत नगमे बनते हैं जो आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। उनको सुनने के लिए हम हमेशा इंतजार करते हैं, थोड़ा सा बेकरार रहते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत मेरे यानी तरुषी के साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो। दोस्तों, जब दिल में किसी के लिए बेपना मोहब्बत होती है और सामने वाले से थोड़ी सी शिकायत भी हो तो दिल चुप नहीं बैठता, वो गुनगुना उठता है। तो अगला जो नगमा है वो उसी मीठी सी तकरार और बेशुमार प्यार के नाम और 70 के दशक का वो गाना जब आप सुनेंगे तो कुछ और भी याद आएगा।

हाँ जी, पन्ना की तो तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, और हमारी तमन्ना ये कि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी 8 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद 8:15 पर एक और दोस्त के साथ लौटूंगी मैं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को

0: हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से

0: इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहाँ वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच हुर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम।

0: का मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत।
1: सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
2: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
1: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
2: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
1: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
0: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
1: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
2: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: में रंग भरना है। गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपकी दोस्त तरुषी और मेरे साथ एक और दोस्त जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ।
1: वेरी गुड मॉर्निंग तरुषी, और मैं हूं आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आज की इस प्यारी सी सुबह का बहुत अच्छी तरह से आपने एंजॉयमेंट किया होगा, क्योंकि सुबह से ही बहुत भक्तिमय माहौल बना हुआ है। उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे से गीत भी आप तक पहुंचे और अब गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर आपके साथ प्रारंभ कर रहे हैं हम दोनों। और साथ में आज है ज्येष्ठ मास का चौथा बड़ा मंगल, आप सभी को इस बड़े मंगल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां।
0: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हमारा जो प्रोग्राम है मॉर्निंग लखनऊ, उसमें और भी बहुत सारी चीजें, बहुत ही कहता ना बातें बाकी हैं, इंफॉर्मेशन बाकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्र।
1: जी हाँ दोस्तों, 8:24 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और आपके दो दोस्त रतन और तरुषी आपके साथ जुड़े हुए हैं और अब समय हो चुका है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को आप तक पहुंचा दिया जाए। तो तरुषी, आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कह रहा है?
2: रतन, आज का मॉर्निंग मंत्रा जो है ना, जो हम लोग नॉर्मली सुबह का नाश्ता करते हैं, तो उसी से थोड़ा सा मिला जुला मैंने उसी से ही निकाला है।
1: क्या बात?
2: तो आज का मॉर्निंग मंत्रा कहता है कि सुबह की कड़क चाय की पहली चुस्की हमें ये सिखाती है कि लाइफ में उबाल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना आए, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो स्वाद हमेशा बेहतरीन ही निकल कर आता है।
1: क्या बात
2: है ना? तो मुश्किलें सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है, डेड एंड नहीं है, तो हार नहीं माननी है, बस कुछ नहीं, गियर बदलना है, मुस्कुराना है और फिर अपनी जो किस्मत है, अपनी जो सफलता की जो राह है, उसको फिर से एक नई मजबूती के साथ, एक नए संघर्ष के साथ उसको जीतना है।
1: क्या बात है दोस्तों, बस पॉजिटिविटी के साथ अपनी जो उन्नति का है, जो अपने सक्सेस का गियर है, वो बहुत कायदे से बदलिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा मॉर्निंग मंत्र और बहुत कुछ हमें ये सिखाता है। तो आज आप इस पॉजिटिविटी के साथ, इस पॉजिटिव मंत्र के साथ अपने दिन की करियर शुरुआत हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: आठ बजकर 31 मिनट का समय हो रहा है तरुषी, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि सुबह यानी 6 बजे से ही जैसे ओपनिंग होती है एफएम रेनबो की, हमारे दोस्त जुड़ जाते हैं, बहुत शिद्दत के साथ जुड़ते हैं और अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम आशा यही करते हैं कि जब तक ये प्रोग्राम कम्प्लीट नहीं होता तब तक हमारे फ्रेंड्स जरूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और उसके बाद भी बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें मौसम की तरुषी, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त गर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी वाला हो गया है, और कल से नवतपा की भी जो है स्टार्टिंग
2: शुरुआत हो गई,
1: शुरुआत हो चुकी है। तो नवतपा का पहला एक जो दिन है वो बीत चुका है, 2 जून तक के चलना है, और इसमें ऐसा बताया जाता है कि हीट वेव्स बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं और इससे पूरी बॉडी में डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आप अगर जब भी बाहर निकलें तो पानी भरपूर पी के निकलें, और साथ में कोशिश ये होनी चाहिए कि जब बहुत ज़रूरी काम हो आपको तभी आप बाहर निकलें, अन्यथा 10 से 5 के बीच का जो समय है वो

0: बहुत ऐसा समय दौर होता है, बहुत गर्म दौर होता है, जिसमें अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत आपको समस्या हो सकती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ही अपने दिन की शुरुआत कीजिए, साथ में अपनी हेल्थ के लिए जब आप बाहर निकलते हैं अब ऐसी चीज़ों के लिए, तो काम के लिए, तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखते हुए आप अपने साथ पानी की बॉटल है, फुल स्लीव्स के कपड़े हैं, गमछा है, कैप है, ये बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि लेके चलनी बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा। और रतन, जैसा कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, और ज़्यादातर बच्चे ज़िद करते हैं कि अरे छुट्टी स्टार्ट हो गई है, मम्मी पापा घूमने कब जाएंगे, बाहर जाना है, मॉल घूमना है, ये वो फलाना ढिमाका। क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये सब चीजें देखते हैं और आसपास के बच्चे जिद करते हैं अपने बच्चों की, जैसे अड़ोस पड़ोस में भी बच्चे आते हैं। दूसरा चीज, नानी के घर जाने का जो क्रेज बना रहता है ना, और उसमें भी आजू बाजू के जो बच्चे होते हैं वो मिलके एक संगठन बना लेते हैं और साथ में खेलने के लिए निकल जाते हैं बाहर पार्क में या कहीं भी। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि बेशक जो गर्मी का प्रकोप है वो थोड़ा शाम को कम हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत बीमारियां हो सकती हैं जिस तरह से संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं। और गर्मियों के कारण जो ये सब कहते हैं डिहाइड्रेशन जो जिस तरह से बढ़ रहा है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। और बच्चों को खासकर ये सब चीजें बताने की जरूरत है कि क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी
0: और
1: है।
0: साथ में अगर आप बच्चे जिद करते हैं, जैसे कि अभी तरुशी ने बोला कि बच्चे जिद करते हैं हमें बाहर जाना है, हमें घूमना है, ये तो आप मॉर्निंग का एक समय रखें कि पार्क में बच्चों को ले जाएं, उनके साथ आप भी जाइए। मॉर्निंग में करीब आप 4 बजे 4:30 बजे आप घर से निकल जाइए मॉर्निंग में। पार्क में जब आप जाते हैं तो वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। और इवनिंग में जब आप बाहर निकलते हैं तो भी पार्क में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो सुबह और इवनिंग का मौसम है वो तो सुटेबल है, लेकिन बीच वाला जो समय है वो थोड़ा सा हेल्थ के हिसाब से सही नहीं रहता। और ये जब नौतपा की बात होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट वेव हाई हो जाती है, तो इसलिए इसमें प्रिकॉशंस लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: अच्छा ये बताइए, किसको पता चला कल रात में आंधी आई थी?
0: हमारे पास तो कल जानते हैं हुआ ये, आंधी आने से पहले ही मैं अपने मोबाइल को लेकर कुछ काम कर रहा था और अचानक मेरे मोबाइल पर अलर्ट आता है कि अब से कुछ 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के अंदर ही लखनऊ और उसके आसपास कुछ क्षेत्रों के नाम दिए थे कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी, आंधी आएगी और बारिश भी होगी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये अलर्ट कल आ गया, तो मैंने मतलब कहा कि यार हमें कल सुबह जाना है और अगर पूरी तरह से इस तरह से अगर बारिश होगी तो फिर कैसे निकलेगा। और फिर मैंने आपके बारे में सोचा कि तरुश्री को तो सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में आना है, वो कैसे आएगी अगर इतनी बारिश हुई। लेकिन देखिए मौसम ऐसा रहा कि हवा चली लेकिन
1: बारिश नहीं हुई,
0: अपने साइड पे बारिश नहीं हुई।
1: लेकिन मैं बताऊं कि जब मैं कल रात में जैसे ही आंधी का प्रकोप शुरू हुआ तो हमारे जस्ट कमरे के बगल में आम का है पेड़, और उसमें जितने आम थे ना वो टप टप टप करके गिरने लगे, तो मुझे लगा आज ये पूरी की पूरी ये खेती समाप्त हो जाने वाली है।
0: तो मतलब तरह आम बन चुके थे या फिर
1: वो आम पक चुके हैं, वो अब वो उसका प्रकोप शुरू हो चुका है। बढ़िया आम,
0: मतलब आम खा पी क्या ही कायदे से आप
1: बिल्कुल। और दूसरी बात, जब मैं सुबह सबसे पहले उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने बालकनी का डोर देख के खोल के देखा कि आज मौसम कैसा है, मैं जा सकती हूँ ना। वैसे तो
0: दोस्तों ये, हाँ ये जो मौसम का हाल है, कभी कभी हम लोग वो भी डराता है कि भाई ऑफिस जाना है तो सही सलामत पहुंच जाए ताकि आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हो पाए, आपसे मुलाकात हो पाए। और देखिए कभी कभी चूंकि आज मंगलवार है, चौथा ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शन करने जा रहे हैं। और अभी जब मैं आ रहा था तरुषी तो बहुत जगह जगह पे, मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बहुत सारे भंडारों का आयोजन होने जा रहा था। कहीं सब्जियां कट रही हैं, कहीं सजावट हो रही है, कहीं प्रभु की पूजन आरती हो रही है। तो कुल मिलाकर जब मैं अपने घर से निकला तो रास्ते में जगह जगह मुझे भक्ति का ही माहौल मिला।
1: कितना अच्छा लगता
0: बहुत,
1: है,
0: बहुत आनंद आया। और लोगों में भी वो जोश, हाँ वो जोश लोगों में दिखता है कि हाँ अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए कितने आतुर होते हैं लोग। और वाकई में आराध्य से दर्शन करके उनके पास जाके जो शांति मिलती है, जो खुशी का अनुभव होता है, वो शायद कहीं और नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं और बढ़िया सा एक गाना सुनते हैं।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का।
1: आठ बजकर 43 मिनट और साथ में 4, 5, 6, 7 सेकेंड्स प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और आपके दो दोस्त रतन और तरुषी आपके साथ। और अब समय हो चुका है कि आज के मुद्दे को भी हम आप तक पहुंचा दें, क्योंकि मुद्दा हमारा ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बहुत गंभीरता से आप अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम हर दिन आपकी मेल्स का स्वागत भी करते हैं और आप हमें अपने जवाब भी भेजते हैं। तो आज का मुद्दा क्या होने वाला है तरुषी?
2: आज का मुद्दा मैं थोड़ा सा मौसम से ही रिलेटेड करने वाली हूँ, लेकिन प्लीज मैं गर्मी के बारे में बात नहीं करने वाली बहुत बातें हो गई गर्मी के विषय में, लेकिन मौसम से रिलेटेड ये कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट मौसम कौन सा है और क्यों है।
1: जी हाँ,
2: ये आप हमें बताइए।
1: बहुत सारे लोगों को बरसात पसंद होती है क्योंकि बारिश में पकौड़े खाने का आनंद अलग होता है, और अभी अभी मेल आई
2: उसमें भी खाना
1: बहुत, दो समोसे, दो कप चाय और चटनी भी साथ में थी। तो मतलब मौसम की जब बात हुई तो पहले हमें वही याद आया कि भाई बारिश का मौसम भी बहुत लोगों को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, और किसी को गर्मी का मौसम पसंद आता है, किसी को सर्दी का मौसम पसंद आता है और किसी को बसंत का मौसम पसंद आता है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे मौसम हैं, आपका अपना चॉइस क्या है आप हमें बताइए। हमारी मेल आई डी fmakashwani@gmail.com, इस मेल आई डी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें और आज के इस विषय पर अपने विचार हम तक पहुँचाएँ। हमें आपकी मेल्स का इंतज़ार है और गुड मॉर्निंग लखनऊ में हम लगातार आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने प्ले कर रहे हैं और भी जो जानकारियां हैं वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारा साथ निभाना होगा।
2: जी, और साथ निभाने के लिए मेल फटाफट कीजिए ताकि आप और हम एक साथ बातें कर पाए, आपके विचार जान पाए, क्या है आपका पसंदीदा मौसम और क्यों, ये मुझे जानना है।
1: तो
2: फटाफट मेल करिए, इंतजार कर रहे हैं हम।

0: 8:48, अरे 48 नहीं, हो जाओ 49 हो गए इतनी देर में
1: जी।
0: तो 9:00 के करीब हम पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ और भी बातें आप तक पहुंचा देते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम आपको पहुंचा देते हैं।
1: दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के तहत जिन विद्यार्थियों ने फीस जमा कर दी है उन्हें अब संबंधित विभाग में आवंटन पत्र के साथ फीस रसीद अपनी जमा करने के लिए कहा गया है और ये डेट दी गई है 27 मई की। तो 27 मई को आपको अपनी फीस की रसीद और साथ में अपना आवंटन पत्र वहां पे जमा करना है। अगर आप इसकी और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपको प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में होनी हैं उसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा विभाग ने बीए दूसरे चौथे और छठे सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की जो समय सारणी है वो जारी कर दी है और ये परीक्षा आपको बताना चाहेंगे कि 29 मई से 1 जून तक आयोजित की जाएंगी। और इसकी भी अगर आप पूरी जानकारी डिटेल्स में प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो जानकारियां हैं कहीं ना कहीं आपसे और हमसे जुड़ी हुई हैं और हमारे उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं
0: जी। और कुछ और भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट, बीटेक अगर आप करने के इच्छुक हैं क्योंकि अभी रिजल्ट्स निकल गए हैं और प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं कई सारे कोर्सेज की और साथ ही साथ पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, तो आपको बता दें यूपी टेक 2026 बीटेक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी एकेटीयू की ओर से जो यूपी टेक 2026 है उसके तहत जो है जितने भी कॉलेजेस हैं वो बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो सोमवार को यानी कि कल शाम से शुरू हो चुकी है। तो उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो उसकी आधिकारिक वेबसाइट है यानी कि www.aktu.ac.in पर दिए गए जो समर्थ पोर्टल है उस लिंक के जरिए यानी कि uptech.samarth.edu.in के माध्यम से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए 15 जून तक का आपको मौका मिलेगा और पंजीकरण शुल्क जो है वो ₹1,000 है। बीटेक के लिए पहले चरण में जेई मेंस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, वहीं पहले चरण का जो आवंटन है वो 27 जून को होगा। तो चयनित अभ्यर्थी जो होंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, वो सीट्स कन्फर्मेशन जो है वो 27 से 29 जून तक उनको जमा करनी होगी। तो ये पूरा प्रोसेस आप जाकर अच्छे से पता कर सकते हैं एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी aktu.ac.in पर जाकर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों 8:52 का समय हो चुका है और ये समय धीरे धीरे

में इशारा भी करने लगा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ के पहले घंटे को हम यहाँ पर विराम दें, क्योंकि जब तक इस घंटे को विराम नहीं देंगे तब तक अगले घंटे में आपसे मुलाकात कैसे करेंगे। तो न्यूज़ ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात भी होगी और बहुत सारी बातें भी होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए हम भेज रहे हैं, इसे हमारे साथ मिलकर इन्जॉय कीजिए और जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: कभी हमसे ही तुम्हारी सुबह होती थी, कभी चाय की चुस्की के साथ तो कभी घर की बालकनी में। अजी अखबार तो हाथों में यूं ही लिए रहते थे, लेकिन दिल तो हमसे ही लगा रहता था। किचन में खाना बना रहे हो या ऑफिस जाने की तैयारी हो, बस में सफर हो या ट्रेन, हर गाड़ी में मेरा ही साथ रहता था। वो चुप चुप के ऑफिस और कॉलेज में हमसे बातें किया करते थे, शाम को घर वापसी में भी मेरा साथ कहाँ छोड़ते थे। जब रातों में नींद नहीं आती थी तो मुझे साथ लेकर सो जाते थे। जिंदगी के हर मोड़ पर हम साथ रहते थे, कैसे प्यार की बातें और अपने जज्बात एक दूसरे से कहते थे। वो दिन और आज का दिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि समय के रफ्तार के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और सुनते रहिए हर रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक FM रेनबो।
1: नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है, यह समाचार आज कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। हिंदुस्तान ने लिखा है, प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिली, पंचायत चुनाव में देरी के कारण सौंपी गई बागडोर। दैनिक जागरण लिखता है, ग्राम पंचायतों में पहली बार प्रधान ही कल से प्रशासक, नहीं ले सकेंगे नीतिगत निर्णय। उपशीर्षक है, समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रशासक बनाने का निर्णय। नव भारत टाइम्स ने खबर पर शीर्षक दिया है, ग्राम प्रधान ही पंचायतों के प्रशासक, आज खत्म होगा मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल, नीति संबंधी फैसलों पर रोक। कल एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की खबर भी अखबारों की हेडलाइन बनी है। दैनिक जागरण ने खबर पर शीर्षक दिया है, पेट्रोल 100 के पार, पेट्रोल 2.61 रुपए तो डीजल 2.71 रुपए महंगा, चौथी बार बड़े दाम। हिंदुस्तान ने लिखा है, लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। अमर उजाला लिखता है, महंगाई का चौका, पेट्रोल ने लगाया शतक, वित्त मंत्री ने दिए संकेत और बढ़ेंगी कीमतें। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों की खबर को प्रमुख खबर बनाते हुए लिखा है, पद्म पुरस्कार 2026, धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री की कल हुई राज्य कर विभाग की बैठक से जुड़ी खबर पर सीएम के निर्देश को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, ईमानदार व्यापारियों की सुविधा सुरक्षा का रखें ध्यान योगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के विमान में आई खराबी की खबर ने भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर जगह बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, ब्रजेश पाठक के विमान से निकला धुआं, भत्सना एयरपोर्ट पर उड़ान भरने को तैयार था विमान। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, रनवे पर पाठक के प्लेन के इंजन से निकला धुआं, सुरक्षित निकाले गए। सुप्रीम कोर्ट की नीट को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ी खबर भी प्रमुखता से छपी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, नीट पेपर लीक से एनटीए ने नहीं सीखा कोई सबक, सुप्रीम कोर्ट। प्रदेश में जारी भीषण गर्मी से जुड़ी खबरें भी आज पहले पन्ने पर छपी हैं। अमर उजाला ने लिखा है, नौतपा के पहले दिन बदला मौसम, दिन में लू रात में आंधी। लखनऊ और आसपास के जिलों में भी तेज रफ्तार से चली हवाएं, अमृत विचार ने खबर पर शीर्षक दिया है, प्रदेश में

तपा की तपिश गर्म हवाओं से जनजीवन बेहाल। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
6: जी दोस्तों, 9:04 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर मैं रतन और मेरे साथ तरुश्री, हम दोनों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं।
7: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। और अब बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले अच्छा सा गाना सुना दे।
6: जी हाँ दोस्तों, गाना सुनाने से पहले एक बार ये भी बता दें कि आज का हमारा जो मुद्दा है वो क्या है। चूंकि मौसम की बात हुई है, नौतपा प्रारंभ हो चुका है और इसमें बहुत सारे लोग गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन हाँ आज का मुद्दा हमारा थोड़ा सा डिफर है। हम जानना ये चाहते हैं कि आपका जो पसंदीदा मौसम है वो कौन सा है और वो क्यों है, ये आपको हमें बताना है। मौसम कोई भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, क्योंकि बहुत सारे मौसम में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी होती हैं ऐसे मौसम से। तो आपका कौन सा मन पसंदीदा मौसम है और उसका क्या कारण है, आप हमें बताइए। हमारी मेल आईडी है FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com।

0: 9:10 मिनट का समय प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और आपके दो दोस्त तरुषी और रतन आपके साथ और दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रैफिक की तरोताजा अपडेट लेकर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज सर बड़ा मंगल है और बड़ा मंगल के अवसर पर थोड़ा सा शहर में प्रमुख मंदिरों पर जो हनुमान जी के मंदिर है वहाँ पर ज्यादा यातायात का प्रेशर रहता है और वहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इसके दृष्टिगत मंदिरों के आसपास कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई रहती है। तो इस दौरान जो हमारे लखनऊ शहर के जो प्रमुख हनुमान मंदिर है, जैसे की अगर हजरतगंज की बात करें तो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और हमारा हनुमंत धाम हनुमान मंदिर, ये जो दो प्रमुख हनुमान मंदिर है इधर, और हनुमान सेतु मंदिर जो महानगर क्षेत्र में है, और तीसरा अलीगंज क्षेत्र में दो प्रमुख मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर तथा पुराने हनुमान मंदिर का जो अलीगंज में है मंदिर
2: जी।
1: वो ये जो सभी जगह जो है अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। आज के दिन जगह जगह भंडारे भी हैं और भंडारे के कार्यक्रम के दौरान बस जो संचालक जो भंडारा संचालक महोदय है उनसे हमारा ये अनुरोध रहता है कि हम ट्रैफिक वॉलेंटियर अपने भंडारे के आसपास में लगाएं और साथ में जो है वाहनों को सड़क पर ना पार्क होने दें और सड़क के थोड़े से किनारे हट करके रहें, अपने भंडारे का संचालन कराएं ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना ना करना पड़े। और जो हमारे हनुमान मंदिर है हम इन सभी जगह पर पार्किंग व्यवस्था रखे हुए हैं। जैसे अगर आप हनुमान सेतु के लिए जा रहे हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय हमारा पार्किंग स्थल है, साथ ही कालविन तालुकेदार में हमने पार्किंग व्यवस्था करी है। हनुमान सेतु के पीछे का जो ग्राउंड है वो हमारा पार्किंग के लिए सुरक्षित है, तो आप कृपया पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहन को पार्क करें ताकि जो है किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े। यदि इस दौरान मार्गों पर कहीं भी आपको आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा होती है और आपको तत्काल कहीं जाना है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 94

0: 54 55 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बेहतर यातायात उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, जैसा कि आप हमेशा हमारे श्रोताओं को एक टिप जरूर देते हैं, तो आज क्या खास बात कहने वाले हैं हमारे श्रोताओं से, प्लीज बताइए।
0: सर, हम सभी श्रोताओं से यही अनुरोध करेंगे कि जैसे कि गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों के मौसम में जब भी अपने वाहन को आप निकालें तो आप प्री राइड चेक करें जरूर। जो है प्री राइड चेक में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने वाहन के टायर का हवा अवस्था देख लें। इसके बाद आप अपने टायर को प्रॉपर ब्रेक वगैरह सब चीजें जो चीजें होती हैं सावधानी सुरक्षात्मक सारी चीजों का आप एक बार एनालिसिस कर लें, चेक कर लें, उसके बाद ही अपने वाहन को निकालें। और जब आप रोड पर चलें तो रोड पर कृपया जो है ओवर स्पीडिंग से बचें। आप रेड लाइट जंप ना करें। आप अगर बाइक से हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। कार से हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। यातायात नियमों का पालन करें। सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
0: जी धन्यवाद सर।
1: तो दोस्तों, विकास सर तो जुड़े हमारे साथ और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक और हम तक पहुंचाई, और साथ में ये भी कहा कि चूंकि आज भंडारे का आयोजन है जगह जगह बड़े मंगल के कारण, तो जितने भी लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को ऐसी जगह पे पार्क करें जहां पर आने जाने वालों को असुविधा ना हो। तो ट्रैफिक रूल्स का इसी तरह पालन करते रहिए, अपनी भी सुविधा के साथ साथ दूसरों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।

0: जी मौसम की बातें हो रही थी, 9:19 का वक्त है और बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। मौसम, पसंदीदा मौसम की बात हो रही थी, तो आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों है वो पसंदीदा, इसके बारे में आप हमें लिख भेजिए। उससे जुड़ी कुछ यादें बता सकते हैं आप कि ऐसे मौसम में क्या हुआ था जिस वजह से ये मौसम हमें याद है। अच्छा रतन आप बताइए, मेल्स तो हम पढ़ते ही हैं, अभी ये बताइए आपका कौन सा पसंदीदा मौसम है।
1: अरे मैंने पहले ही बता दिया था कि वो बरसात वाला मौसम मुझे बहुत पसंद है, पकौड़े वकौड़े खाने को मिलते हैं जबरदस्त,
0: यही एक रीजन है।
1: और बरसात के मौसम में देखिए सबसे अच्छी बात होती है जब बारिश होती है ना, तो बारिश में जब मिट्टी भीगती है तो उसकी जो सूंधी सुगंध निकलती है वो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, और वो सिर्फ हमें बारिश के मौसम में ही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी।
0: ये तो बात
1: तो ये जो रीजन है हमें इस मौसम का सबसे अच्छा लगता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात, पूरी धरती को एक राहत देने का ये मौसम है। जब गर्मी होती है तो उसमें कहीं पानी की कमी होती है, कहीं कुछ होता है, पूरी धरती तप जाती है, और ऐसी स्थिति में जब बारिश होती है तो हर जगह खुशहाली होती है।
0: सबसे अच्छा पता है मुझे बारिश क्या क्या लगती है, सब कुछ हरा भरा दिखता है,
1: हरा भरा दिखता है ना। तो ये बारिश का जो मौसम है मुझे इसी कारण सबसे ज्यादा पसंद आता है। और जब बारिश का मौसम है उसका एक सबसे बड़ा आनंद ये होता है, आप घर में बैठे हो बालकनी में, आहा बारिश हो रही हो, है खूब तेज बारिश हो रही हो, और बारिश बस आपको देखने को मिल रही हो, और साथ में चाय और वाह वाह पकौड़े, क्या बात।
0: अब मैं सोच रही हूँ
1: उससे अच्छा, मतलब उससे अच्छा टाइम और क्या हो सकता है। आपसे फील करके देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आती है।
0: बहुत सही आपने कहा। अरे चलिए फिर हम लोग शामिल कर लेते हैं अपने मेल्स को। तो सबसे पहला मेल मैं शामिल करना चाहूंगी, गुलफ्सा सिद्दीकी जी मेल कर रही हैं और इन्होंने लिखा कि रतन भाई कल बुधवार को आएंगे, आप आएंगे पूछा जा रहा है आपसे।
1: देखिए जब आप बहुत दिल से और प्यार से हमें याद कर लेंगे तो हम जरूर आपसे मिलने आ जाएंगे।
0: चलिए बढ़िया है, फिलहाल उन्होंने मुद्दे पर कुछ नहीं लिखा है।
1: गुप्ता जी की मेल हम तक पहुंची है, कह रहे हैं सर जी सुप्रभात, मुझे गर्मियों का मौसम ज्यादा पसंद आता है क्योंकि कम कपड़ों में काम चल जाता है, और तरबूज खरबूजा ककड़ी आम ये सब फल गर्मियों में ही खाने को मिलते हैं, मगर अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, मुझे पांचवा मौसम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, ये मौसम है प्यार का जो किसी भी मौसम में को नहीं देखता है। कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: काफी रूहानी है कुलदीप जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुनेश कुमार जी हमें मेल कर रहे हैं लखीमपुर खीरी से और लिखते हैं कुछ लाइंस इन्होंने लिखी, इससे पता चल जाता है इन्हें बरसात का मौसम बहुत पसंद है जैसे आपको पसंद है
1: जी।
0: लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार जब खिड़की को छू जाए, मिट्टी की वो सौंधी महक रूह तक उतर जाए, अदरक वाली चाय है, और लिखे हैं तनुश्री और रतन की आवाज,
1: क्या बात,
0: बस फिर क्या मौसम भी गाने लगता है सांस, वाह।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: काले मेघा जब आसमान पर डेरा डाले, आपका शो सुने बिना सुबह कहाँ गुजारें, बूंदों की सरगम और गानों का नजराना, गुड मॉर्निंग लखनऊ संग हर दिन है सुहाना, क्या बात है।
1: बहुत बहुत
0: आपने तो

0: शुक्रिया, संगम बना दिया, ये तो इतना खूबसूरत आपने लाइन लिखी है।
1: प्यारी पंक्तियां हम तक पहुंचाने के लिए इतने दिल से आप गुड मॉर्निंग लखनऊ को सुनते हैं, एफएम रेनबो को सुनते हैं, बिल्कुल पता चलता है आपकी भावनाओं से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जावेद अख्तर साहब की भी मेल हम तक पहुंची है और ये मेल इन्होंने हमें रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से पहुंचाई है। गुड मॉर्निंग रतन और तरुषी जी, आज का मुद्दा में ये कह रहे हैं कि अच्छा है हम आज मौसम की बात करें। मुझे बरसात के मौसम में बहुत ही आनंद आता है, रिमझिम की वह बूंदें तरह तरह के पकवान बनाने और खाने में अलग ही मज़ा देते हैं, और एफएम रेनबो उस टाइम गीतों की बरसात कर देता है, मज़ा चार गुना हो जाता है। ये तो बात है, एफएम रेनबो आपको हर तरह के रंग में समेटने की कोशिश करता है।
0: रेनबो में वैसे ही सतरंगी चैनल है, बिल्कुल।
1: तो ये जो फ्लेवर है, ये जो कलेवर है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा
0: जी। और मोनू सेठ जी ने लिखा है, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाओ चाहती छा। क्या बात है,
1: क्या बात है?
0: जेठ की गर्मी, जेठ के महीने की दोपहर इतनी भयंकर और गर्म होती है कि छाया भी स्वयं बचाने के लिए ठंडी छाया की तलाश करती है।
1: क्या बात है।
0: तो अब जेठ का प्रकोप आपने बता दिया, पसंदीदा कौन सा मौसम है ये भी तो बता देते हैं।
1: ये भी बता देते हैं। वैसे यहाँ पे जो कवि की कल्पना है बहुत ही सराहनीय है और अति सुंदर है। थैंक यू सो मच। वकील अहमद साहब की मेल हम तक पहुंची है। गुड मॉर्निंग, ठंडा मौसम अच्छा लगता है, कल हमारे यहाँ बहुत तेज तूफान और बारिश हुई। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। वकील अहमद, मसूरी कटका हतूरी जिला सीतापुर, मोहम्मद शकील अली आरफी। तो इन्होंने जिंदगी को एक बेहतर नजरिए से लेते हुए उसकी सच्चाई को बयां किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
0: जी। अगला मेल महेंद्र दीपन जी का है और इन्होंने जो मेल किया है हमें, राजस्थान, नागौर राजस्थान से मेल करते हैं और हमारा गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम ये लगातार सुनते हैं, बड़े ही कर्मठ श्रोता हैं ये। और इन्होंने लिखा है कि मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। अच्छा, मेजोरिटी विंस, बारिश आज विनर घोषित होती है। भीगने का मजा आता है, आसमान में गिरती बूंदों को भीगना मुझे बेहद पसंद है, मन तरोताजा कर देता है, घूमने का आनंद आता है और लाजवाब खान पान का सेवन करने का मौका मिलता है इस मौसम में। गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ खान पान का मजा ही कुछ और है, ये किसी और मौसम में नहीं आता। तो सच कहूँ तो मस्ती और सुकून बारिश में ही है, कहीं और नहीं।
1: वाकई में दोस्तों, ये जो हमारे श्रोता हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छी सोच भी रखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम तक पहुँचाते हैं। 9:26 का समय हो चुका है और भी बहुत सारे विचार हमारे श्रोताओं के हम तक पहुँचे, उनको भी ज़रूर हम शामिल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप सबके लिए, इसे एंजॉय कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की
0: जी। गर्मी में जस्ट चिल।

0: ये बताओ तरुषी, ये जो गाना भी आपने बजाया,
1: हाँ,
0: इस गाने की एक खासियत ये है कि इसमें जब भी मतलब प्रारंभ में जब ये आया स्टार्टिंग में, तो उस वक्त जब
1: आपने भी बोला ना
0: है?
1: चियाऊ,
0: हाँ मैं चियाऊ चौ ही बोलता था, और इसकी बिल्कुल सही लिरिक्स को जानने के लिए मुझे इसकी लिरिक्स को जो है पढ़ना पड़ा, देखना पड़ा,
1: बिल्कुल।
0: तो आपसे भी चियाऊ चौ निकलता था,
1: मैं भी वही तो बता रही हूँ, बस ये चियाऊ मैंने इसीलिए पता ना, आप भी बोलते थे ना, मतलब मैं भी शामिल थी इसमें। जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगता था इसका मतलब क्या है, चियाऊ चियाऊ काहे बोल रहे
0: हैं, और चियाऊ चियाऊ देखने के लिए मैंने उसकी लिरिक्स को देखा। तो जब लिरिक्स गए तो मैंने कहा यार बिल्कुल उल्टा मैं समझ रहा था, सुन भी इसको उल्टा रहा था, और हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स वो भी आई थिंक इन्होंने चियों चियों ही सुना होगा।
1: और ऐसे सच बताऊं बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनके लिरिक्स का मतलब हमें नहीं पता,
0: हाँ।
1: मगर गाते उतने ही उसमें है
0: जोश के साथ,
1: जोश और उतने ही इमोशन के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ गाते हैं, समझ में भले नहीं आ रहा है,
0: समझ में भले ना, लेकिन हाँ हम बस उसी सिंगर के बाद हम ही है,
1: चाहे वो अरबी में हो, चाहे किसी और लैंग्वेज में हो, चाहे कुछ भी हो, मगर गाना है,
0: गाना है हमें। तो देखिए वो फीलिंग्स हमारी जुड़ जाती हैं गाने के साथ, इस वजह से ऐसा होता है। और वाकई में बहुत सारे ऐसे गीत बने हैं हमारे देश में और बाहर भी कि वो हमारी फीलिंग्स से जुड़ जाते हैं।
1: अच्छा वैसे एक बात गानों से ज्यादा, आपको पता है ना एक बार एक सॉन्ग आया था इब्ने बतूता, आपको पता
0: सही बात है। तो ये कुछ ऐसे गीत है।

0: जो कि हमें पसंद भी बहुत आते हैं, चाहे मतलब उनका हमें समझ में ना आए, लेकिन इतिहास की एक बात करते हैं कि रुपए पैसे की जो बात होती है जब, तो हमारा जो रुपए का इतिहास है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और तरुषे, मैं कल कहीं पढ़ रहा था तो मुझे, मैंने जब इतिहास रुपए का पढ़ा, क्योंकि ये बताइए, जब आप इस धरती पर आई उस वक्त आप रुपए के किस रूप से परिचित हुई?
1: यही आठ आना चार आना,
0: आठ आना चार आना
1: जी, चवन्नी अठन्नी,
0: चवन्नी अठन्नी जी हाँ, 25 पैसे, चवन्नी अठन्नी, इससे मैं भी परिचित हुआ। और उसके पहले जो भी रुपए के रूप चलते थे
1: वो नहीं,
0: वो सिर्फ मैंने सुने देखा भी नहीं है, और कहाँ कहीं कहीं पिक्चर में देखने को मिल जाता है।
1: लेकिन आपको पता है ये सारे जो इससे पहले के जो रूप है वो हम लोग ने कहावतों में ही सुना है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता था जब तक कि ये जानने को नहीं मिला कि अच्छा इन सब वर्ड का मतलब होता है, क्योंकि ये रुपए का इतिहास है हमारा।
0: जी हाँ, तो आज हम आपको कुछ ऐसे रुपए के इतिहास के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और जिनको जानकारी नहीं है उनको शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा लगने वाली, और जो इन रुपयों के रूप से परिचित हैं वो तो जरूर खुश होंगे सुनकर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रुपए की प्राचीन मुद्रा की हम बात करें, उसका जो रूप चलता था फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी से कौड़ी के रूप में वो बना, कौड़ी से दमड़ी के रूप में बना, दमड़ी से फिर उसका जो रूप बना वो ढेला बना, ढेला से पाई बना, पाई से पैसा बना, और पैसे से आना बना, जिसका रूप और स्वरूप हम लोगों ने देखा है, और आना से रुपया बना। तो दोस्तों 256 अगर दमड़ी की बात की जाए तो 192 पाई के बराबर होती थी, और 192 पाई बराबर होती थी 128 ढेला के, और 64 पैसे यानी कि जो पुराने वाले 64 पैसे होते थे वो 16 आने, कहते ना 16 आने सच बात कही है, तो ये जो 16 आने होते थे ना ये 1 रुपए के बराबर होते थे। और अभी तरुश्री ने ये भी बताया कि बहुत सारी हमारी जो कहावतें हैं इन प्राचीन मुद्राओं की इकाइयों से जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारी बोलचाल की भाषाओं में आज भी सम्मिलित हैं। उनमें से कौन कौन सी ऐसी कहावतें?
1: एक ढेले का काम नहीं करते आप रतन जी, एक ढेले का काम नहीं करते।
0: एक और है कि पाई पाई का हिसाब मैं रखता हूँ, ठीक है, काम मैं ढेरे का नहीं करता हूँ लेकिन पाई पाई का हिसाब रखता हूँ,
1: चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए।
0: 16 आने सच बात कही है तुमने, ये
1: बिल्कुल सही। तो अब इसी पर ही
0: लेकिन हाँ हा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुमको।
1: चलिए,
2: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: पैसे की बारिश हो ना हो, लेकिन अब गर्मी के मौसम में थोड़ी सी बारिश में हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। क्यों,
1: नौतपा चल रहा है, ठीक है, उसके बाद नौतपे के बाद क्या होगा और नौतपे में क्या होगा, इसकी विशेष जानकारी देने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश सर। चलिए करते हैं उनका स्वागत। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
2: जी गुड मॉर्निंग।
1: तो सर अब आज का मौसम लखनऊ का कैसा होने वाला है, उसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम कैसा होने वाला है, प्लीज बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी मौसम की बात करें तो आज और कल थोड़ा गर्मी का सबब बना रहेगा, धूप खिलेगी और लेकिन साथ ही में थोड़ा सा हवाएं भी चल रही है, तो कुल मिलाकर एक तरीके से मिक्स टाइप का टेंडेंसी रहेगा, क्योंकि कल थोड़ा सा कुछ थंडर क्लाउड डेवलप हुए थे जिससे कुछ जगहों में स्पेशली जो तराई बेल्ट है सेंट्रल पार्ट ऑफ तराई बेल्ट में बारिश हुई, तो थोड़ा सा हल्का असर रहेगा, लेकिन आज और कल थोड़ा सा बचाव रखने की जरूरत है, थोड़ा गर्मी का असर बना रहेगा। बाकी परसों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जैसा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है उसके वजह से बारिश का सिलसिला शुरू होगा।
1: अच्छा तो सर ये नौतपा क्या करेगा?
2: देखिए अगर कुल मिला के कहे तो नौतपा तपेगा नहीं, हालांकि आज और कल को छोड़ के नौतपा है, फिर उसके बाद अगले तीन चार दिन तापमान काफी अनुकूल हो जाएगा, बारिश का सिलसिला होगा और कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है कि जो पिछले हम 10 दिन से काफी प्रचंड गर्मी झेल रहे थे उससे हमको राहत मिलेगी।
1: क्या बात सर, मतलब ये नौतपा थोड़ी सी राहत लेकर आया हम लोगों के लिए,
0: आपने तो खुश कर दिया।
1: क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, हम लोगों को थोड़ी सी राहत देने के लिए।
2: जी जी धन्यवाद।
1: तो दोस्तों दानिश सर ने तो कह दिया ये नौतपा थोड़ी सी राहत देने वाला है और दो दिन थोड़ा सा संभल कर उसके बाद जो डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है उसकी वजह से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, तो कुल मिलाकर इस नौतपे में आपको पूरी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की जरूरत है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है और मौसम का ऐसे ही
0: आनंद लेने की जरूरत है।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग।
5: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है
6: भाई। अब मैच का क्या होगा?
5: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
7: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
8: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
7: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
8: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 6644444।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
11: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
12: सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।

0: जी हाँ, बर्थडे जिनका भी आज जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से।
1: जी हाँ दोस्तों, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको हम कैसे भूल सकते हैं, उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और दोस्तों आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आप किनके साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं, ठीक है
0: जी।
1: तो आज जिनका साथ आप अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं उनका नाम है राम किंकर बैज। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध एक मूर्तिकार, और इनका जन्म आज ही के दिन 26 मई 1906 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था दोस्तों। दोस्तों उनको भारतीय आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में इनकी गणना होती है। संभाल परिवार, मिलकॉल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजात व रविंद्रनाथ टैगोर का अवाक्ष यानी कि पोर्ट्रेट आदि उनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। उनके दृढ़ संकल्प से वह भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक

0: पर कलाकारों में से एक बने थे। भारतीय कला में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और कोलकाता में कुछ समय तक बीमार रहने के बाद रामकिंकर बैच का 2 अगस्त 1980 को निधन हो गया था। दोस्तों, आज आप इस महान मूर्तिकार के साथ, जिन्हें भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है, इनके साथ आप अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, और ऐसे महान कलाकार को हम उनकी जयंती पर नमन करते हैं।
1: जी हाँ, और अगर दूसरे की बात करें तो आज 26 मई 1968 में मुंबई में जन्मे दिलीप जोशी। दिलीप जोशी अगर मैं बोलूंगी तो क्या शायद कोई ना पहचान पाए, लेकिन अगर मैं जेठालाल बोलूं तो सब पहचान जाएंगे।
0: जी हाँ।
1: तुरंत उनकी शक्ल जो है वो दिमाग में पहुंच जाती है। हम किन की बात कर रहे हैं? जेठालाल जी। हाँ, जेठालाल जी की बात कर रहे हैं। उनका आज जन्मदिन है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से। और आपको बता दें कि आप उनका जन्मदिन अपने साथ शेयर करते हैं, अगर जिनका भी आज जन्मदिन है तो ऐसी पर्सनैलिटी को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन्होंने अपना अपनी अभिनय से ना अपना दूसरों के दिल में जगह बनाई।
0: जी हां दोस्तों, 30 से अधिक वर्षों में अपने करियर में उन्होंने कई फिल्मों और विज्ञापनों में भी काम किया, और उनकी सहज अभिनय शैली और कॉमेडी टाइमिंग ने उन्हें लाखों प्रशंसक दिया, और आज भी वह भारतीय टीवी इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित कलाकारों में गिने जाते हैं। और आज दिलीप जोशी जी को हम उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं। और आज आप इस व्यक्तित्व के साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: जाने वाला हूँ और अभी तरुषी जाने वाली हैं, मैं तो भी रहने वाला हूँ 12 बजे तक आपके साथ। और बबीता राव जी की मेल हमारे पास आ चुकी है, गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ से इन्होंने हमें मेल भेजी है और गुड मॉर्निंग के साथ साथ कह रही पुष्पांजलि सदाबहार गीत इन्हें बहुत अच्छा लगा। तरुषी
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
0: और मैम जी आज सच कहूँ तो मुझे ठंडी का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जब तक मन हो खेलो कूदो चाहे जो भी काम करो और बढ़िया बढ़िया हरी सब्जियां भी खाओ पियो जो भी कम रेट बहुत आसानी से सारी चीजें कम रेट में मिल जाती हैं घर पर चाहे जो भी बनाओ खाओ पियो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है और चाहे जहां घूमने जाना चाहो वहां घूमने भी जा सकते हैं। इसलिए मुझे ठंडी का मौसम बहुत पसंद है, कुल मिलाकर इन्हें ठंडी बहुत पसंद
1: है। भाई इत्तेफाक से बबीता जी की बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि हमें भी ठंडी का मौसम बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, तो चलिए ठंडी मौसम पसंद करने वाले दो लोग हमें मिल चुके हैं और अभी तक बारिश को बहुत लोग पसंद कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो एक बात बताएं, कभी कभी हमें गर्मी का मौसम भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों?
1: आम खाने को मिलते हैं, मुझे तो पर्सनली पसंद है इसी
0: आम खाने
1: से।
0: को तो मिलता ही है साथ में अगर जब जैसे रात में लाइट चली जाए ठीक है
1: बस छत पे जाओ
0: बस सीधे छत पे पहुंच जाइए आराम से किसी की कोई टेंशन नहीं लेनी है ना
1: बिल्कुल
0: जाएगा। तो ये एक चीज बहुत अच्छी लगती है।
1: वैसे देखा जाए तो हर मौसम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहमियत रखता है, उसकी कुछ ना कुछ खास बात होती है और इसी तरह से कुछ मुद्दे पे बात रोशनी रावत जी ने भी लिखी है और ये लिखी है कि मुझे सभी मौसम पसंद है, सबका अलग अलग अंदाज है लेकिन सर्दियों का मौसम सबसे ज्यादा पसंद है इसलिए क्योंकि खाना गरम गरम खाने को मिलता है और भरपूर सोने को मिलता है। क्या बात है।
0: और राजेश कुमार जी का कहना है कि मुझे ठंडक का मौसम बहुत अच्छा लगता है इसलिए रजाई में मुंह डाल के सो जाता हूँ पता ही नहीं चलता। चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: वैसे मोनू जी मैं आपको बताऊं आपने दोहे भेजे वो चलता है लेकिन इतने बड़े बड़े श्लोक जो है ना ये आप हमको रिकॉर्ड करके भेजा करिए, हमसे गलती हो जाए मान लीजिए बोलने में तो ऐसा नहीं है ना, अर्थ पढ़ देते हैं। इन्होंने लिखा है ठंड के मौसम में जब कोहरे से धरती ढक जाती है तो ओस की बूंदे बहुत सुंदर लगती हैं, शीत ऋतु में वन और प्रकृति अत्यंत मनोरम हो जाते हैं जिसे देखकर मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। इतनी क्लिष्ट हिंदी काहे को, हमें आम भाषा भी समझ में आती है, इतनी संस्कृत बोलने की जरूरत नहीं।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवा बानो जी का भी मेल हमारे पास आया है और ये हमें इनकी मेल्स हैं उमरा अंसारी और हुजबा अंसारी हमें श्रीनगर लखीमपुर खीरी से मेल कर रही हैं और कह रही हैं हमें भी वही मौसम पसंद है जो रतन जी को पसंद है, हमें भी बारिश का मौसम और भीगी भीगी हरियाली और ठंडी ठंडी हवा और फिर उस मौसम में चाय और पकौड़े के साथ एफएम रेडियो पर बारिश के गाने के साथ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात है,
0: तो मतलब पूरा आपने माहौल बना दिया।
1: और मनोज विश्वकर्मा जी की मेल आगे पढ़ते हैं और लिखते हैं मुझे ठंडी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे गाँव में हमारा खुद का अमरूद का बाग है जो ठंडी में फल देता है और हर सुबह 5 बजे अमरूद का बाग पहुंच जाता था मैं और सूखी अमरूद की लकड़ी और सूखी अमरूद को जलाकर मैं उससे खाना बनाकर खाया करता था, बहुत मजा आता था। और गर्मी के मौसम में हम लोग रात में नदी में सोने के लिए जाते थे। नदी में कैसे सोते हैं मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, नदी में सोने जाते थे,
0: एक्सप्लेन कीजिएगा।
1: नदी के पास हो सकता है, नदी में सोने कैसे जा सकते,
0: नदी में कैसे सो सकते हैं। अगली मेल हमारे पास आई है सिमरन स्वरांजलि जी की। हेलो सर मैम आप कैसे हैं? तो हम अच्छे हैं। तरुषी मैम आपका नाम आपकी तरह बहुत अच्छा है, किसने रखा है बताइए?
1: मम्मी पापा
0: ने रखा है, अच्छा इनका नाम ठीक है और बहुत अच्छा, वाकई में बहुत अच्छा। तरुषी भी बहुत अच्छी है और आगे ये लिखती है कि मुझे ठंडी और बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बसंत का मौसम, माफी चाहेंगे, बसंत का मौसम इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठंडी का भी, ठंड में गर्मी झेलनी नहीं पड़ती, खाने में कुछ भी खाओ पियो सब अच्छा लगता है, ठंड में जब कोहरा पड़ता है तो शिमला जैसा फीलिंग आती है, क्या बात। और बसंत में चारों तरफ सरसों के फूल और गेहूं की फसल देखने को मिलती है, ठंड भी कम हो जाती है तो बसंत का मौसम भी हमें बहुत ज्यादा पसंद है,
1: क्या बात है। और वारिस अली जी का मेल ले लेते हैं और लिखते हैं कि जाड़े का मौसम इन्हें बहुत पसंद है क्योंकि जाड़े में कुछ भी खाओ सब हजम, मनपसंद कपड़े पहनो, थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है सुबह उठने में लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जाड़े में एक लकड़ी मिले और फिर फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है जाड़े का मौसम, अब जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे
0: जी। और तालिब अंसारी जी की भी मेल हम तक पहुंची है और सबसे अच्छा मौसम हमें बसंत का लगता है क्योंकि हर तरफ फ्लावर्स और हरे भरे पेड़ खूबसूरत लगते हैं, उनका नजारा देखने में अच्छा लगता है और इस ऋतु में सबसे अहम

0: चीज ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, सब कुछ नॉर्मल सा लगता है। तो कुल मिलाकर वाकई में मौसम, हर मौसम का एक अपना अलग मजा है। सावित्री देवी, आचल सेठ, सोनू परवाना, सत्यम जोशी, अशोक कुमार और मुनेश कुमार और
1: सुधन
0: बाबा जी की भी मेल हम तक पहुंची है और आप सबकी मेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 9:58 का समय हो चुका है और ये समय इशारा कर रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ को अब हम
1: वाइंड अप करते हैं। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। फिलहाल रतन अभी आपके साथ रहने वाले हैं कुछ और घंटे, तब तक एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा ट्रैक।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निर्वर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य के ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निर्वर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निर्वर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। वाराणसी में आस्था और भक्ति का पर्व गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश और प्रदेश से आए भक्त गंगा स्नान कर विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। दशाद्वेषभेद 80 राजेंद्र प्रसाद समेत विभिन्न घाटों पर भोर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा दशहरा को लेकर काशी के घाटों को फूल मालाओं से सजाया गया है। इस पावन पर्व पर आज पूरे दिन धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाओं का सिलसिला जारी रहेगा। शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती को लेकर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। हमीरपुर में मौधा थाना क्षेत्र के खरे गांव में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। मौधा थाना प्रभारी ने बताया कि गांव के बाहर कलार तालाब में बच्चे नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में जाने से उनका संतुलन बिगड़ गया। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में भी भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने लोगों से तेज धूप में अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने की अपील की है। उन्होंने लोगों से घर की छतों और खुले स्थानों पर पानी रखने को भी कहा है, जिससे पशु पक्षियों को भी राहत मिल सके। जौनपुर में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक व डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, कूलर, आइस पैक आदि की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।

0: हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:04 का समय, प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग, और आज आपके साथ इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे 90s के वो प्यारे से ट्रैक्स जो कभी आपकी पसंद हुआ करते थे और आज भी वो आपकी पसंद बने हुए हैं। तो एंजॉय कीजिए अगले घंटे सुपर हिट सॉन्ग्स अपने दोस्त रतन के साथ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने

0: है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ दोस्तों, 10:32 का समय, प्रोग्राम चल रहा है सुपरहिट सॉन्ग, और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात, और आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए मेरे साथ।

जी हाँ दोस्तों, 10:54 का समय हो चुका है और ये समय इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग्स को हम यहीं पर वाइंड अप करें और ठीक 11 बजे आप तक पहुंचेंगे न्यूज़ ब्रेक, यानी कि न्यूज़ पहुंचेगी और उसके बाद ठीक 11:02 से हम आपसे जुड़ेंगे अगले प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे। और इस प्रोग्राम में दोस्तों आप अपनी मेल्स के माध्यम से और फ़ोन कॉल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर मैं आपको थोड़ी देर में जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नगर निगम लखनऊ की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 413 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी। उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा औरास थाना क्षेत्र में हुआ, जहां दिल्ली से गोरखपुर जा रही यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जेठ माह के चौथे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों के हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर के कपाट आधी रात से ही खोल दिए गए थे, जिसके बाद से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भीड़ को देखते हुए कई स्थानों पर यातायात डायवर्जन लागू किया गया है और पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। पूरे शहर में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
1: चलते रे इश्क भी बढ़ जाते
2: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
0: आपके अपने रेनबो की जबानी।
1: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
3: जी हाँ, पुराना फ्लेवर।

107 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 11:04 का समय और साथ में 36:37:38 सौर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। संदेश आपके, गीत हमारे, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और दोस्तों, आप भी हमारे साथ अपने दिल की बात, अपने जज्बात शेयर करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसका नाम है संदेश आपके, गीत हमारे। और इस प्रोग्राम में आज आप कोई ऐसा संदेश हम तक पहुँचा सकते हैं जो आपके साथ साथ हमारे जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, बहुत ही लाभदायक हो और समाज में कुछ अच्छा करने की सीख देता हो। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में भाग लीजिए और अपने विचार, अपनी बातें और आज का संदेश हम तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर हाँ, अगर आप कुछ प्रोग्राम्स के बारे में भी अपनी बातें, विचार शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर हम तक पहुँचा सकते हैं। मेल आईडी हमारी तो आपको पता ही है, हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं और वहीं फ़ोन कॉल के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वक्त हमारी दो फ़ोन कॉल्स पूरी तरह से आपके लिए खोल दी गई हैं। पहला नंबर है 05 22 22 38 845 05 22 22 38 845, और दूसरा नंबर है 05 22 29 82 377। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 05 22 29 82 377। ये दो मैजिकल नंबर्स, इनसे आप जुड़कर जुड़ सकते हैं डायरेक्टली हमारे साथ यानी एफएम रेनबो के साथ और अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये पहला ट्रैक आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: और हमारे साथ लगातार मेल्स के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। पहली मेल हमारे पास आई है तालिब अंसारी साहब की, और ये मेल इन्होंने हमें राजा कटरा बाराबंकी से भेजी है। नमस्ते सर जी, आपको भी नमस्ते। तालिब जी, हमारी तरफ से पिछला प्रोग्राम इनको बहुत पसंद आया, सॉन्ग्स जो प्ले हुए इनको बहुत पसंद आए, और मैसेज इनका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत करें, अनावश्यक फैन कूलर या कोई भी ऐसी चीज जिसका उपयोग नहीं है उस वक्त उसका स्विच ऑफ तुरंत कर दें, और सोलर सिस्टम पर ज्यादा फोकस करें। मेरे यहाँ सारा काम सोलर पैनल से होता है। बहुत अच्छी बात है, और वाकई में ये एक अलग तरह का संदेश। इलेक्ट्रिसिटी इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा खर्च होती है, और हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, बहुत जरूरी है हम सबके लिए। और जो आपने उसका एक सब्स्टिट्यूट भी बता दिया है कि सोलर पैनल की तरफ हम जा सकते हैं, तो जरूर आजकल सोलर पैनल एक बहुत अच्छा विकल्प है इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए, और बहुत सारे काम आपके इस पैनल के माध्यम से यानी कि सोलर सिस्टम के माध्यम से हो जाते हैं, तो जरूर आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश, थैंक यू तालिब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामराज जी की भी मेल हमारे पास आई है, श्री गणेशाय नमो। संदेश आपके गीत हमारे और जिला रायबरेली पहाड़ीपुर से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बहुत सारे नाम इन्होंने लिखे हैं और सब लिखा इन्होंने। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, तो आपको भी नमस्कार। और संदेश इनका ये है कि आज आखिरी मंगल है, तो आज आखिरी मंगल नहीं है, आज चौथा ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है, और अब की पूरे 8 मंगल पड़ रहे हैं, इसलिए भंडारे तो पूरे मंगल भर देखने को मिलेंगे। और वाकई में इन्होंने कहा है कि अगर भंडारे चल रहे हैं तो लोगों को खाना भी खिलाएं और उनकी मदद भी करें, तो ज़रूर हमें मदद करनी चाहिए। और इसी संदेश के साथ बढ़ते हैं अगले हमारे मेल की तरफ, और उस मेल के पहले हमारे साथ कोई जुड़ चुका है, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो,
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार सर,
0: आपकी आवाज सही नहीं आ रही है।
1: हेलो
0: जी, बोलिए, क्या नाम है आपका?
1: जी सर, हम जिला बहराइच ग्राम
0: शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर, और कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे पर भी।
1: गुड मॉर्निंग सभी को।
0: जी वेरी गुड मॉर्निंग सबकी तरफ से आपको भी। तो ये बताइए शिवम जी, क्या करते हैं आप?
1: जी सर, हम ब्लेंड हैं, किराने की दुकान चला रहे हैं।
0: क्या बात,
1: और साथ में सुनते हैं एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की।
0: बहुत अच्छी बात, आप यानी पूरी तरह से हमारा साथ निभाते हैं। जी वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के लिसनर्स हमें मिलते हैं, इतने प्यार से और इतने जोश के साथ हमें कॉल करते हैं। क्या संदेश है आज आपका, बताइए।
1: जी सर, वैसे आप लोगों की प्रकृति भी बहुत बढ़िया है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज आप?
1: आज सर हम ये कहना चाहेंगे कि गर्म के महीने में

0: दाने और पानी की व्यवस्था जरूर करें। जो पंछी है ये बहुत बढ़िया है हमारे जमाने में, ये पर और कहना चाहेंगे, हम लोग भंडारे में खाना खा रहे हैं पत्तल को एक कूड़ेदान में ही डालें।
1: क्या बात, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। और वाकई में जी जी
0: जी और कहना चाहेंगे सभी लोग एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा संदेश जी, बहुत अच्छा संदेश आपने पहुंचाया और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों शिवम जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने ये बताया कि अपने घर में पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें और जो लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो जो जूठी पतले हैं उनको वो कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर कहीं सड़क पे या किसी ऐसी जगह ना फेंकें जिससे आने जाने वाले या फिर चलने फिरने वालों को कोई भी दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे संदेश देने के लिए। देखते हैं अगली मेल किन की है हमारे पास। ये मेल आई है हमारे पास मुनेश कुमार राज की मेल है, भानपुर हौरवा जिला लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं। आपको भी प्रणाम मुनेश जी। मुनेश कुमार राज राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर से ब्लॉक अध्यक्ष लखीमपुर खीरी, वो कल से आ रहे हैं लखनऊ। ओके बिल्कुल चलिए, अच्छी बात है, आप आइए। कह रहे हैं कार्यक्रम की प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब होती है, हर घंटे रोज लाइव सुनता हूं। क्या बात है, इस गर्मी के मौसम में बाहर कहीं से भी आए तुरंत कपड़े ना बदलें, थोड़ा आराम करने के बाद जो भी चेंज करना है करें। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपनी मेल पहुँचाने के लिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वारिस अली जी की भी मेल हम तक पहुँची है, सुपरहिट सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद आए, गाने अच्छे थे, थैंक यू सो मच वारिस जी। ज्येष्ठ माह के चौथे बड़ मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। और संदेश आपका यह है कि बकरीद 28 मई को है, आपसे गुजारिश है कि आप प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना करें, बंद जगह कुर्बानी करें, कुर्बानी के बाद साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ओके बिल्कुल, हमने आपकी पूरी मेल पढ़ दी है और बहुत अच्छा ये संदेश आपने पहुंचाया है पूरे हमारे लिसनर्स तक कि बकरीद के मौके पर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करिए, बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट करिए। और जो भी आपने ये बताई बात कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना की जाए, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और बंद जगह पर ही कुर्बानी करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बहुत अच्छा संदेश और बिल्कुल लेटेस्ट जो बात चल रही है आपने उसी पर अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भी लगातार मेल्स हमारे पास आ रही हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, उनको भी जरूर हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स इन प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे और मैं आपके साथ हूं आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन। और इस वक्त धूप बहुत तेज हो गई होगी क्योंकि वाकई में सूर्यदेव इस वक्त कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है हम सब पर। और आपसे बस हम यही कहेंगे कि इस वक्त अगर आप घर में बैठकर हमें आनंद से सुन रहे हैं तो बस हमें सुनते जाइए, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ज़रूरी कोई काम काज हो तभी बाहर निकलिए। और हाँ, भंडारे बहुत सारे बाहर लगे हुए हैं इसलिए घर में खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आराम से बाहर निकलिए। जब खाने का मन हो खाइए, चुपचाप फिर आराम से घर में रहिए। और दोस्तों, जब आप बाहर निकलें तो अपनी बातों का जो हमने आपको बताई है उनका विशेष ध्यान रखें। बातें ये हैं कि आपको अपनी साथ एक बोतल लेके जानी है, घर से पानी पी के निकलना है और कैप भी पहननी है, फुल स्लीव्स की कपड़े पहनने हैं, साथ में गमछा या कैप जो भी आप यूज़ करते हैं ज़रूर लेके चलिए। और ज़्यादा देर धूप में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और पानी का इंटेक आपको बढ़ाना है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, तभी आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और इस दिन का आनंद ले पाएंगे, इस प्रोग्राम का आनंद ले पाएंगे। मैं रतन आपके साथ हूं और देखते हैं हमारे साथ अगला कॉलर कौन है। हेलो।
3: हेलो
2: जी। Hello? कौन बात कर रहे हैं?
3: मेरा नाम ध्रुव है।
2: जी ध्रुव, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
3: हेलो।
2: हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास?
3: वाटर को वेस्ट ना करें, पानी को।
2: अच्छा,
3: बंद कर दे।
2: बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ध्रुव, किस क्लास में हैं आप?
3: अभी हम फिफ्थ क्लास में हैं।
2: अभी आप फिफ्थ क्लास में गए? अच्छा, तो ये बताइए, आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं।
3: हाँ, छुट्टियां चल रही हैं अभी समर
2: वेकेशन। तो इन समर वेकेशंस में आप क्या कर रहे हैं आजकल? मतलब कुछ कोई किसी चीज की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर घर में ही रहते हैं या फिर कोई खेल खेलते हैं, क्या करते हैं बताइए?
3: अभी तो हम घर ही रहते हैं।
2: अच्छा, तो कहीं घूमने नहीं जाएंगे? प्लान है आपका घूमने जाने का या नहीं?
3: अभी हम नहीं जाते घूमने।
2: अच्छा, तो ये बताइए जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं छुट्टियों में या फिर पूरे दिन खेल खेल खेल?
3: पढ़ाई करते हैं।
2: पढ़ाई तो ये बताइए, इस पढ़ाई के बीच में एफएम सुनते हैं ना?
3: हाँ, डेली सुनते
2: हैं। एफएम रेनबो डेली सुनते हैं। कौन सा प्रोग्राम है जो आपको बहुत अच्छा लगता है बताइए?
3: हाँ।
2: कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगता है बताइए? तो अच्छा, फरमाइश वाला प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और ये वाला प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है जिसमें बात होती है। तो ध्रुव, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा संदेश भी ध्रुव का हम तक पहुंचा है कि उन्होंने बताया और उस संदेश से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। तो बस आप भी कुछ ऐसी बातें हम तक पहुंचाइए। हमारे जो नंबर हैं वो हैं 2238 845 और दूसरा नंबर है 2982 377। इन दो नंबर्स के पहले आपको जो कोड है वो ज़रूर लगाना है 0522। इस कोड का आप यूज़ कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी यानी कि एफएम रेनबो के साथ। और हमारी मेल आईडी तो आपको पता ही है, चलिए वो भी बता देते हैं, fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें और अपने संदेश हम तक पहुंचाएं। फिलहाल ये प्यारा संगीत आप सबके लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: Listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

राजकर 29 मिनट का समय प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे बहुत ढेर सारी बातें आपके साथ हो रही हैं और साथ में हमारे पास मोनू राजवंशी जी का मेल पहुंचा है और कह रहे हैं नमस्कार सर, मैं मोनू राजवंशी ग्राम गोकुलपुर लाहारपुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। कह रहे हैं मेल पहली बार कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप जरूर शामिल करेंगे। हम आपकी उम्मीद पे पूरी तरह से खरे उतर चुके हैं और हमने आपकी मेल को शामिल भी कर लिया है। इनका मैसेज ये है कि उन लोगों के लिए है इनका मैसेज कि जब हम कभी रोड पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि

0: कोई ब्लाइंड व्यक्ति होता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत होती है तो, और वो ब्लाइंड व्यक्ति या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत है उनकी हम मदद जरूर करते हैं। तो इन्होंने खासतौर से ये कहा कि अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति आपको दिखता है तो उसकी मदद जरूर करें, उसको अगर रोड क्रॉस करनी है या फिर उसको कहीं जाना है तो उसका हाथ पकड़कर जरूर उसको आप उसके स्थान पर पहुंचा दें, उसको रोड क्रॉस करा दें ताकि उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और ये इनका कहना है कि ये किसी ये हम उनकी ये दया नहीं है, उनकी ये सहानुभूति नहीं है, ये उनका कर्तव्य है, उनका सहयोग है। ये इनका कहना है कि हम किसी दया भावना से नहीं, किसी सहानुभूति के नज़रिए से नहीं उनकी मदद करें बल्कि हम उनका सहयोग करें, उनको हम आगे बढ़ाएं। तो बहुत अच्छा ये संदेश, और वाकई में दोस्तों हमें अगर कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो ज़रूर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, बिना मदद मांगे हमें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा ये संदेश आपका हम तक पहुँचा। गुलफ्सा सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मेल के माध्यम से। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से ही हमें मेल कर रही हैं और कह रही, रतन भाई मैं आपको बहुत याद कर रही थी। ओके, हम भी आपको याद करते रहते हैं। और ये कह रही है, पिछले प्रोग्राम में तो आपने गर्दा ही उड़ा दिया इतने अच्छे गाने आपको लगे, थैंक यू सो मच कि आपको गाने पसंद आए। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी हम करें आपको वो पसंद आए, जो भी हम बोलें वो आपको पसंद आए, जो हम बजाएं वो आपको पसंद आए। आपका संदेश ये है कि जब भी बच्चे घर से बाहर निकलें उन पर नज़र ज़रूर रखें, ये भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं गंभीर भी, कि अगर हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से हमें बेफिक्र नहीं हो जाना चाहिए। अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, हमारी नज़रों से कितनी दूर हैं वो, और वो क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें ध्यान में होना चाहिए। एक अगर हम कहें तो ज़िम्मेदार पेरेंट की तरह हमें बिहेव करना चाहिए और तभी हमारे बच्चे एक अच्छी माहौल में आगे बढ़ सकेंगे और उनके साथ जो हम चाहते हैं कि कोई भी दुर्घटना या गलत बात ना हो तो ज़रूर वो इन बातों से बचेंगे। बहुत अच्छा संदेश गुलफ्सा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बात हम तक पहुंचाने के लिए। और लगातार दोस्तों हमारे साथ लोग फ़ोन कॉल के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं जी?
1: सर आवाज आ रही है ना?
0: हाँ बिल्कुल आ रही, बहुत अच्छी आ रही है।
1: मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम पोस्टी कैसरगंज बहराइच से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर, क्या संदेश देना चाहते हैं सत्यम जी?
1: सर पहले तो आपको, आपके पूरी टीम को, सभी सुनने वालों को चौथे बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुक्रिया, धन्यवाद जी।
1: एफएम रेनबो ऐसे ही हनुमान जी की कृपा से
0: जी
1: चलाता रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूर, और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, ये भी हमें हमेशा ही मिलता रहे।
1: संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे लोग भंडारे खाने जाते हैं तो ये ध्यान रखें कि जितना खा सके उतना ही ले, ताकि खाना भी बर्बाद ना हो और सेहत भी अच्छी रहे।
0: बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही है, वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि भंडारे में हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। और जी जी बताइए
1: सर, दो नाम देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल लीजिए
1: सर, सीतापुर से हैं सिस्टर समा परवीन अंसारी, और लखनऊ से हैं सिस्टर साहिबा अंसारी, और एक हमारे बबलू यादव भाई हैं।
0: चलिए, आपने सबका नाम ले लिया, आपका संदेश भी हम तक पहुंच गया, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा सत्यम जी। तो दोस्तों सत्यम जी ने तो अपनी बात हम तक पहुंचा दी और कहा है कि अगर भंडारे में आप प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं तो उतना ही लें जितना आप खा सकें, एक्स्ट्रा मत लीजिए ताकि आपको फेंकना पड़े या वेस्ट करना पड़े। तो ऐसे बातें बिल्कुल बहुत सारी ऐसी होती हैं, अक्सर लोग ले लिया करते हैं, कई चीज़ें एक साथ मिलती हैं और लोग हर चीज़ ले लेते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि जब पेट भर जाता है या फिर खाने का मन नहीं करता तो आप तुरंत उसे फेंक देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उस चीज़ को बनाने में, पकाने में, उसको लाने में कितनी मेहनत लगी होगी। अगर आप उसको यूज़ ना करते तो शायद किसी और के पेट में वो चीज़ चली जाती है ना। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए जब भी आप इस तरह की किसी भी भंडारे में जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी मेल्स और इतनी बातों का। अगला गाना बिल्कुल आपके लिए तैयार है, इसे हमारे साथ जुड़कर सुनते रहिए और आपका अपना प्यारा सा दोस्त आपके साथ जुड़ा हुआ है कुछ और बातें, कुछ और मेल्स के साथ इस गाने के बाद।

0: ग्यारह बजकर 39 मिनट का समय, प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे और मैं आपके साथ, आपका अपना दोस्त रतन, और हमारे साथ देखते हैं हमारे अकेले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: ओम नगर आलमबाग से जॉली बोल रहा हूँ सर।
0: जॉली जी, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
1: शुक्रिया।
0: क्या करते हैं आप, ये बताइए।
1: मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है जी।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक के बिगड़े हुए जो पार्ट्स होते हैं उनको आप बनाते हैं?
1: मैं बरसों टीवी कंपनी में इंजीनियर रहा हूं।
0: अच्छा।
1: और आज भी काम जो है

0: कर रहा हूँ मैं।
1: अच्छा, तो मतलब आप टेलीविजन वगैरह बना लेते हैं?
0: हाँ, लोगों के घरों में जाना, पूरे लखनऊ की गलियों का चक्कर काटना, घरों में जाना, और कईयों के घर में बिरयानी खाना और सेवैया खाना, हर तरीके की
1: बहुत अच्छी
0: मजा लिया हमने।
1: तो मतलब अगर हमारी टीवी बिगड़ती तो हम आपको बुला सकते हैं है ना
0: जी,
1: जी चलिए बहुत अच्छी बात। तो आज
0: आपको भी हम चैनल पे देखते रहते हैं साहब
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, एफएम रेनबो आप सुनते हैं, कितना सुनते हैं?
0: हाँ जी,
1: एफएम रेनबो कितना सुनते हैं आप, ये बताइए हमें।
0: अरे साहब, आप हमारे मुंह से मियां मिट्ठू ना बनवाइए मैं किसी समय यहाँ स्टूडियो पे आगे संजय रमा और रूपम पाठक जी की झोपड़ी खराब किया करता था।
1: चलिए बहुत अच्छी बात, मतलब आप हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं और वाकई में आप अक्सर हमें कॉल करते रहते हैं, आपसे बातचीत होती रहती है। आज आप क्या कहना चाहते हैं, आपका संदेश क्या है?
0: ये है जी कि गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, तो अपने खान पान और भोजन को आप उतना ही बनाए जितना आप उसका यूटिलाइज कर सके, क्योंकि गर्मी में ये भोजन और बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। और मैं अक्सर देखता हूँ गली मोहल्लों के खंभों में लोगों ने रोटी और सब्जी दाल ऐसे फेंके जाती है, तो बड़ा अफसोस होता है कि अन्न का हम लोग किस तरीके से अनादर करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी और वाकई में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है हमें उतना ही यूज करना चाहिए और उतना ही बनाना चाहिए, एक्स्ट्रा बनाने का
0: फिर आप बना ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का ये संदेश आपका बहुत अच्छा है और वाकई में बहुत सारे लोग इससे बात को समझेंगे भी और इसकी गंभीरता को भी समझेंगे। जौली जी, आपने हमें कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
0: शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, जॉली जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इतना अच्छा संदेश हम तक पहुंचाया और लगातार बहुत सारे मेल्स भी हम तक पहुंच रहे हैं। महेंद्र दीपन जी ने एक बहुत अच्छा सा पोस्टर हम तक बनाकर भेजा है और उसमें हमारा नाम भी मेंशन किया है, आदरणीय रतन सर जी, एफएम रेनबो लखनऊ के सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। बढ़ती गर्मी का एक ही समाधान, पेड़ लगाएं, बचाएं अपनी जान। हम सब देख रहे हैं कि हर साल गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस तपती धूप और बढ़ते तापमान से बचने का सबसे अच्छा और आसान रास्ता है प्रकृति की शरण। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, नियमित देखभाल करें और उसे पानी दें, उसे अपना परिवार समझकर बड़ा होने तक ध्यान रखें, आने वाली पीढ़ियों को ठंडी छांव और शुद्ध हवा का उपहार दें। क्या बात है, बहुत ही अच्छा सा ये संदेश आपका हम तक पहुंचा है और बहुत अच्छे इसको पोस्टर के रूप में आपने हमें पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अंतिम में इन्होंने ये लिखा है अंत में कि पेड़ है तो प्राण है, पेड़ है तो कल है। बहुत अच्छी बात महेंद्र दीपन जी, आपका ये संदेश वाकई में हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा। आपका ये मेल हम तक पहुंचा है रूण जिला नागौर राजस्थान से, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतने अच्छे मेल को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए हम प्ले कर रहे हैं, इसे एंजॉय कीजिए, हमारे साथ यूं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब

0: ला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ दोस्तों, 11:50 का समय, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। प्रोग्राम का नाम संदेश आपके गीत हमारे, और मैं हूँ आपका। नाम बताने की जरूरत है, अब तक तो आपको पता चल ही चुका है। जी हाँ, और हमारे साथ कोई लाइन पे भी जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो।
7: दूरियों की न परवाह किया कीजिए, दूरियों की न परवाह किया कीजिए, दिल जब भी चाहे याद कर लिया कीजिए। ज्यादा दूर नहीं है हम आपसे, ज्यादा दूर नहीं है हम आपसे, दिल जब भी पुकारे बुला लिया कीजिए। नमस्ते सर।
6: जी हाँ, थैंक यू सो मच। और वाकई में हमें आपकी याद आई और हमने आपको फोन कॉल पे बुला लिया। स्वागत है आपका FM रेनबो पर। अपना नाम तो बताइए आप।
7: जी, रतन सर की सबसे ज्यादा दीवानी और सबसे ज्यादा पसंद करने वाली उनकी जानी पहचानी श्रोता रिंकी सिंह की बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शुगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
6: क्या बात है रिंकी पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका। अब रिंकी पिंकी में से कौन बात कर रही है इस वक्त हमसे फिलहाल?
7: संदेश हम ये देना,
6: नहीं नहीं पहले ये बताइए, रिंकी और पिंकी में से कौन बात कर रही है हमसे? रिंकी बात कर रही है या पिंकी?
7: दोनों बात कर रहे हैं, पहले पिंकी बात कर रही थी, संदेश हम बताने वाले हैं आज।
6: जी बिल्कुल, बताइए क्या संदेश है आज आपका?
7: संदेश हमारा ये है, जो बच्चे मतलब अपने माता पिता का कहना, कृपया वो ऐसा ना करे, अपने माता पिता का कहना माने। और सर जो मतलब हमारे माता पिता हमें पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, तो हमारा भी कि हमारी वजह से हमारे माता पिता का सर कहीं पर नीचा ना हो।
6: अच्छा ये बताइए, आप अपनी मम्मी पापा कहना मानती हैं?
7: जी सर बिल्कुल मानते हैं।
6: यानी मम्मी ने कह दिया आज घर के बाहर नहीं निकलना है, तो फिर आप जाएंगी नहीं?
7: सर हम लोग बिना मम्मी पापा के परमिशन से कहीं भी बाहर नहीं जाते।
6: क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और वाकई में
7: सर पता है आज हमारी दीदी बुला रही थी, पर मम्मी से हमने पूछा तो मम्मी ने मना कर दिया, हमने बोला चलो अब बाद में आएंगे।
6: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, अपनी मम्मी पापा की बात जरूर माननी चाहिए।
7: तो बिल्कुल हम आपसे मिलने जरूर आते, वो लुलू मॉल के पास ही रहती है।
6: बिल्कुल जरूर, जब भी आप लखनऊ आइए, आकाशवाणी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और आप हमसे मुलाकात भी कर सकती हैं। आपके जितने भी फेवरेट आर्टिस्ट हैं,
7: आज आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इतना अच्छा कार्यक्रम किया सब, बहुत अच्छे गाने बजाए, मतलब दिल छू गए।
6: थैंक यू सो मच कि आपको हमारे प्ले किए गए सॉन्ग्स अच्छे लगे। आप इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, और जब भी लखनऊ आइएगा जरूर आप आइएगा हमारे स्टूडियोस, हम आपका इंतजार करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी रिंकी पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। तो दोस्तों रिंकी पिंकी ने तो अपना संदेश हम तक पहुंचा दिया, और अगला जो मेल है वो भी हम तक पहुंच चुका है। अमन नवाब जी का मेल हम तक पहुंचा है। अभी सर आपने पूछा क्या बाहर बहुत तेज धूप है? जी हाँ बिल्कुल, हमने पूछा था सर इतनी तेज धूप है कि सूरज सिर पर स्ट्रॉ लगा के खून चूस रहा है। अच्छा, संदेश यह है कि गर्मी में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, गाड़ी को अगर मोड़ना हो तो आगे पीछे दाएं बाएं देखकर ही गाड़ी को मोड़ें, गाड़ी मोड़ते वक्त इंडिकेटर ऑन जरूर करें, हम्बल रिक्वेस्ट है ये, ऐसा इनका कहना है। और वाकई में ये बात बहुत अच्छी है आपने बताई कि जब भी हम गाड़ी को टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, तो ज़रूर हमें इंडिकेटर ऑन करना चाहिए, दाएं बाएं आराम से देखकर ही गाड़ी को मोड़ना चाहिए, और ट्रैफिक रूल्स का भी इस गर्मी में पालन करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा ये संदेश है अमन नवाब आपका, ये संदेश हमें संडीला से प्राप्त हुआ है, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लगातार हमारे पास मेल्स आ रही हैं। अंगद यादव की मेल हम तक आई है, वो कह रहे हैं प्रोग्राम ये ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं। अंगद यादव शिवरामपुर आजमगढ़ यूपी से हमें मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं गाने अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। बाकी संदेश इनका नहीं कोई आया है। साहिब आलम जी का भी हम तक संदेश पहुंचा है। प्रसारक जी नमस्कार, मैं 7 बजे से FM सुन रहा हूं। रतन साहब क्या बात है।

मैं तो आपका फैन हूँ, पहले आपका शो पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा था, आप बोला करते थे जो कहता है आपके दिल की बात, आप ज़रूर बोला करें। ठीक है, ज़रूर हम बोलेंगे। और आपका संदेश ये है कि प्रचंड गर्मी का प्रकोप है, आज भंडारा भी है, इसलिए आप प्रसाद को प्रसाद की तरह खाएं, अपने पेट का भी ख्याल रखें, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी वस्तु की अति से क्षति होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। इनका कहने का मतलब कि प्रसाद जो आप ले रहे हैं वो उतना ही लें जितना आप खा पाएं, हजम कर पाएं। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो अगर आपको पचेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डाइजेस्ट नहीं होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस गर्मी में आपको ऐसी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उतना ही प्रसाद ग्रहण करें जितना आप खा सकते हैं। साहिब आलम साहब की ये मेल हमें राजाजीपुरम लखनऊ से प्राप्त हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लगातार मेल सभी भी आ रही हैं। बाबू अंसारी जी की भी मेल हम तक पहुंची है। रतन सर नमस्ते, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, ओके, और मेरा संदेश कोई नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, संदेश आपका कोई नहीं है और लेकिन आपकी मेल हम तक ज़रूर पहुँच चुकी है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों 11:55 का समय हो चुका है और ये समय इशारा बस यही कर रहा है कि आज के संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम को हम यहीं पर वाइंड अप कर दें, क्योंकि जब तक इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप नहीं करेंगे तब तक अगले प्रोग्राम में अगले एंकर कौन है आपको कैसे पता चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो बस आप इसी प्यार, इसी मोहब्बत, इसी खुशी, इसी हंसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका अपना FM रेनबो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा और इस गर्मी में अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए और मुस्कुराते रहिए। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 413 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं में शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा, हमारा लक्ष्य लखनऊ को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाना है। मुख्यमंत्री आज शाम प्रयागराज में नवनिर्मित सदन हॉल और विभिन्न जन उपयोगी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं हमारे नगरों को अधिक आधुनिक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के साथ नागरिक जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। केंद्र सरकार ने कल एलपीजी आपूर्ति और वितरण का विनियमन संशोधन आदेश 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं जिनके पास पीएनजी कनेक्शन भी है, वे पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन हटाने के लिए आवेदन करते हैं या गैर पीएनजी क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन की भविष्य में बहाली के लिए ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रावधान विशेष रूप से तबादलों वाले कर्मचारियों, प्रवासी परिवारों, किरायेदारों, छात्रों या गैर पीएनजी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने वाले परिवारों के लिए लाभदायक है। सऊदी अरब में आज से हज की शुरुआत हो गई है। 5 दिवसीय हज के पहले दिन भारत सहित दुनिया भर से लाखों लोग कल मीना के टेंट सिटी में इकट्ठा हुए। हज यात्री आज पूरा दिन अराफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे और कल सुबह मीना लौटकर हज के जरूरी अरकान पूरे करेंगे। रामनगरी अयोध्या में गंगा दशहरा और बड़े मंगल पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सरयू तट के विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंत्रोच्चार, गंगा पूजन और दान पुण्य कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। घाटों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों की निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिरों और घाटों को विशेष रूप से सजाया गया है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

12:04 हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। शत्रुपा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। गर्मी का भी खास ख्याल है, बड़ा मंगल भी है आज, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहर में हो रही हैं। सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं हम आज के दिन, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक आप तक।

जी हाँ बिल्कुल, सेल्फी ली जाती है जब जब हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं और कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तो एक बार सेल्फी, दो बार सेल्फी और लगातार सेल्फी सेल्फी चलती रहती है। फिलहाल ये जो प्रोग्राम है आज का, और आज ट्यूसडे है और हमेशा हम अलग अलग दिन के अलग अलग सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आते हैं इस प्रोग्राम में, और आज का जो सेगमेंट है वो भी है बहुत ही फ़ायदेमंद जो हमारी लिसनर्स हैं, जो हमारी फीमेल लिसनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आज का जो सेगमेंट है वो है फैशन डिज़ाइनिंग। और फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक ही लिमिटेड नहीं है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक बहुत ही शानदार सा तरीका है। फैशन डिज़ाइनिंग आज के वक्त में एक ऐसा करियर भी बन चुका है, एक ऐसा करियर ऑप्शन बन चुका है जिसमें ग्लैमर भी है, क्रिएटिविटी भी है और बहुत सारे अवसर भी हैं, मौके भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, FM रेनबो।
6: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
7: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
8: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
9: और 12:17 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और आज हम बात कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग की। और फैशन डिज़ाइनिंग में सबसे पहले तो जो ध्यान जाता है, जो हमारी और आपकी सोच जाती है, वो सिर्फ कपड़ों पर ही जाती है। और हमेशा लोग ये सोचते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टाइल हैं, कौन कौन से ऐसे कलर हैं जिनको हम मिक्स एंड मैच करके अपनी अच्छी सी एक ड्रेस तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं बहुत ही खूबसूरत आउटफिट पहने हुए, और ऐसा लगता है कि किसी शादी में जब हम जाते हैं तो कोई ऐसा डिज़ाइनर लहंगा हम देखते हैं, और उसके बाद हम जब हम ये सोचते हैं कि भाई किसने डिज़ाइन किया होगा, ये कितना कैची लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, तब फिर हमें समझ में आता है कि जो इसके पीछे की मेहनत है वो किसी फैशन डिज़ाइनर की मेहनत है। और वो फैशन डिज़ाइनर की जो मेहनत है और जो इमेजिनेशन उसने किया है इस आउटफिट को तैयार करने के लिए, वो भाई कमाल की होती है। अब फैशन डिज़ाइनर कौन? फैशन डिज़ाइनर वही इंसान होता है जो नए स्टाइल्स क्रिएट करता है, कपड़ों के डिज़ाइन तैयार करता है और एक नए ट्रेंड्स को कह सकते हैं कि पैदा करता है, जन्म देता है। और एक बात ये भी सही है कि फैशन डिज़ाइनिंग केवल सिर्फ ये नहीं है कि आपने कपड़े बनाने का काम सीख लिया, कलर्स हैं, फैब्रिक्स हैं, पैटर्न्स हैं, क्रिएटिविटी है, ये सारा कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है और आप एक अच्छी ड्रेस तैयार कर सकते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे धीरे धीरे आगे और आगे जाके कामयाब फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। और हमेशा जब फैशन डिज़ाइनर होते हैं उनके अंदर एक नई कल्पना जन्म लेती है, एक अलग अलग तरह के कलर्स के साथ वो लोग खेलते हैं, कौन कौन से जो कपड़े हैं, फैब्रिक्स हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होना है, कहाँ पर स्लीव्स कैसी बननी है, कैसे नीचे फ्लेयर्स आने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल होती हैं। फिलहाल लहंगे से याद आया कि एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है लहंगा, और वो जो गाना है उसको जब भी किसी शादी में आजकल आप जाते हैं या कहीं पर मेहंदी का फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन है, तो वो जो गाना है वो ज़रूर प्ले होता है।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

जी हाँ, 12:23 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग में आप कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। फिलहाल आजकल देखिए आप, फैशन इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब सिर्फ इसमें कपड़े ही नहीं है, मतलब लिमिट सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है, बल्कि ज्वेलरी है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फुटवेयर डिज़ाइनिंग है, मेकअप स्टाइलिश है, और जो मेकअप स्टाइलिंग है उसके अलावा फैशन फोटोग्राफी जैसे कई जो नई फील्ड हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं। और अगर हम अपने देश की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, और ख़ासकर अगर अपने लखनऊ की बात करें, तो फैशन का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और काफ़ी रिच भी रहा है। अलग अलग जो स्टेट हैं उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी है, लखनऊ की चिकनकारी है, गुजरात की बांधनी है, पंजाब की फुलकारी सूट्स हैं, और दुनिया भर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेमस हैं। और हमारे जो इंडियन डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन को मिलाकर एक नया ट्रेंड बना दिया है। और बहुत सारे कपड़े हैं, आप देखिए कि अगर चिकन के कुर्ते देखते हैं, आप चिकन की साड़ी देखते हैं, उसमें एक अलग अलग

राजपूत वर्ग भी आपको नजर आएगा, जरी वर्ग भी नजर आएगा, कामदानी भी नजर आएगी, बहुत सारी चीजें हैं जो एक अलग तरह का फ्यूजन बना के एक नई ड्रेस स्टाइल की गई है, और उसको जब हम और आप कैरी करते हैं तो फिर वो अलग ही लुक देती है, और लोग ज़रूर पास आके पूछते हैं भाई ये हैंडमेड है, तो आप बहुत ही स्टाइल में बताते हैं कि यस ये हैंडमेड है। और इसी तरह अलग अलग कलर्स जो हैं वो आप तक हम पहुंचाते हैं, कैसे, सतरंगी चैनल को आप इंजॉय करते रहते हैं। और सतरंगी से याद आया कि एक और ट्रैक है जो काफ़ी हिट हुआ था और काफ़ी फेमस भी हुआ था, और उसका नाम ही कुछ ऐसा है कि हम और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो करें

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और 12:35 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ और मेरे साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसको अपना सकते हैं और एज अ फैशन डिज़ाइनर अपना करियर बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है, उसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया, वो फैशन डिज़ाइनर बन गई, आप भी बन जाएंगे, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर आपके अंदर कोई शौक है, सचमुच आपको कलर से खेलने का शौक है, सचमुच आपको ऐसा लगता है कि कपड़ों में आपकी दिलचस्पी है और सचमुच आपको ऐसा लगता है कि कपड़ों को लेकर नए नए जो आइडियाज़ हैं वो आपके अंदर आते हैं, नई नई जो क्रिएटिविटी है वो आपके अंदर जन्म लेती है, आप रात में भी सोचते हैं, दिन में भी सोचते हैं कि कैसे एक सिंपल से कुर्ते को अच्छा सा बनाया जाए, कैसे एक अच्छे से दुपट्टे को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए, तो आप इस फील्ड में जाने के लायक हैं, जा सकते हैं आप। और फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एक शानदार फील्ड भी है जो आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्सेज भी कराते हैं जहाँ स्टिचिंग है, स्केचिंग है, टेक्सटाइल नॉलेज है और फैशन मार्केटिंग जैसी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आपकी बहन ने कोर्स कर लिया तो आप भी कर लीजिए, आपकी बहन है या आपकी दोस्त है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो एक उनका सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें एक ही तरह के लोग होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, सामने वाले की सोच और दिमाग नहीं है। आपको नहीं पता सामने वाला का जो दिमाग है, जो सोच है, वो क्या सोच रही है, उसके अंदर कौन सा हुनर छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी इंसान इस धरती पर, इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, और उस टैलेंट को, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको आपको उजागर करना है, समझना है आपको कि किस फील्ड में आपकी दिलचस्पी है। अगर आप वाकई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये फील्ड है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई, हमें ये सब करना नहीं, हमें सिर्फ अपने कपड़ों को ही डिज़ाइन करना है, तो भी बहुत अच्छी बात है, आप अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पुराने कपड़े होते हैं, जो पुराने कुर्ते होते हैं, जो आउट ऑफ फैशन कहलाते हैं, या बहुत सारी ऐसी हेवी ड्रेसेस हमारे पास होती हैं जिनको हमें लगता है कि बताओ इतना महंगा ले लिया लेकिन अब फालतू पड़ा हुआ है, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको आप तरह तरह की डिज़ाइन दे सकते हैं और आप कैरी करके फिर से एक बार एकदम न्यू लुक हासिल कर सकते हैं। फिलहाल एक फिल्म आई थी जो बनी थी पुरानी स्टोरी पर, लेकिन कमाल के उसके गाने, कमाल के उसके डांस नंबर, तो भाई ये जो ट्रैक है ये भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और वक्त आपको बता दें 12:37, प्रोग्राम शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ, सुनते रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम,
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

देखिए, अगर आप घाघरा बनाते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आपने चुपके से ये घाघरा बना के तैयार कर लिया है, आप कहाँ लेकर जाएं, मार्केटिंग कौन करेगा, इतना पैसा भी नहीं है, कैसे क्या करें, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो अब बहुत दूर की बात हो गई हैं। मतलब ऐसा होता था कि पहले कोई आपकी कोई क्रिएटिविटी होती थी, आपकी कोई आर्ट होती थी, तो फिर आप जाते थे, आप उसकी फ़ोटो जो है उसे खींचते थे, फिर अपलोड करवाते थे, फिर विज्ञापन देते थे। लेकिन अब यूट्यूब का ज़माना है और लोग बहुत तेज़ी से वायरल हो जाते हैं, जो भी उनकी रील होती है, जो भी उनमें टैलेंट होता है वो उसको उस पर डाल देते हैं। और जहाँ तक कहा जा सकता है कि आज के वक्त में सोशल मीडिया ने फैशन इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और फैशन ब्लॉग्स जो हैं, उसकी वजह से जो नए नए डिज़ाइनर्स हैं उनको अपने टैलेंट को दिखाने का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल गया है। कई यंग डिज़ाइनर्स हैं जो घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अपने यूनिक डिज़ाइंस लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है दोस्तों कि फ़ैशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन लीजिए। असली फ़ैशन वही है जिसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हों, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हों। कई बार सिंपल ड्रेसिंग भी बहुत क्लासी लगती है। फैशन हमें ये सिखाता है कि ख़ुद को कैसे अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर दुनिया में फ़ैशन ना होता तो हर इंसान एक जैसे कपड़ों में दिखाई देता। फैशन ही हमारी जो पर्सनालिटी है उसको अलग पहचान देता है। कोई ट्रेडिशनल पहनना पसंद करता है, कोई वेस्टर्न, कोई फ्यूजन स्टाइल, और हर स्टाइल जो है वो अपने आप में एक कहानी कहता है। और आज के दौर में जो सस्टेनेबल फैशन का ट्रेंड है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे कपड़े और डिज़ाइन जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ। कई डिज़ाइनर्स तो इको फ्रेंडली फैब्रिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फैशन के साथ वो नेचर का भी ध्यान रख सकें। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम नेचर का ध्यान रखेंगे तभी हम आगे सर्वाइव भी कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप जो गर्मी है वो शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी है कि शायद हम लोग कहते हैं कि बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ज़रा नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए, जो भी बड़ी ही नहीं हुई है, उसके बारे में, उसके लिए हम क्या दे के जाएंगे, हम क्या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एक बहुत ही गहरा विषय है, इस पर सोचना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं, फ़ैशन की बात कर रहे हैं। और फैशन में जब आप एक अच्छा सा ड्रेस तैयार करते हैं, एक अच्छी सी कोई भी स्टाइलिश चीज़ आप तैयार करते हैं, तो लोग कहते हैं आफरीन आफरीन, यानी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। फ़िलहाल आफरीन ट्रैक याद आया और प्ले कर दिया, पहुँचा दिया आप तक।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 413 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं में शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग में देश में तीसरा स्थान मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को पहले नंबर पर लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम के साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। प्रदेश में 31 मई को बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी क्रम में आज मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा। बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा देर रात हुआ जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले गाजीपुर और चंदौली के रहने वाले थे। कैंचीधाम दर्शन के लिए जा रहे थे। 28 मई को होने वाले ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मेरठ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के धर्मगुरुओं, गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की कि पर्व को आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। साथ ही शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसी भी नई परंपरा को शुरू न करने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो इस घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: और 1:03 हो चुके हैं, प्रोग्राम होटो पे तेरी बात लेकर हाजिर है तरन्नुम। और आज का सवाल ये है, आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं, सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन की सबसे ज़्यादा याद दिला सकती है, वो कौन सी चीज़ है जो बचपन में सबसे ज़्यादा आपको याद दिलाती है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। आपको बताने कुछ देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, सुनते रहिए।

जी हाँ, रेनबो पर जो सॉन्ग की पार्टी लगातार चल रही है वो तो ऐसे ही जारी और सारी रहने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि हमने आपसे सवाल किया है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको बचपन की सबसे ज़्यादा याद दिलाती है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। फिलहाल स्वीटी जी का मेल आ गया बजाजा लखनऊ से, लिख रही हैं कि बचपन की जो हमें सबसे ज़्यादा याद दिलाती है वो जो छोटे छोटे बच्चे जब साइकिलिंग करते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि काश मेरी भी वही कलरफुल साइकिल जो थी अभी भी मेरे पास रखी हुई है, काश मैं फिर से छोटी बन जाती और ऐसे ही सड़क पर साइकिल चलाती हुई फिरती। फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बचपन की याद दिलाती हैं, लेकिन आपको एक चीज हम और याद दिला दें, और याद ये दिलाना है कि इलाकाई खबरें कुछ देर में आप तक पहुंचने वाली हैं। सुनते रहिए होठों पे तेरी बात तरन्नुम के साथ।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रेसिडेंट हाउस में मुनक़िद नागरिक अलंकरण जलसे में साल 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सरफराज किया गया। जाने माने फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनके ताउन के लिए बाद अज़मर्क पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। फिल्म अदाकार की अहलिया और लोकसभा रुक्न हेमा मालिनी ने यह अवार्ड हासिल किया। बजाने वाले डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। पद्म विभूषण गैर मामूली और खुसूसी खिदमत के लिए, पद्म भूषण खुसूसी खिदमत के लिए और पद्मश्री किसी भी शोबे में खुसूसी खिदमत के लिए दिया जाता है। साल 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्डों को मंजूरी दी है। बकिया पद्म अवार्ड फातिहीन को बाद में मुनक़िद होने वाले जलसे के दूसरे मरहले में अवार्ड से नवाजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 अवामी बहबूदी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। 413 करोड़ रुपए के लागत वाले इन प्रोजेक्टों की शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से मुतालिक पुस्तिमक्का का इजरा भी किया। प्रोग्राम में वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि लखनऊ नगर निगम को सफाई रैंकिंग में मुल्क में तीसरा मकाम मिलना एक बड़ी हसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को अव्वल नंबर पर लाना है। वजीर आला ने कहा कि नगर निगम के साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो लखनऊ को साफ और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। वजीर आला ने कहा,
1: मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए।
0: हुकूमत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की हमवार फराहमी यकीनी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगरबी एशिया तनाज़ों पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वज़ीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों को ख़त लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के री एग्ज़ाम को महफूज, हमवार और कामयाबी के साथ मुनक़िद करने की अपील की है। जनाब प्रधान ने पूरे मुल्क के सभी वज़राए आला, नायब गवर्नरों और हुकूमतों से इस मुतालिक तआवुन तलब किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गांव पंचायतों की नई बॉडी तश्कील होने तक या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की मुद्दत के लिए आउटगोइंग गांव प्रधानों को गांव पंचायतों का इंतजामिया मुकर्रर किया है। रियासत की गांव पंचायतों के प्रधानों की मुद्दतकार आज खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेटों को गांव पंचायतों में आउटगोइंग प्रधानों को इंतजामिया के तौर पर नामजद करने का हक दिया गया है। ये सभी कल से इंतजामिया के तौर पर कामकाज संभालेंगे। इन सभी को सिर्फ मामूल के मुताबिक और रोजाना के कामों को करने की इजाजत होगी और उन्हें कोई भी हिकमत अमली का फैसला करने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत ने यह भी वाजे किया है कि अगर किसी भी हालत में कोई हिकमत अमली का फैसला जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही यह फैसला किया जा सकता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 रोजा हज के पहले दिन कल आजमीन हज मिना के टेंट सिटी में जमा हुए। आजमीन

हज आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक शदीद सड़क हादसे में और आस्थाना हलके के किलोमीटर 262 पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही मुसाफिरों से भरी एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जहां बहक हो गए जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मकामी इंतजामिया ने फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और रसानी का काम शुरू कर दिया। दरियासना उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए सड़क हादसे में जानो माल के हुए नुकसान पर रंज का इजहार किया है। साथ ही मरने वालों के लवाहिकीन के तई सब्र की दुआ की है। दरियासना गुज़िश्ता शब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में कैंची धाम जा रहे 4 अकीदतमंद जा बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और कल पूरी रियासत में दिन भर की तेज धूप, शदीद गर्मी और लू के दरमियान रात में अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। रियासत के गोरखपुर और अयोध्या समेत कई दीगर अजला में गुज़िश्ता शब तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कुछ राहत दी। अयोध्या और जौनपुर में भी आज सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम तब्दील होने की खबर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

और 1:16 हो चुके हैं, एक बार फिर से शुरू हो चुका है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात तरन्नुम है आपके साथ। और आज हमने आपसे सवाल किया है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बचपन की याद दिलाती है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com।

कुछ गाने ऐसे होते हैं कि इनको आप जब भी सुनते हैं तो आपके होठ अपने आप हिलना शुरू हो जाते हैं, पैर जो हैं अपने आप वो ताता थैया करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको आप जब आपको लगता है कि भाई मूड ऑफ है, आपको लगता है कि भाई आप बहुत बोर हो रहे हैं, तो आप उन फिल्मों को देखना शुरू कर देते हैं। उसी तरह जब हम लोग को लगता है कि भाई अब बोर होने का मौका आ गया है, लेकिन भाई बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, और वो जो लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारे जो लिसनर्स हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आपने हमारा मेल शामिल नहीं किया, आज से मैसेज करना बंद, आज से मेल बंद, कान भी बंद कर लेंगे और होठ भी बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं लोग। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनको हम शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो आप बताइए भला हम कैसे उसको शामिल कर लें। जैसे कि अभी एक सज्जन हैं, उन्होंने हमें मेल किया है और नाराज़ हो रहे हैं कि भाई

आज से मेल बंद, कान भी बंद कर लेंगे और होठ भी बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं लोग। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनको हम शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो आप बताइए भला हम कैसे उसको शामिल कर लें। जैसे कि अभी एक सज्जन हैं, उन्होंने हमें मेल किया है और नाराज़ हो रहे हैं कि भाई मैंने आपको इतनी बार मेल किया लेकिन आपने हमारे मेल का जवाब नहीं दिया। तो भाई जिन्होंने भी हमें मेल किया, आपको बता दें कि जो प्रोग्राम चल रहा है ये होठों पे तेरी बात चल रहा है, आपने हॉटमेल के लिए हमें मेल किया है तो उसमें जब टाइम आएगा तो हम आपका मेल ज़रूर शामिल करेंगे, इसलिए नाराज़गी की कोई बात नहीं है। महेंद्र दीपन जी हैं और हमेशा देखिए नाराज़ नहीं रहते, हमेशा खुश रहते हैं और लिखते हैं कि आदरणीय आरजे तरन्नुम मैम सादर प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार आपको भी महेंद्र जी, कैसे हैं आप? और जाहिर सी बात है कि आज बड़ा मंगल है तो बूंदी और पूड़ी और सब्जी और शरबत ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। राजस्थान में भी नागौर रूण राजस्थान से लेने में मेल किया है, बहुत ही खूबसूरत सा मेल हमेशा ही भेजते हैं, पोस्टर करके भेजते हैं, बहुत अच्छा सा पोस्टर बनाते हैं और लिख रहे हैं होठों पे तेरी बात बहुत चाव से सुन रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा बचपन की याद दिलाती है, इसने तो सीधे मेरे दिल के तारों को छू लिया और मुझे मेरे बचपन के उन हसीन दिनों में वापस भेज दिया। और मैम मुझे अपने बचपन का क्रिकेट सबसे ज़्यादा याद आता है, क्या दिन थे वो भी, सुबह की पहली किरण, आँख खुलते ही बिना किसी चिंता के सबसे पहले हाथ में बल्ला थाम कर मैदान की तरफ दौड़ लगा देना, स्कूल की भाग दौड़, फिर भागते भागते स्कूल जाना, लेकिन दिमाग में बस यही चलना कि भाई छुट्टी कब होगी, छुट्टी कब होगी, और शाम का अनथक खेल, स्कूल से लौटते ही बस्ता पलट कर दोबारा खेलते ही भाग जाना, ना धूप की परवाह ना थकने का नाम। सच में ऐसे ही होता है जो बचपन होता है हमारा और आपका, और अपनों की डांट का जो प्यार होता है ना, देर शाम जब घर से लौटने पर घर वालों की वो प्यार भरी डांट सुनना जिसमें डांट से ज़्यादा फिक्र छुपी होती थी, और आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो बचपन का क्रिकेट, वो बेफिक्री, वो गलियाँ बहुत याद आती हैं। और बहुत खूबसूरत सा आपने हमें मेल किया, सच में बचपन जब एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। लोग अक्सर बच्चों को देखते हैं तो यही सोचते हैं कितने बेपरवाह हैं, कितने कुछ फिक्र नहीं है आगे क्या करना है, कैसे करना है, बस बच्चे हैं। और बच्चों के ऊपर अगर हम और आप चलते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाती है। आप बच्चों को देखिए, बच्चे हमेशा मिट्टी में खेलते हैं, अब गौर कीजिए कि जब मिट्टी होती है तो बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं फिर उन्हें तोड़ देते हैं, उसी तरह हमें और आपको भी सोचना चाहिए कि जिस तरह बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, घर बनाते हैं, तोड़ देते हैं, उसी तरह अगर हमारे दिल में किसी के लिए अहंकार का घर बन गया है, किसी के लिए कुछ ऐसा ईगो आ गया है, तो उसी तरह बच्चों की तरह अभी अगर आपने घर बना ली है किसी की बात को या दिल पर आपके लग गई है तो उसको भी तोड़ दीजिए उन बच्चों की तरह जो रेत का घर बनाते हैं और तोड़ देते हैं। लेकिन आप देखिए बच्चों से बहुत सारी सीख हमें मिलती है। बच्चे आप देखिए कि फ़ौरन लड़ाई करते हैं लेकिन फ़ौरन मेल भी कर लेते हैं, इसमें क्या मकसद है? इसमें मकसद ये है कि वो दिल पे बात रखते नहीं हैं, इसलिए तो बच्चे कहलाते हैं, इसलिए तो मासूम कहलाते हैं, इसलिए तो इतने प्यारे लगते हैं बच्चे। और बच्चे अक्सर ऐसे ऐसे सवाल कर जाते हैं जो हमारे और आपके दिल को छू जाते हैं। फिलहाल सुल्तान रज़ा साहब का भी मेल आ गया है, लिख रहे हैं तरन्नुम अप्पी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान साहब, और कुतुब खाना सब्ज़ी मंडी बरेली से हैं, और रज़ा, ज़ीशान रज़ा, मोनिस रज़ा, सादिक आज का ये सारे लोग सुन रहे हैं, आज का सवाल लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप लिख रहे हैं कि क्या खाती हैं तो इतना मीठा कैसे बोल लेती हैं? तो देखिए खाने की जहाँ तक बात है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको पी जाना पड़ता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कभी किसी की कोई बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जब इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं तो अपने आप जो दिल की कहते हैं ना भड़ास है, जो एक खलिश है, वो अपने आप बाहर निकल जाती है, तो अपने आप आपका दिल साफ़ हो जाता है। और जब दिल साफ़ होता है तो फिर आपके जो अल्फाज होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, तो शायद इसलिए है मेरे साथ। फिलहाल लिख रहे हैं कि बचपन की मेरी बॉस साइकिल जो आज भी मुझे बहुत याद आती है, वो मम्मी ने मचाने के ऊपर उठा कर रख दी है। और बचपन में जब ईद का मौका था तो हमारे भाई हमारे लिए खेलों में लिखते थे, वो भी हमें बहुत याद आते हैं, खेलों में लिखते थे वो भी बहुत याद आते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं, आपने हमें मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ लिख रहे हैं कि ईद आने वाली है इसलिए ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। जी बिल्कुल, ईद आने वाली है, और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जिस दिन आप कोई गुनाह नहीं करते, जिस दिन आप कोई किसी का दिल नहीं दुखाते, जिस दिन आप किसी से अमानत में खयानत नहीं करते यानी चोरी नहीं करते या किसी की कोई भी बात इधर से उधर नहीं करते, वो दिन आपका हमेशा ईद का दिन होता है। तो हमेशा हर दिन को क्यों ना ईद का दिन बना दिया जाए, किसी का कोई सपोर्ट कर दिया जाए, किसी के कोई जो रो रहा है उसके आंसू पोंछ दिए जाएं, किसी का कोई छोटी सी एक हेल्प सही कर दी जाए, कोई अगर क्रॉस कर रहा है सड़क तो उसको आप क्रॉस करवा दीजिए, कोई भूखा है तो उसे अगर थोड़ा सा भी खाना आप अपनी दो रोटी में से एक रोटी दे देते हैं तो वो सारा दिन ईद के दिन ही में शुमार होता है। फिलहाल रामेश्वर जी का मेल आया, लिख रहे हैं होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता है बहन तरंगम जी को सप्रेम नमस्कार। रामेश्वर जी आप हमेशा में तरंगम कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी प्यार नमस्कार। लिख रहे हैं कि बराबर

0: सुन रहे हैं और हमें आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति होती है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी, आप लोग हम लोग की इज्जत अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लिख रहे हैं कि बचपन में मेरे पिताजी एक रेडियो लाए थे और उसी से सारे प्रोग्राम सुना करते थे और बस वही रेडियो जो है वो इनको बचपन की याद दिलाता है। और सच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत सहेज कर संवार कर बहुत ही छुपा कर हम लोग रखते हैं क्योंकि उससे बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी। ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से हैं रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको मेल करने के लिए। आप भी धन्यवाद लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। गुलफशा सिद्दीकी जी हैं, दिन भर रेडियो सुना करती हैं और मेल के जवाब देती हैं, कॉल करती हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा मोहब्बत देते हैं रेडियो को, रेनबो को। लिख रही हैं कि तरन्नुम अपी, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से हूँ, आज सुबह की बात थी, मेरा छोटा वाला बेटा ज़मीन पर गिरा तो रोने लगा, मैंने कहा उठो और चींटी मर गई, उठो, लेकिन अब भी क्या बताऊँ वो नहीं उठा। फिर मैं गई और थोड़ा सा हाथ लगाया तो वो तुरंत उठ गया। और एक हम जब गिरते हैं तो छोटे थे, मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी अम्मी भी बेटी थी, उनको उनको चींटी मर गई तो हम चींटी देखते थे कितनी मरी है और तुरंत उठ जाते थे। लेकिन अब भी मुझे अपने बच्चों के साथ यही सब याद आता है, सच में बच्चे कितने हम लोग सीधे हुआ करते थे, कहा चींटी है तो देख लिया, कोई कहता था चुप हो जाओ रात में सो जाओ भूत आ जाएगा, हम लोग सो जाते थे कि भूत सच में आ जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे खुद ही समझ लिए कि क्या बन गए हैं, तो क्या कहा जाए कि वो डरते डरते हैं नहीं किसी चीज़ से। लेकिन एक चीज़ और है जो यहाँ पर कहना चाहेंगे हम, कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में सर्व कर रहे हैं, स्क्रीन टाइमिंग उनकी बहुत है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को आप मोबाइल से दूरी बना कर रखिए, हो सके तो टेलीविज़न दिखाइए, रेडियो है बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी राइम्स हैं, बहुत सारी ऐसी पोम हैं जिनको बच्चे सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो जहाँ तक हो सके बहुत दूरी बना कर रखनी है। फिलहाल अभी आपसे मेरी थोड़ी सी एक दूरी होगी क्योंकि लेंगे कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर आपके जो मेल है उनको पढ़ने का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको बता दें कि आज हमने सवाल किया है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन की सबसे ज्यादा याद दिलाती है। मेल कीजिए fmakashwani@gmail.com पर।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम,
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अच्छा एक चीज़ है, दुआओं में बड़ा असर होता है. मतलब दुआएं जो होती हैं वो आपको ऐसी ऐसी जगह पे पहुंचा देती हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिला देती हैं जिनको हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं. और शायद इसीलिए दुआएं जो हैं वो बहुत दिल से मांगना चाहिए. लेकिन दिल कब दुआ के लिए दुआ गो होता है? जब हमारा और आपका दिल एकदम साफ होता है. दूसरों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छे कर्म करने के सोचते हैं, तभी हम और आप दुआ करते हैं और वह दुआ अर्श तक जाती है. और कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है. तो इसलिए हमेशा कोशिश ये कीजिए कि बहुत अच्छे ना सही तो कुछ अच्छे बन जाइए. कभी कभी लोग कहते हैं वो दिखाने के लिए बड़े अच्छे बनते हैं, तो कम से कम दिखाने के लिए अच्छे बन जाइए. लेकिन अच्छे जब आप बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होता है कि हम अच्छे बनते चले जाते हैं. अब अच्छे अच्छे जो हमारे लिसनर्स हैं उनके अच्छे अच्छे मेल आ रहे हैं. उन अच्छों अच्छों में एक अच्छी सी लड़की है जो शामिल है इस प्रोग्राम में. रोशनी रावत जी हैं, लिख रही हैं, नमस्ते तरन्नुम दीदी जी, आप कैसी हो? नमस्ते रोशनी, उम्मीद है कि आप भी अच्छी होंगी. प्रोग्राम इनको बहुत बिंदास लग रहा है, लगातार 12 बजे से सुन रही हैं. रोशनी रावत ग्राम पोस्ट बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से हैं, अभी चंडीगढ़ में हैं. काफ़ी दिनों से चंडीगढ़

में रह रही हैं वहाँ से सुन रही हैं और लिख रही हैं कि आज का जो टॉपिक है जो हमने पूछा है लोगों से कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन की बहुत ज़्यादा याद दिलाती है, तो लिख रही हैं कि बचपन के दिन सुनहरे थे, ना समझ बेपरवाह अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उन दिनों की बात है, शाम होते ही लुका छुपी खेलना बहुत पसंद करते थे और आज अपने बचपन के दिनों की याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी मेल करने के लिए। और सच में बचपन ऐसा ही होता है। अमन नवाब हैं, लगातार सुन रही हैं, मेल कर रही हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून अप्पी, गुड आफ्टरनून टू यू टू। अमन लिख रहे हैं कि बचपन की जो बात सबसे ज़्यादा याद आती है वो है बेवजह ज़िद्द करना। अच्छा, मतलब ज़िद्दी हैं आप, ज़िद्दी बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब रो रो के अपनी सारी चीज़ें बनवा लेते हैं। लिख रहे हैं कि बचपन में कोई ज़िद्द करते थे तो तुरंत पूरी हो जाती थी, अब ज़िद्द करो तो पूरी नहीं होती। बचपन में कोई चीज़ गुस्से में तोड़ देते थे तो कोई कुछ नहीं कहता था, अब ऐसा नहीं कर सकते। बचपन में मैंने अपने दादाजी का चश्मा तोड़ा था, आज भी याद है, और मुझे अपनी बुआ दादाजी से चाचुओं से बहुत प्यार मिला है, बहुत नखरे उठाए हैं सबने। और लिख रही हैं, आवर चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस ऑफ आर लाइफ। बिल्कुल सही बात है कि जो एक बचपन का फेज़ होता है वो शायद दोबारा पैसे भी अगर खर्च कर दिए जाएं तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। रामराज जी हैं, लिख रहे हैं, होठों पर तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से हैं ये रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु बजरंगी। और प्यार भरा नमस्कार, कार्यक्रम के ऊपर कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न सुन नहीं पाए थे तो चलिए अब आपने सुन लिया। रामराज जी, आज का सवाल हमने ये किया है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन की सबसे ज़्यादा याद दिलाती है। अभी भी बहुत वक्त है हमारे पास, आप हमें मेल कर सकते हैं फिल्म आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। फिलहाल एक और ट्रैक है और ये गाना बड़ा अच्छा लगता है, इस गाने में कह सकते हैं कि मेरा भी नाम आया है, तो सुने।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक बजकर 42 मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात, तरन्नुम है आपके साथ। और आज हमने आपसे सवाल किया है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको बचपन की सबसे ज्यादा याद दिलाती है। आप हमें मेल कर सकते हैं

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: Oh God, stay tuned to चैनल सतरंगी रे।

मैं देखिए रेमो ने ये जो ट्रैक गाया है नो डाउट इतना सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर था ये उस टाइम का कि भाई क्या कहने हैं इसके. लेकिन हम्मा हम्मा कोई कौन से लैंग्वेज में हम्मा हम्मा होता है पता नहीं हमें, लेकिन हम बात करें. 1:52 हो चुके हैं. चंद्रमोहन मिश्रा जी का मेल आ गया लखीमपुर से, लिख रहे हैं प्यार भरा नमस्कार. आपको भी प्यार भरा नमस्कार. लिख रहे हैं कि आपने जो सवाल पूछा है तो हम आपको बताएं कि 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ. एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, सर का ऑपरेशन हुआ, चोट लगी थी और मेरा माइंड जिसकी सोच फिर से बचपन से ही शुरू हो गई. और मेरा माइंड चेकअप लगातार बहुत अच्छा होता रहा है क्योंकि हम लगातार FM सुनते रहे और मेल भी करते हैं. बहुत अच्छा लगा. 1 घंटे के प्रोग्राम में सिर्फ एक मेल पढ़ी जानी थी, उस दिन मेरी ही पढ़ी गई. तो मैं आपको बताऊं कि बचपन की बात पूछी जाए तो मैं बचपन से मैं FM सुनता था और ऑपरेशन के बाद फिर से वही हुआ और मैंने FM लगातार सुना और अब मैं काफ़ी सही हो चुका हूं. क्या बात है चंद्रमोहन मिश्रा जी, बड़े अफसोस की बात है कि भाई आपके सर में चोट लगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपकी चोट जो है वो ठीक हो गई. वकील अहमद साहब हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. आपकी तारीफ़ की है थोड़ी सी इन्हें, लिख रहे हैं कि चाचा मेरे 2 मंजिल पर रेडियो का एंटीना बनते थे और हमारे बचपन में वकील अहमद मंसूरी कटका हतोरी ज़िला सीतापुर. एक तो ये लोग पॉजेस और पंचेस नहीं लगाते हैं तो लगातार हम लोग पढ़ते चले जाते हैं. बहुत सारे मेल इन्हीं ने नाम लिए हैं. बड़े मंगल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपको भी शुभकामनाएं. जावेद अख्तर साहब का मेल आ गया, लिख रहे हैं तरन्नुम बाजी बचपन की वो याद है. हाँ क्या रिश्ते बन जाते हैं यहाँ पे बताइए. मेरे दिमाग में तरोताज़ा है कि जब मैं रेडियो पर बिना का गीत माला कार्यक्रम आता था जिसे सुनने के लिए मैं अपने दोस्त के यहाँ जाकर रेडियो पर सुनता था. उस टाइम मेरे पास रेडियो नहीं था. मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं शमसुल खमर राही बेगम रुखसार. अच्छा अब रेडियो आ गया है तो अब आप सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है. रामराज जी का मेल आ गया है और लिख रहे हैं कि तरन्नुम बिटिया को प्यार भरा नमस्कार. आपको भी प्यार भरा नमस्कार रामराज जी. और आगे लिख रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो एक कटोरे में दूध पीते थे, उसी कटोरे में खाना खाते थे और अगर दूसरे दिन दूध नहीं मिला तो कटोरा फेंक देते थे. है तो दूध पी पी के आप बड़े हुए हैं, वो भी कटोरा भर भर के. तो कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रांग भी बहुत ज़्यादा होंगे आप. और बहुत अच्छी बात आपने लिखी है. और बचपन में अभी जो लोग बचपन में हैं उनको चाहिए कि भाई वो कटोरे भर भर के दूध पिए तभी वो हेल्दी और स्ट्रांग होंगे जैसे कि रामराज जी हैं. फिलहाल 1:54 हो गए हैं तो इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए यानी होटो पे तेरी बात को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत. तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हॉट मेल. सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो FM रेनबो.

नमस्कार। दोपहर के 2 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबंधन से सशक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्ता

पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों के नेताओं से भी इस पुस्तक को पढ़ने और ये समझने का आग्रह किया कि कैसे दो मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलकर काम किया है। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है जबकि गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि जिस कार में वे यात्रा कर रहे थे वो एक्सप्रेसवे पर खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। दोनों हादसों की जांच जारी है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज़ घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एम के बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एम के बंधानी हिंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: और भाई 2:03 हो गए हैं और ये जब 2 बजता है ना, कितने सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं अपने स्क्रीन पे और मेल करना शुरू कर देते हैं। और इतने सारे मेल आए हैं, मतलब कितने सारे मेल आए हैं, कैसे बताएं आपको कितने सारे मेल आए हैं। और सबसे पहले मेल पढ़ने की शुरुआत करते हैं। कीर्तनपुरी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं कीर्तन जी, गाने की फरमाइश की इन्होंने। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी लिख रहे हैं, माई रेडियो माई लाइफ। अगर वाइफ ने सुन लिया तो सोचिए क्या कहेंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो हंसी हंसी की बात है। नबी हसन साहब का भी मेल आ गया है, गाने की फरमाइश, मार हरा दरवाज़ा ईटा से, नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से हैं, मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। और बिना देर के पहले एक ट्रैक है जो आप लोगों ने पसंद किया है, उसको प्ले करते हैं, उसके बाद आपके मेल पढ़ने का सिलसिला लगातार ऐसे रहेगा, जारी रहेगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
3: आई एम संध्या त्रिगुनी, बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है, दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
5: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

और 2:12 हो चुके हैं हमारे पास, और भी मेल आ चुके हैं। दिलावर खान साहब का मेल आया है, लिख रहे हैं तरन्नुम बाजी, नहीं नहीं तरन्नुम जी लिखा, अच्छा मैं लगा बाजी अप्पी, ये सब लोग दोस्ती बना के रखते हैं, रिश्ते बना के रखते हैं, तो इसलिए पढ़ लेते हैं मेल। और बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। रघुवीर नगर दिल्ली से मेल किया है, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, और भी लोग हैं। तेज बहादुर यादव जी हैं, लिख रहे हैं हॉटमेल प्रस्तुत करता तरन्नुम मैम जी को प्यार भरा सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, सभी प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं इनको, गाने लाजवाब लग रहे हैं। और लिख रहे हैं कि फिल्म का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाना जो है वो शामिल कर लीजिए। ये गाना तो वही लोग सुनते हैं जिनकी शादी वादी हो रही होती है, शादी होने वाली होती है। फिलहाल आपने क्यों पसंद किया ये तो आपने मेंशन नहीं किया। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनित यादव और बेबी वानिका गांव माऊ शहर की जिला राय बरेली उत्तर प्रदेश से हैं और गुरुग्राम हरियाणा में है इस वक्त, और वहीं से ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं। शाहनवाज अंसारी जी का मेल आ गया, हेलो हमारी प्यारी से तरन्नुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे से हैं प्यारे से शाहनवाज भाई, आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे होंगे। हैदराबाद तेलंगाना में हैं, लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं लेकिन अभी हैदराबाद में हैं। सभी लिसनर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अर्ज है घर से दूर रहकर ईद मनानी है, अरे ये भी तो एक कुर्बानी है, क्या बात है। और लिसनर्स की पसंद का भी कोई गाना सुनवा दीजिए चलेगा। सिमरत समरा निषाद का मेल आ गया, आरजे तरन्नुम जी को प्यार भरा सलाम, बहुत दिनों के बाद मेल कर रही हूँ, बहुत उम्मीद के साथ मेल कर रही हूँ, शेख सराय खीरी टाउन से हूँ, सभी रेनबो फैमिली को प्यार भरा आदाब, सभी को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अर्ज है जिंदगी का हर पल खुशियों से कम ना हो, आपका हर दिन ईद के दिन से कम ना हो, और गाने की फरमाइश की है, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र दीपन जी का अगेन मेल आ गया है, लिख रहे हैं कि मैं नागौर राजस्थान से हूँ, आपके प्रोग्राम की प्रस्तुति लाजवाब, मैं कहीं भी रहता हूँ और आप जब आती हैं तो मैं प्रोग्राम मिस नहीं करता, बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई हौसला अफजाई का, और कहीं भी रहते हैं तो प्रोग्राम सुनते हैं। तेज बहादुर यादव जी का मेल आ गया, प्यार भरा नमस्ते सलाम, कैसी हैं आप? तेज बहादुर जी आपका जो मेल है उसे हम शामिल कर चुके हैं, इसलिए प्लीज़ अब दोबारा मेल मत कीजिए। दूसरा जो मेल आ गया है वो आया है बबलेश पनवार जी हैं, पारस मड़ी रेडियो श्रोता संघ और गांधी चौक वाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान हैं और डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा रेडियो दीवाना। इतने सारे लोग हैं इकट्ठा मिलकर मेल कर दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई साथ ही में जब आप लोग मेल करते हैं तो पढ़ने में भी बड़ी आराम रहता है हम लोगों को। पंकज शर्मा जी का मेल आ गया है, गुड आफ्टरनून जी, एनी सॉन्ग मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर, न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने हमें मेल किया। और गाना नो डाउट आपने बहुत अच्छा पसंद किया है, चलिए सुनते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

2:23 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, तरन्नुम है आपके साथ और मेरे साथ है नेक्स्ट मेल, आर्यन वर्मा जी का मेल आया है मेरे पास और लिख रहे हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं ये, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुजायुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए आपका। और बाबू अंसारी जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं तरन्नुम अप्पी कैसी हैं आप, मुझे ये गाना सुनवा दीजिए। और नसीब अंसारी, मुन्नान अंसारी हैं, कुलदीप गुप्ता हैं, बाबू अंसारी हैं जी, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि ये जो गाने हम लोग प्ले करते हैं आप लोगों की पसंद में से ही हम लोग चूज़ करते हैं और जो गाना लगता है कि भाई क्या गाना है और क्या बात है इस गाने में, तो वो गाना हम जल्दी से क्यों करते हैं और प्ले कर देते हैं। राजेश वर्मा जी का मेल आ गया है, अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दिए। देखिए कितने अच्छे हैं राजेश भाई, अपनी पसंद कहते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि भाई अपनी पसंद का जो भी गाना आप सुनवा दीजिए। और गोल्डन रेडियो श्रोता सिंह राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया। इसके अलावा जो मेल आ गया है मेरे पास वो आया है नरेश जी का, लिख रहे हैं नमस्कार जी आपको आरजे जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार नरेश जी, कैसे हैं आप, लिख रहे हैं नाम पूरे पढ़िएगा, हमेशा ही लिखते हैं, गाने की इनको टेंशन नहीं रहती, गाना कोई भी बजा दे लेकिन नाम इनको टेंशन रहती, पूरे पढ़िएगा और हम पूरे ही पढ़ते हैं। ख्याल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। और पता आप लोग के जो नाम होते हैं ना, जब सपने आते हैं कभी कभी तो लगता है यही हम लोग पढ़ रहे हैं और दिमाग में भी चलता रहता है कि भाई ये मेल आए थे, इतने थे, थोड़े बहुत दिमाग रहता है तो मेल भी याद रह जाते हैं आप लोगों के। अब्दुल गफ्फार साहब का मेल आ गया है, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं, किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी, गुजरात गांधी ग्राम से हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस सीख रहे हैं कि आप लोगों के जो नमस्ते हैं सलाम है उस लैंग्वेज में उसके जवाब दे सकें, अब देखिए कोशिश कहाँ तक रंग लाती है। तो भाई ठीक है, जय है, हमेशा उतावले रहते हैं, परेशान रहते हैं, मेरा नंबर कब आएगा, ऐसी टेंशन रहती है उनको हमेशा, और इतने सारे मेल कर देते हैं एक ही प्रोग्राम में। भाई आपका भी नंबर आएगा, अभी 2:05 यानी 2:25 तो हुए हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का जो फल होता है ना बहुत मीठा होता है आजकल के आम की तरह। उत्तम नगर दिल्ली से मेल कर रहे हैं जयराम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन खुरवाल, दीपांशु खुरवाल, और आहा क्या गाना पसंद किया है जय भाई, बहुत अच्छा गाना पसंद किया आपने, ताज मोहम्मद साहब हैं ये भी बहुत है।

परेशान रहते हैं हमेशा, इनको लगता है मेल शामिल नहीं होगा। हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, प्रसारण जी को नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार ताज मोहम्मद साहब, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, खुशनसीब हैं आप कि आपने हमें मेल किया, और खुशनसीब है हम कि हमने आपका मेल पढ़ा। अब ठीक है, बहुत शुक्रिया कर रहे हैं अदा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोधराज खुरवाल जी हैं, ये भी बहुत परेशान रहते हैं, बहुत मेल करते रहते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका खुरवाल, भानु प्रकाश जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बाबू अंसारी जी का मेल आ गया है फिर से। बाबू अंसारी जी, हम तो आपका मेल पढ़ चुके हैं। रियाज फैजान का मेल आ गया है, और भाई को गाना सुनवाते हैं, खुद शायद ये कान बंद कर लेते हैं, हमेशा ये कहते हैं हमारे भाई रियाज को गाना सुनवा दीजिए, लेकिन अब गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ प्लीज़, गुस्सा भी होते हैं प्लीज़ भी करते हैं, फिर हार्ट रोजेज और दोनों भाइयों की अच्छा पिक्चर भी बना के भेजते हैं ये। और गाने की फरमाइश बहुत दिन से कर रहा हूँ, और मैं ईरान में हूँ, और इनके भाई कहाँ पे हैं, ये ईरान में हैं तो भाई इनके मेरे ख्याल से यही होंगे, ये आपने लिखा नहीं है। रेहान रियाज फैजान एंड द टिक्का इनका दोस्त है, और बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। तुलसी मस्कीन साहब का मेल आ गया है, प्रिय होस्ट तरन्नुम जी ढेर सारे, एक साथ गीत सुनवा दिए, अब मेल ले लो, नाइस सॉन्ग, गाने की फरमाइश इन्होंने की है, गाना बिल्कुल हम सुनवाएंगे, लेकिन अभी जो गाने के भाई जो टॉप मोस्ट इस वक्त का ट्रैक है जो आप लोगों ने पसंद किया है, नो डाउट बहुत अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग।
4: सपने बड़े हैं,
5: स्टाइल अलग है,
4: तो ये शो है आपके लिए।
5: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
4: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
5: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
4: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

और 2:38 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, तरन्नुम है आपके साथ और मेरे साथ बहुत सारे मेल आ गए हैं इससे पहले कि वक्त बहुत आगे निकल जाए, लेकिन सारी चीज़ों का देखिए ध्यान रखना ज़रूरी है। आप लोग गानों की फरमाइश करते हैं वो भी प्ले करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के मेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कमर्शियल ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और अब जो मेल है मेरे पास वो है राजकुमार डूडी जी का, गांव फ्रांस से हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, इतने अच्छे हैं ये कि कह रहे हैं कोई भी गाना चलेगा। देखिए बताइए कितने अच्छे इंसान हैं। यहाँ दिलीप प्रामिकर जी हैं, लिख रहे हैं नमस्कार प्रसारक जी, आपको भी नमस्कार दिलीप, कैसे हैं आप। आकाशवाणी लखनऊ हॉट मेल में ये लिख रहे हैं गाने की फरमाइश, राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रुचिका रामेकर परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमें महाराष्ट्र में सुन रहे हैं। शाहरु नूर अंसारी जी का मेल है, कोई भी गाना सुनवा दीजिए, हर हरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरु नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया। रामेश्वर जी हैं, प्रस्तुतकर्ता बहन तरंगम जी को प्यार भरा नमस्कार, लगातार सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि क्या आप मुझसे नाराज़ हो। अरे नहीं रामेश्वर जी, कैसी बातें करते हैं आप लोगों से, हम लोग क्यों नाराज़ होने लगे बताइए। लिख रहे हैं कि ग्राम पोस्ट मंगीसापुर कानपुर देहात से हैं रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश पुत्र वधु निशा, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रकाश बुरगांवकर जी का मेल आ गया है गाने की फरमाइश, छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बुरगांवकर, सुषमा बुरगांवकर, प्रांजलि सोहम बुरगांवकर, सदानंद विराज स्वीट अंशुमन बेबी ओवी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे हार्ट्स आपने भेजे हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने प्यार से हमें मेल किया है। भूषण खेरा जी का मेल आ गया है और फजलिका पंजाब, भूषण खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, लाडी खेरा, शालिनी खेरा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा इन्होंने, कोई गाने की फरमाइश नहीं है, लेकिन चलिए आपकी पसंद हमारी पसंद, हमारी पसंद आपकी पसंद, ओके। मोहम्मद सादिक खत्री जी हैं, मोहम्मद सादिक खत्री जी जो हैं वो फॉरवर्डेड मेल कर रहे हैं हमें, कोई भी इन्होंने शिकायत तो फरमाइश कुछ भी नहीं लिखा है। संजय ढिंगिया जी का मेल बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया पार ढिंगिया नमस्कार जी लिख रहे हैं, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, गाने की फरमाइश की है। और सुनील पाठक जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक लिख रहे हैं, 2 बजे मैसेज किया था, नहीं लगा जी।

अब दोबारा कर रहा हूँ, नज़रअंदाज ना करना जी, ऐसा कैसे हो सकता है जी, आपका मेल हमने देखिए शामिल कर लिया जी, अब तो खुश हैं जी। आगे लिख रहे हैं सुधाकर जाधव जी, और प्रेम पूर्वक नमस्कार ग्राम पंचायत कालीगांव से जाफराबाद से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख, गाने की फरमाइश की है। और अब्बासी जी का है, लिख रहे हैं कि आपको मेरा मेल नज़र नहीं आता तो मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, हमारी नज़र ही ऐसी है कि सबको नज़र में रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आप लोग इतने नाराज़ हो जाते हैं। भाई देखिए, नाराज़गी अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, और वैसे इतनी गर्मी ऊपर से इतना गुस्सा आप करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंद शहर से है मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शनाज सरफराज फरदीन अब्बासी फैमिली ने मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और हितेंद्र दास जी हैं, हेलो आरजे जी, हेवी रेन एंड रेन इन असम, क्या बात है हितेंद्र दास जी, आपने तो मतलब एकदम ठंडा कर दिया माहौल को ये मेल करके कि वहाँ पर बारिश हो रही है। हितेंद्र दास जी हैं, असम से हैं, सोन बिल कुडलाई असम से मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी हितेंद्र जी, आपने हमें मेल किया, बताया कि वहाँ पर बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा लगा। मोहसिन रज़ा साहब हैं, प्यार भरे आदाब, खैरियत से हैं, दुआ में याद रखिएगा। और सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब वक्त हो गया है कि हम एक और जो गाना है उसको हम शामिल करें अपने इस प्रोग्राम में, आइए इन्जॉय दिस लवली ट्रैक फ्रॉम द मूवी फिर हेरा फेरी।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: और जल्दी से आप लोगों के मेल पढ़ लेते हैं। अनोन काले जी का मेल आ गया, प्यार भरा नमस्कार, और गाने की फरमाइश इन्होंने की है शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से। संतोष काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले, गंजन सोलाकार, राजू माथे, और बहुत सारे मेल हैं। जय जवान जय किसान लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया। डीके जी का मेल आ गया है, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, गाने की फरमाइश। और डीके साहब हैं न्यू दिल्ली से हैं। अच्छा, सतीश नेजा जी हैं, लिख रहे हैं नमस्कार जी, और मनाली से हैं, हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत एंड रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला एंड सतीश अनेजा। किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए, मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं कि आप लोग फरमाइश करें और आपकी पसंद के ट्रैक हम आप तक पहुँचाएँ। दिग्दर्शन गौर जी का मेल आ गया है। तरन्नुम जी, क्या हमें भी एक साथ 10 ईमेल भेजने पड़ेंगे? देखिए गुस्सा कर रहे हैं ये भी और नाराज़ हो रहे हैं। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, गाने की फरमाइश की है। और दिग्दर्शन साहब, थोड़ा सा तरबूज खाया करिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहा करिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के मेल हम शामिल ना करें। दारा सिंह जी का मेल आ गया है चौटाला से, हरियाणा से दारा, पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गाने के बोल, आवाज़ और सब कुछ लिख के भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी दारा सिंह जी, आपने हमें मेल किया। रोजी डी कैस्ट्रो, रिस्पेक्टेड होस्ट दी, हम भी जुड़े हुए हैं, हमें पता है आप हमेशा जुड़ी रहती हैं, जनकपुरी सहारनपुर से हैं। जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पाल वलस डी कैस्ट्रो, किसी भी गाने में हमें शामिल कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेल करने के लिए दीपेश वर्मा जी का मेल आ गया है, जय जोहार करते हैं हमेशा, आपको भी जय जोहार। और ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गाने की फरमाइश की है। वक्त इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है इस प्रोग्राम में कि हम लोग खुद ही सोचते रह जाते हैं, आपस में बात करते हैं, बताओ इनका गाना नहीं प्ले कर पाया, बताओ कितने नाराज़ हो गए, लेकिन एनीवेज वक्त है तो आगे तो बढ़ेगा ही। और जब वक्त निकल जाता है तब समझ में आता है कि वक्त कितना कीमती है। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं, हिंदुस्तान रेडियो मित्र ब्रजेंद्र विश्वकर्मा हॉटमेल, आदरणीय प्रसारक जी सप्रेम नमस्कार, किसी भी गाने में शामिल करिए। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया। आफ्ताब अंसारी साहब का मेल आ गया है, आरजे तरन्नुम सिस्टर जी, प्यार भरा नमस्कार, आदाब, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। शेरवानी स्कूल गंज डुनवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। राजेंद्र नारंग जी का भी मेल आ गया है, सुरेश नारंग जी का भी मेल आ गया, दोनों भाई भाई हैं या पिताजी हैं, बेटे जी हैं ये तो पता नहीं है। रिस्पेक्टेड आरजे, यू सो स्वीट वॉइस जी, थैंक यू सो मच। गाने की फरमाइश सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, हार्ड भी भेजे हैं, बूंदे भी भेजी हैं, छाता भी भेजा है, छाता तो है मेरे पास लेकिन बूंदे तो बरसे हैं ऊपर से, पानी की जो पसीने की बूंदे हैं वो तो लगातार निकल रही हैं, लेकिन देखिए भाई आपने ये जो भेजा है, विश के ऐसा हो जाए। अवधेश कुमार जी का भी मेल आ गया है, किसी भी गाने में इतनी जल्दी में मेल किया, बताइए अवधेश जी आपने किसी भी गाने में, आगे कुछ लिखा ही नहीं है। रविंद्र मोहनदास जी हैं, कोई भी गाना सुनवा दीजिए, किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी जी। और नेक्स्ट जो मेल आया है मेरे पास, उषा मोहन जी का है, पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बिना देर किए जल्दी से प्ले कर देते हैं एक आप लोगों की पसंद की भी से ट्रैक।

देखिए झुमका टीका खाना पीना जर जेवर जमीन और रहना और ये सारी जिंदगी जो है बस यही है लाइफ। और लाइफ में लोग अक्सर कुछ और अलग कर जाते हैं और वही लोग अलग भी कहलाते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग ये सोचते हैं ना, टीका पहन लिया, झुमका पहन लिया, लहंगा पहन लिया, खा लिया, पी लिया, सो गए और बस लाइफ यही है। लेकिन लाइफ दोस्तों एक बार मिलती है जिंदगी में, एक बार बचपन आता है, एक बार जवानी आती है और फिर बुढ़ापे की तरफ इंसान बढ़ जाता है और फिर सोचता है कि भाई अब तो मोक्ष की प्राप्ति करना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें, अब आप कहेंगे तरन्नुम तो डरा रही हैं, डराने की बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी का सच यही है, एग्जैक्ट लाइफ की जो डेफिनेशन है वो बस यही है कि ज़िंदगी बस ऐसे ही है। और कब निकल जाती है ज़िंदगी, खुशी और ऐश के जो ज़माने होते हैं वो इतनी जल्दी बीत जाते हैं कि हम और आप सोचते रह जाते हैं, बताओ अभी आए थे, अभी ऐसा हो गया, अभी तो ये ऐसा हुआ था और अभी ऐसा हो गया। तो फिलहाल 2:54 हो गए हैं, देखिए अभी लग रहा था कि प्रोग्राम शुरू किया था और अभी हमें ये कहना पड़ेगा कि हमें वाइंड अप करना है। लेकिन फागुराम यादव जी का जो मेल है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ये हम ज़रूर पढ़ेंगे। अनिल मोहन जी का मेल आ गया है, अनिल मोहन जी का मेल हम पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे लोगों ने हमें मेल किए हैं। हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रहलाद कुमार कुशवाहा जी हैं, शुभ दोपहर कर रहे हैं, आपको भी शुभ दोपहर। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और तपन बहुत हो रही है, ऐसे में सभी लोग ध्यान रखें, गाने की फरमाइश की है प्रहलाद कुमार कुशवाहा, श्रीमती सोनम कुशवाहा, गनीपुर बेहटा बांगरमऊ उन्नाव से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप कुशवाहा साहब, आपने हमें मेल किया। शाहरुन नूर अंसारी का भी मेल आ गया है, शाहरुन हम आपका मेल शामिल कर चुके हैं। मुकेश कश्यप जी का मेल आ गया है ज़िला मुरादाबाद से और मेरे ख्याल से ये मेल भी हम शामिल कर चुके हैं। बहरहाल आप लोगों ने जो हमें मेल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब वाइंड अप करने के लिए इंतजार हमें बिल्कुल नहीं करना है। 2:55 नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। हॉटमेल से वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत तरन्नुम को।

नमस्कार। दोपहर के 3 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे नगर ईज ऑफ लिविंग की दृष्टि से स्वच्छ, सुंदर एवं सुरक्षित शहरों के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम लखनऊ की 413 करोड़ रूपये लागत की विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में 17 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में 65 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबंधन से सशक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा

का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप का अहमदाबाद में आयोजन होना भारत के पारंपरिक योग के वैश्विक खेल के रूप में पहचान दिलाने के प्रयासों को रेखांकित करता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि यह भारत सॉफ्ट पावर के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है और वैश्विक स्तर पर शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाला सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि KVIC 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है जिनमें से 80% महिलाएं हैं। श्री कुमार ने जानकारी दी कि खाद्य उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए KVIC जल्द ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
2: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
3: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
4: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
5: और 3:04 हो गए हैं दोस्तों। और ये जो वक्त होता है थोड़ा सा अलसाया हुआ होता है, क्योंकि शाम दिन जो है वो शाम से मिलने के लिए बिल्कुल बेकरार रहता है। धूप जो है वो थोड़ी सी उसकी जो आँखों की कहते हैं ना बहुत तेज़ आँखें निकालती है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो दिल कहता है कि बहुत ही सॉफ्ट नंबर इन्जॉय किए जाएँ, बहुत ही ऐसे गाने जो बहुत सूदिंग से हों, बहुत सॉफ्ट नंबर हों। और इस घंटे हम आप तक पहुँचाएँगे ऐसे ही कुछ सॉफ्ट नंबर्स जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। फ़िलहाल सतरंगी दुनिया लेकर हाज़िर है सतरंगी चैनल पर। तरन सुनते रहिए।

और जो जग से कहा ना जाए वो बस मुझसे कहना जी। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी समवन स्पेशल से शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लम्हे होते हैं जो कोई ख़ास इंसान होता है उसके साथ हम बिताते हैं, गुजारते हैं। और ऐसे ही सीन जब आप देखें कि आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, खासकर अगर हम मोबाइल की बात करें, आप मोबाइल पे, यूट्यूब पे या कोई भी आप पिक्चर देख रहे हैं, कोई भी सीन देख रहे हैं, बहुत ही रोने का है, तो चलो अच्छा है भाई, ऐड आ जाते हैं कि आप भी रोना शुरू करते हैं, मतलब हम लोग भी रोना शुरू करते हैं जब आंसू देख लेते हैं। कोई ऐसा सीन होता है जो मार्मिक होता है, बहुत ज़्यादा दिल को छू जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा थ्रिल चल रहा होता है, कोई ऐसी जासूसी या कोई ऐसा सस्पेंस चल रहा होता है सीन, और अचानक से क्या होता है, अचानक से मोबाइल पर सीरीज पिक्चर देखने के बीच में ऐड आ जाते हैं, और जब ऐड आने शुरू होते हैं तो बस आते ही चले जाते हैं। अब आप उसको कैसे हटाएं, क्योंकि वो हटते ही नहीं है। ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में मूड जो है ना वो इतना ख़राब होता है, इतना ख़राब होता है कि अक्सर लोग अपने ही मोबाइल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा लेते हैं। अच्छी बात थोड़ी ना है, लेकिन मोबाइल से आप फेंक भी देंगे मोबाइल तो भी जो ऐड है वो अपने टाइम से ही दूर होते हैं। फिलहाल अगर ऐसा है और आपको लग रहा है कि आपका मूड बहुत जल्दी ख़राब जाता है, तो मूड को चेंज करने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, यानी जो ऐड आते हैं ना बीच बीच में, उससे आप हमेशा के लिए छुटकारा अगर पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और उसके बाद आपको सर्च करना है प्राइवेट DNS, फिर वहाँ पर कोड आपको डालना है dns.adguard.com, और बस आपके मोबाइल लाइफ से हमेशा के लिए ऐड जो है वो गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, बार बार दिल करता है कि उस ऐड को देखते रहें और सुनते रहें, लेकिन जब इस तरह के कोई सीन होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो फिर दिल करता है कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जैसी पिक्चर चल रही है, जैसे सीरीज चल रही है, जैसे ड्रामा चल रहा है, वो लगातार चलता रहे। 3:10 प्रोग्राम सतरंगी दुनिया सुनते रहिए।

0: नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
2: और 3:25 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया। और इस दुनिया में इतने सारे कलर्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे लोग हैं कि जिनको शायद ही, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद ही हम समझ पाते हैं, शायद ही हम सोच पाते हैं, शायद ही हमारा जहन वहाँ तक जा पाता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो फिर हम लोग कहते हैं अच्छा ऐसा था, ये तो पता ही नहीं था। अब देखिए, जैसे कि स्कूल बस आप देखते हैं, हमेशा आप देखते हैं कि उसका जो रंग होता है वो येलो होता है, पीला होता है। कभी सोचा पीला क्यों होता है, इतना गहरा कलर क्यों करते हैं, बहुत सॉफ्ट सा कलर क्यों नहीं होता, या कोई बहुत अच्छा सा डार्क कलर क्यों नहीं होता, ब्लैक क्यों नहीं होता, मरूनिश क्यों नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमारे और आपके जहन में ज़रूर आती होंगी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि पीला रंग जो है वो हमारी और आपकी आँखों को किसी और रंग के कंपेरिजन में सबसे जल्दी दिख जाता है। ये खासियत है पीले रंग की, और ये रंग अंधेरे में और कोहरे में भी आसानी से दिख जाता है। इसलिए स्कूल बस को हमेशा येलो कलर में ही रखा जाता है ताकि एक्सीडेंट होने से बचे, कहीं टकराने से बचे, और बच्चे जो हैं बिल्कुल सेफ होके घर वापस लौटें, या बच्चे बिल्कुल सेफ वापस स्कूल चले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वॉश बेसिन है। अक्सर लोग कहते हैं वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन है, लेकिन सोचिए वॉश बेस इन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जहन में जोर देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत

है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का मतलब नहीं होता, हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। आपकी भी नाम का कोई मतलब होगा, हमारे नाम का भी कोई मतलब है, आपकी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब होगा और हमारी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब है। ये आवारगी की ज़िंदगी जो है वो किसी काम की नहीं। फ़िलहाल एक ट्रैक है जो आ रहा है आप तक।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
3: ओ गॉड,
0: स्टे ट्यून टू चैनल सतरंगी रे।
4: बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। 100.7
5: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

और चलिए अब घड़ी का जो हाल दिल है वो बता देते हैं। 3:36 हो चुके हैं और ये प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद जाने अनजाने हमें पता चल जाती हैं या शायद हमें पता ही नहीं चल पाती हैं। अब देखिए, जब आंसू हमारे निकलते हैं, आपके निकलते हैं, तो लोग हमेशा नैपकिन को आगे करते हैं, रुमाल आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि भाई आंसू को पोंछ लो। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि भाई नैपकिन एआई, तो आप कहेंगे कि भाई नैपकिन एआई मतलब इसका क्या मतलब है? तो आपको बता दें कि ये एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो एकदम सिंपल से टेस्ट को फौरन क्या करता है, प्रोफेशनल, कस्टमाइजेबल और देखने में काफ़ी अट्रैक्ट, और डायग्राम और जो इंफोग्राफिक्स है उनमें बदल देता है, जिन्हें प्रेजेंटेशन है या डॉक्यूमेंट्स में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो

लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको यूज़ करना है, मान लीजिए टेस्ट डालना होता है, उसके बाद ये एआई क्या करता है, उस टेस्ट का विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, और उसके बाद आइकन, लेआउट और कनेक्टर्स सुझा देता है, वो अपने आप करेगा। और ख़ास तौर पे ये किसके लिए है, ये भाई अगर हम कहें कि हमारे लिए है, तुम कहेंगे भाई हमारे लिए नहीं है, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बहुत ही कम वक्त में काफ़ी इफ़ेक्टिव विजुअल कंटेंट बनाना चाहते हैं। और ये टूल जो है वो हाई क्वालिटी के विजुअल्स कम वक्त में तैयार करने की आपको जो है मौका देता है, आपको सुविधा देता है। तो ज़रा सोचिए आपकी क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, नापकिन एआई आ गया है, और बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदाज को और भी खूबसूरत बदल सकते हैं। और अंदाज से हमें ध्यान में आया कि एक और ट्रैक है, नॉन फिल्मी है, लेकिन क्या बोल हैं, क्या बीट्स हैं, सुन लिया जाए।

0: है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सपने बड़े हैं,
3: स्टाइल अलग है,
2: तो ये शो है आपके लिए।
3: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
2: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
3: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
2: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

और सच में इश्क और गहरा हो जाता है जब आप उसको अपना हम सफ़र बना लेते हैं, यानी कि शादी कर लेते हैं और बंधन में आप उसको हमेशा के लिए बांध लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ अलग अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, इंसान का दिल अलग होता है, दिल में जज्बात अलग होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में अलग अलग हैं। उसी तरह शादियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैं, यानी रीति रिवाज जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब देखिए, अपने अगर हम देश की बात करें तो हर स्टेट में रहने वाली जितनी भी जनजाति की अगर हम बात करें तो उनकी शादियों में कई तरह के ऐसे रिवाज हैं जो बिल्कुल अनोखे होते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ पर इस परंपरा को इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है, इतने ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और बस्तर ज़िले में पानी को साक्षी मानकर शादी की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, पानी को साक्षी मानकर वो लोग शादी करते हैं। और ये जो अनोखी एक ट्रेडिशन है, प्रथा है, ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में होती है। वहाँ पर जो आदिवासी होते हैं वो हमेशा से जल, जंगल और ज़मीन की पूजा करते रहते हैं। तो बस्तर में जो ज़िले में जो लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वो पानी को साक्षी मानकर शादी करते हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं वो ऐसा क्योंकि शादी के नाम होने वाली फिजूल खर्ची से उनको बचना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और वहाँ के जो धुरवा समाज के आदिवासी हैं वो जल को एक ऐसे देवता के समान मानते हैं जो जीवन देते हैं। शादी में जितनी भी चीज़ें उपयोग होने वाली होती हैं उनमें सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो है पानी के पास, और वो बस्तर में बहने वाली कांकेरी नदी का पानी होना चाहिए। और इसे समाज में बहुत ही पाक माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। और यहाँ का कोई भी अगर शुभ काम होता है, शुभ कार्य होता है, तो उस पानी के बिना अधूरा रहता है, यानी पानी के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर जो ये समाज की पानी के साथ शादी करते हैं तो बात हो गई, पानी को साक्षी मानकर शादी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब फेरे लिए जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है दूल्हा दुल्हन ही फेरे ले रहे हैं और आप लोग बैठ के देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा गांव फेरे लेता है, मतलब पूरा गांव जो है वो साथ में फेरे लेता है। इसके अलावा दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। और अगर कोई इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर जुर्माना जो है ना वो बहुत तगड़ा लगता है, जुर्माना लगाया जाता है। फिलहाल अब

0: मेरे ऊपर आप जुर्माना बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देखते ही देखते 3:52 हो चुके हैं, सर्वेश बिल्कुल तैयार हैं। और सर्वेश भाई, आप कब आए और इतने चुपके से इतना अच्छा कुर्ता पहने हुए हैं, इतने स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है।
1: बिल्कुल, कुर्ता पहन के मुझे लगा कि आज जो बड़ा मंगल है ना, उसको थोड़ा फेल किया जाए।
0: अच्छा, फेल किया जाए। तो कहाँ से आ रहे हैं आप?
1: बस चला आ रहा हूँ, आपकी आवाज़ सुनी चलाया दौड़कर।
0: हमने पुकारा और आप चले आए।
1: जी हाँ, तुमने पुकारा और हम चले आए रे।
0: आगे मत गाइएगा, जान हथेली पे नहीं लाया।
1: नहीं, जान अपनी जगह सुरक्षित है।
0: जान को हथेली पे ना रख के सुरक्षित रखना ही बहुत सही है। सर्वेश जी, बताइए कि बाहर की जो कह सकते हैं कि अगर आप ओबी करें, आउटडोर ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करें, तो बाहर के मौसम का हाल थोड़ा सा बताएंगे।
1: मौसम कुछ बेहतर है, क्योंकि शाम के लगभग 4 बज रहे हैं, दोपहर में ज़्यादा होता है। और आस पड़ोस देखते हो चला रहा था, मन तो कर रहा था रुक कर कहीं पूड़ी खा लूं भंडारे की।
0: लेकर आ नहीं सकते थे आपके, लेकर चले आते।
1: खा लेता तो लेकर भी आता।
0: चार पूड़ी ये लेते, दो आपकी दो मेरी,
1: ये चीज है,
0: सब्जी किसी और की।
1: अब आप फ्री हो रहे हैं, अब आप लेकर आइए।
0: अब आप फ्री हो रहे हैं, हम बिल्कुल बाहर जाएंगे और पूड़ी और सब्जी और बूंदी और शरबत, बहुत सारी चीजें हैं। और यही तो खूबसूरती है हमारे लखनऊ
1: की, खूबसूरती है। बड़ा मंगल एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।
0: बिल्कुल सच है। और सारे जितने भी फेस्टिवल हैं, ऐसे आपसी भाईचारे से अगर मनाए जाएं और एक दूसरे से लोग गले ना सही लेकिन दिल को मिला के चलें, तो क्या बात है। और कहते हैं ना कि जिंदगी में बस ऐसे ही खूबसूरत हमनवा की जरूरत होती है। फिलहाल रेनबो के जो हमनवा कुछ देर आपके साथ बनेंगे वो है सर्वेश। तरन्नुम की आपसे मुलाकात इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और वक्त होगी, लेकिन चैनल यही रहेगा जिसे हमारा प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की। तो कुछ घंटे आपके साथ रहने वाले हैं सर्वेश। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के ढांचे के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सुधारों की पहल की है। इसमें लैपटॉप और अन्य उपकरणों के लिए QR आधारित प्रमाणीकरण, लचीली अल्पकालिक वाईफाई योजनाओं की शुरुआत और आसान पहचान और बेहतर विश्वसनीयता के लिए पीएम वाणी हॉटस्पॉट नामों का मानकीकरण शामिल है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। 28 मई को होने वाले ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मेरठ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के धर्मगुरुओं, गणमान्य लोगों के साथ

शांति समिति की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की कि पर्व को आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, साथ ही शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसी भी नई परंपरा शुरू न करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। लगभग हर ज़िले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। इसी बीच राज्य में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कल उत्तर प्रदेश में 31,824 मेगावाट बिजली की अधिकतम मांग दर्ज की गई, जो राज्य के साथ साथ देश में अब तक किसी भी राज्य की सबसे अधिक बिजली आपूर्ति मानी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
3: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
5: जोर का झटका है जोरों से लगा।
4: अंदाज है सबसे निराला,
3: क्योंकि ये है 100.7 एफएम रेनबो की पाठशाला।
6: ओ गॉड,
4: स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।
7: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
8: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: हमारी जनगणना हमारा विकास।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, घड़ी में 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है यूथ फेव का, और यूथ फेव में आज मंगलवार का दिन है। जी हाँ, बड़े मंगल का पर्व आप मना रहे हैं, लेकिन आज हम यूथ फेव में बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए एक सही दृष्टिकोण और रणनीति बहुत ज़रूरी होती है ना। कौन सी है वो रणनीति और कौन सा है वो दृष्टिकोण, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन सोचता हूँ

तो भाई आप क्या सोचते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपना एक स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना कि प्लान बनाएं, और स्मार्ट का फुल फॉर्म जानते हैं? जी हाँ, स्पेसिफिक कहते हैं ना, और दूसरा मैनेजेबल और अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ये जो आप प्लान बनाएंगे ना, और ख़ुद पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, बस धीरे धीरे इस स्मार्ट अप्रोच पर काम करते रहें और देखिए बहुत जल्द रिजल्ट आपके सामने होगा। सुन रहे हैं आप आज सर्वेश को यूथ फेयर में।

जी हाँ, 4:13 का वक्त और मंगलवार का दिन, अच्छा वाला दिन, बड़े मंगल का दिन। और उस पर जब बात हो प्रतियोगी परीक्षाओं की, खासकर हमारे यूथ प्रोग्राम में, यूथ हमें बहुत सुनते हैं और यूथ का सबसे बड़ा काम ही होता है कि सबसे पहले ज़िंदगी में रोज़गार हासिल करना। सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें कि आप स्मार्ट तरीके से अपनी सारी कोशिशें जारी रखें। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सभी की जो प्रिपरेशन आप करते हैं उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं। और धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों को आपसे शेयर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कुछ उसमें ऐसी भी चीज़ें होंगी, अगर आप उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो लाइफ बड़ी हैप्पी हो जाती है। सेल्फ मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा एक ही चीज़ें हैं लेकिन अलग अलग आप उनको समझ सकते हैं। खुद को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अनुशासित कीजिए, टाइम के अकॉर्डिंग अपने गोल्स कंप्लीट करते रहिए। और सेल्फ मैनेजमेंट, जिसका सीधा संबंध सेल्फ डिसिप्लिन से होता है, हमको कब क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बहुत ज़रूरी होता है। हमको ये तो पता रहता है क्या क्या करना है, लेकिन जब ये पता चल जाता है कि क्या नहीं करना है तो चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में अपने गोल तक पहुंचना होता है, अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। फिलहाल खूबसूरत सा गाना, भूल भुलैया, लबों को लबों से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की योजना डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर चेयर पद संख्या एक, डॉक्टरल अध्येता पद संख्या दो। योग्यता और अन्य शर्तों तथा वेतन आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट jnujaipur.ac.in। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निदेशक के निजी सचिव, मानव संसाधन अधिकारी, शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी, सहायक सिस्टम विश्लेषक सह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव संसाधन एवं प्रशासन, लेखा सहायक और सहायक मानव संसाधन। इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। कुछ अन्य पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद नाम है अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्लेसमेंट अधिकारी, सहायक विद्युत अभियंता और पुस्तकालय सहायक। इन सभी पदों के लिए भी एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। आवेदन 15 मई 2026 से खुल चुका है और अंतिम तिथि रहेगी 8 जून 2026। योग्यता और अनुभव संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट देखिए। वेबसाइट है www.igidr.ac.in/careers। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर में जूनियर कंसल्टेंट NHSL में दो रिक्तियां उपलब्ध हैं। आयु सीमा 55 वर्ष, वेतन रहेगा 40,000 से 70,000 रुपए मासिक के बीच। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण तथा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org और www.devnetjobsindia.org। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 1 जून 2026।

0: इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन एक अनुसूचित ए महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका कॉरपोरेट मुख्यालय कोलकाता में है। ये विश्व का एकल सबसे बड़ा कोयला उत्पादक संस्थान है जिसमें लगभग 2,12,000 कर्मी कार्यरत हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 75% उत्पादित होता है। कोल इंडिया लिमिटेड आने वाले वर्षों में एकल उत्पाद से बहुआयामी व्यवसाय के क्षेत्र में रूपांतरित हो रहा है और इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड जो समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है 9 परिक्षेत्रों अर्थात सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ENT, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हिंदी एवं कंपनी सचिव पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से प्रबंधन प्रशिक्षुओं के रूप में प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को तलाश कर रहा है। ये कोल इंडिया लिमिटेड के रूपांतरण की यात्रा में योगदान करने का अनोखा मौका है जिसके साथ साथ आप विश्व के ख्याति प्राप्त संस्थान में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों, ऑनलाइन आवेदन और पात्रता मानदंड, रिक्तियों की संख्या, ऊपरी आयु की सीमा, आवेदन शुल्क, आरक्षण एवं छूट, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.coalindia.in। वेबसाइट पर जाकर आप करियर विद CIL लिंक के तहत प्रकाशित विज्ञापन को विस्तार से देख सकते हैं। यदि आपके मन में अन्य कोई जिज्ञासा है तो लिखिए इस पते पर mtrecruitment.cil@coalindia.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है रते आशिके जगा
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल
5: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
6: जी हाँ लड़का लखनऊ की सुन रहे हैं प्रोग्राम चल रहा है यूथ वे बफर से आपका इस्तकबाल स्वागत करता हूँ रोजगार समाचारों के बाद और आज बात हो रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की। कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के सिलेबस को है ना बहुत सही से देखना चाहिए और परीक्षा से पहले सिलेबस है टॉपिक्स हैं उसके और उसके पैटर्न को अच्छे से समझ लेना चाहिए। कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के सिलेबस में कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि, इन पर भी आप पूरा ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएँ आप टाइम टू टाइम देते रहते हैं तो जो कॉमन चीज़ें हैं उन पर आप बिल्कुल फोकस रखिए, इससे आपको कम समय में बहुत कुछ तैयार करने का मौका मिल जाता है।

जी बताएं, आप तो जाएं कहाँ, कहीं नहीं जाना है आपको। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि उनको रेगुलरली अटेंड कीजिए। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ये भी नहीं होता पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, सामने टीचर्स हैं और बाइक नहीं मिल रही, कार से जाना है, कैसे जाएं। मुद्दा यह है कि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन किया है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हैं, बहुत अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो क्लासेस जो है ना रेगुलरली कीजिए, है ना। और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की जब भी आप फ्री हो। और बहुत लोग तो अपने कंसंट्रेशन को बनाने के लिए FM रेनबो बैकग्राउंड में सुनते रहते हैं, तो आप भी सुनते रहिए। सर्वेश आज आपके साथ यूथ वेव में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जी हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस तो आप कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर रिवीजन

ये कर रहे हैं तो भाई तो बड़ी गलत बात है। ज़रूरी है जो भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप वीकली और डेली उसकी रिवीजन कीजिए, और क्लासेस जो है ना उनको भी घर आके एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे ना तो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में बनी रहेंगी।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, लड़का लखनऊ की सुन रहे हैं आप, और बात हो रही है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, कैसे उनके लिए तैयार करना है ख़ुद को। तो भाई, जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बराबर रिवीजन भी कर रहे हैं, तो समय समय पर ख़ुद को चेक भी करते रहें कि आपकी जो स्टडी और प्रिपरेशन है वो सही चल रही है कि नहीं। मॉक टेस्ट दें, मॉडल टेस्ट पेपर हल करें, और अगर आपका जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्मेट सब्जेक्टिव टाइप का है ना, तो बिल्कुल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें और सुनते रहें यूथ वेव।

0: हैरान हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: और घड़ी में 4:55 का वक्त हो चुका है और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो भी आप ले रहे हैं, अगर उससे क्लास के दौरान आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन जरूर करें। और बस इतनी शुभकामनाओं के साथ जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ करते रहिए। FM रेनबो हमेशा आपके साथ है, उसकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जल्दी ही आप सफल होंगे। समाचारों के उस पार प्रोग्राम FM.10 लेकर आ रहा हूँ, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, आशिके जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की उन पहलों का जिक्र किया है जिनसे देशभर के लोगों को, विशेष रूप से नारी शक्ति, युवाओं और किसानों को लाभ पहुँचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने सभी से स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेते हुए 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे नगर ईज ऑफ लिविंग दृष्टि से स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित शहरों के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम लखनऊ की 413 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में 17 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में 65 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। श्री प्रसाद ने बताया कि पीलीभीत के निवासियों द्वारा लगातार रेल सेवाओं के विस्तार एवं नई ट्रेनों के संचालन की मांग को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का मार्ग विस्तार शाहजहांपुर तक करा दिया गया है। इसका लाभ पीलीभीत व शाहजहांपुर के अलावा आस पड़ोस के जिलों के लोगों को भी मिलेगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी ने आज उन्नाव की पुरवा तहसील में जन चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। जन चौपाल में लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इटावा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जिला जज रजत सिंह जैन ने मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर

0: वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
1: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
2: भाई धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप 5:03 का वक्त हो चुका है मैं आ चुका हूँ एफएम टॉप 10 के साथ सर्वेश आज आपके साथ और रहूंगा रात 8 तक आप ही के पास और 6 प्रोग्राम शाम अवध 7 हेलो एफएम सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे ही आपको खूबसूरत और बढ़िया से गाने सुनाता रहूंगा और मंगलवार का दिन है तो सब मंगल मंगल ही होगा तो आप सोच रहे होंगे कि एफएम टॉप 10 में आज क्या खास है बिल्कुल खास ये है कि बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर्स को आप सुनते रहते हैं और बहुत सारे गाने भी आप सुनते रहते हैं लेकिन कुछ सिंगर्स ऐसे हैं ना जिनका नाम भी शायद आप नहीं जानते हो सकता है आपने उस गाने को कई बार सुना हो है ना लेकिन आप सोचते होंगे अमूमन ये होता है कि हमारे दिमाग में कुछ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिंगर्स हैं उन्हीं के नाम याद आते हैं सोनू निगम जी हो गए कुमार सानू जी हो गए और आज के डेट में अरिजीत सिंह को कैसे बोल सकते हैं आप बहुत सारे और भी नाम हैं लेकिन कुछ उसमें ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम बॉलीवुड की म्यूज़िक इंडस्ट्री में किया है लेकिन लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे दूर हो गए हैं या उन्होंने काम करना बंद कर दिया है या कम काम कर रहे हैं और हम उन्हें भूलना चाहें तो आज कुछ ऐसे ही सिंगर्स को मैं लेकर आया हूँ उन्हीं के वो खूबसूरत गाने आपको सुनाऊंगा शुरुआत करूंगा मोहम्मद इरफान साहब से इन्होंने 2010 में मणिरत्नम की फिल्म रावण में बहने दे सॉन्ग से अपनी करियर की शुरुआत की और 2011 में फिर मोहब्बत करने चला अरिजीत सिंह के साथ ही गाया गाना मर्डर 2 फिल्म का अभी भी आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन अभी जो गाना सुनवा रहा हूँ वो कौन सा है सुनना चाहेंगे आप बिल्कुल सुनवाऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ और सुनिए
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान यहाँ हर कोना एक शायरी हर गली गजल ये लखनऊ है जनाब
4: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक ये भी लखनऊ ही है जनाब
5: समझे जनाब यारी
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो लखनऊ
2: की जी हम मोहम्मद इरफान साहब का गाया हुआ गाना दर्द दिलों के कम हो जाते याद आया ना आपको सुनिए खूबसूरत सा गाना

जी कुणाल गंजावाला, याद आया आपको मर्डर फिल्म का ये गाना भीगे होठ तेरे गाकर फैंस के दिलों में हलचल मचा दी थी। 2005 से लेकर 2010 तक करियर इनका पीक पर था। आखिरी गाना 2024 में आई फिल्म नाम में इन्होंने गाया था। फिलहाल वे अपने बिजनेस में बहुत खुश हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, गाना याद है आपको गुरु फिल्म से, और इस गाने को गाया था चिन्मयी श्रीपुरदा ने। बहुत सारे गाने उन्होंने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में गाए हैं और बहुत सारी भाषाओं में गाना गाती हैं, और जो भी गाना गाती हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है चिन्मयी श्रीपुरदा की, और इसमें आवाज़ आपको ए आर रहमान साहब की भी सुनाई दे रही है ना अभी सुनाई देंगी चिन्मयी।

जी जुबाना, आपने सुनना शुरू किया ना, आपकी कशिश इसमें हिमेश अशमिया साहब दो ही हैं, लेकिन एक और सिंगर हैं कृष्णा बेवरा, बेसिकली उड़ीसा से आते हैं और इन्होंने बहुत सारे गाने हिंदी फिल्म म्यूज़िक और मूवीज़ में गाए हैं, जिसमें से चक दे इंडिया के मौला मेरे और नमस्ते लंदन का वो मैं जहाँ रहूँ, अपनी मातृभाषा उड़िया में बहुत सारे गाने गाए हैं और बीच बीच में इनके गाने आते रहते हैं। FM Top 10 सुन रहे हैं आप सर्वेश के साथ, 5:21 का वक्त, धड़कन लखनऊ की।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

एफएम टॉप 10 सुन रहे हैं आप, और आज उन सिंगर्स की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में बात कम होती है लेकिन काम वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये गाना जो है शाहिद माल्या का है, बॉलीवुड के ऐसे फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं जो बनना तो प्रोफेसर चाहते थे, भाई एक्सीडेंटली ये सिंगर बन गए, लेकिन टाइम टू टाइम इनके गाने आते रहते हैं, बहुत ही मस्त गाते हैं।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: हेलो FM, जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
3: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।

नया शाम भी धीरे धीरे ढल रही है और हम आ चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10 और उसके बाद शाम के बाद प्रोग्राम लेकर आएंगे। और अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं महालक्ष्मी अय्यर, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ बॉलीवुड से लेकर दक्षिण भारतीय फिल्मों तक फैली हुई है और 97 से इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। 10 फिल्म जो आई थी उससे अपना शुरू किया था इन्होंने करियर और 1998 में आई फिल्म दिल से में ए अजनबी गाना याद है ना, लेकिन अभी के लिए सुर फिल्म का गाना सुन रहे हैं आप, कभी शाम ढले मेरे घर में आ जाना।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

जी एफ एम टॉप 10 सुन रहे हैं आप। 5:40 का वक्त हो चुका है लगभग लगभग, और बात कर रहा हूँ उन ऐसे सिंगर्स की जिन्होंने बॉलीवुड में काम तो किया है लेकिन शायद आप उनको नहीं जानते हैं, उनका नाम नहीं जानते, उनके गानों पर थिरक भी लेते हैं, गुनगुना भी लेते हैं, उन सिंगर्स की बात कर रहा हूँ। और ये जो गाना आप सुन रहे हैं ना, तो ये तोची रैना साहब हैं। 2003 में बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था, बतौर म्यूज़िक कंपोज़र आए लेकिन बाद में सिंगिंग में आ गए और बहुत सारे अच्छे गाने उन्होंने गाए, कबीरा, गल मिठी मिठी बोल जो आप सुन रहे हैं, साइबो, गुड़नाल, गुड़नाल इश्क मिठा, बहुत सारे गाने गाए लेकिन अभी के लिए ये सुनिए।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, ये आवाज़ तो आपने पहचान ली होगी, उदित नारायण साहब। लेकिन इसके बाद जो आवाज़ आएगी ना इसमें फीमेल वॉइस, वो है मधुश्री। बहुत ही खूबसूरत से गाने गाए इन्होंने। अभी के लिए गाना सुनिए, उसके बाद इनके बारे में बात करूँगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
4: पुरानी जींस और गिटार,
3: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
5: है, जगह
3: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
6: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
3: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

पाँच बजकर 53 मिनट का वक्त हुआ है और आप सुन रहे हैं एफएम टॉप 10 सर्वेश के साथ। और खूबसूरत सा गाना उन्होंने लगा दिया है कविता सेठ जी की आवाज़ में, रंग सारी।

और एफएम टॉप 10 में ये जो 10वां गाना है ना, ये सुन रहे हैं आप वास्ते, है ना। और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं निखिल डिसूजा की है। ये गाने बहुत इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाए हैं। कोई बात है ना कि आज उन सिंगर्स की चर्चा कर रहा हूँ जिनके काम की और उनकी चर्चा कम होती है। 5:57 का वक्त, समाचारों के उस पर प्रोग्राम शाम होते लेकर आ रहा हूँ। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया। जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जाँच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबंधन से सशक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में देश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों को उससे निपटने का प्रभावी मंत्र दिया है, जिसका पालन देश के नागरिक स्वेच्छा से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी प्रकार के सरकारी दबाव या अनिवार्य आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि जनता ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए सकारात्मक सहभागिता निभाई है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति की 19वीं बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने निर्देशित किया कि जिन जनपदों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वहां के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और निवेशकों को प्रोत्साहित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे प्रदेश के सभी जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिल सके। प्रदेश में बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन पूजन को पहुंच रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान का श्रृंगार कर उन्हें सिंदूर अर्पित किया गया। लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में भी भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में जगह जगह भंडारों में छोटे बड़े सभी लोग पूरे भक्तिभाव के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर भंडारे में प्रसाद वितरण किया। अलीगंज के पुराना हनुमान मंदिर और नए हनुमान मंदिर क्षेत्र में मेले का भी आयोजन किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: हेलो एफएम,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
3: हेलो, आप एफएम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।
4: ओ दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
4: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
5: ओनली 100.7 एफएम रेनबो।
4: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: तो वे धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। 6:06 हो चुके हैं और अवध की शाम गर्म है ना? हाँ भाई, गर्मी आजकल इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सुबह उठिए तो लगता है कि सुबह है या दोपहर है। सीधे दोपहर हो रहे ना। खैर कोई नहीं, अगले 3 दिनों तक लू चलेगी। अपना पूरा ख्याल रखिए और दिन के साथ रातें भी जो है ना बहुत गर्म रहेंगी। तेज धूप और गर्म हवाओं ने परेशान कर रखा है ना। बिल्कुल मौसम है, क्या कर सकते हैं। और मंगलवार का दिन है, आप सभी को जेठ के बड़े मंगल और चौथे बड़े मंगल की शुभकामनाएं। शहर में बहुत सारे भंडारे भी चल रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ प्रसाद ग्रहण भी किया होगा है ना। बहुत लोगों ने तो बहुत जगह कोशिश की होगी, मिल गया ना? नहीं मिला, अभी भी कोशिश कर सकते हैं आप। सर्वेश आज आपके साथ और रहूंगा आप ही के साथ रात 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद प्रोग्राम लेकर आऊंगा हेलो एफएम। अभी के लिए बस इतना ही कहूंगा कि सुनते रहिए। और हाँ, एक अपडेट दे दूं आपको कि अगर आप थिएटर के शौकीन हैं तो वही जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में, क्योंकि वहाँ 7 बजे से थिएटर शुरू होगा। एक नाटक शुरू होगा, टू सिडक्शन का मंचन होगा शाम 7 बजे। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, नहीं जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाकर भी आप एफएम रेनबो सुन सकते हैं। और अभी तो आप सुन ही रहे हैं है ना, खूबसूरत सा गाना जिंदगी दो पल की।

घड़ी में 6 बज का 13 मिनट हो चुके हैं और ये लिखिए 14 मिनट भी हो गए। और बस इतना कहना चाहूँगा कि सुन रहे हैं आप शाम अवध, और आपको इतना बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU की ओर से UPTECH 2026 के तहत एफिलिएटेड कॉलेजेस में BTECH में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो भाई जाइए, गूगल पे कीजिए और ऑफिशियल साइट पे जाइए और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
1: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम, हर रोज शाम 7 बजे।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

0: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट फूड 1090 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब यारी।
0: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: यहाँ 6:24 का वक्त हो चुका है, शामी आवाज़ सुन रहे हैं आप, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे जैसे शाम ढल रही है वो अलग बात है कि गर्मी कम नहीं हो रही है और रातें भी गर्म हो रही हैं और लाइट की भी कहीं ना कहीं सुनने में जो आ रहा है दिक्कत हो रही है। तो भाई कोशिश ये करिए अपना इन्वर्टर चार्ज रखिए और एक ही पंखे के नीचे सो जाइए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुधर गई हैं और सुधर रही हैं और सुधरनी भी चाहिए। अभी के लिए आपको बता दूँ कि डालीगंज लखनऊ का जो एक स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहाँ से नकहा जंगल जो गोरखपुर का एक स्टेशन है वहाँ पर उसके बीच एक पैसेंजर ट्रेन आज से चलाई जा रही है। इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा, लेकिन पहले वो पहली बार

लेकिन लेकिन लेकिन आप पूरा ध्यान रखिए, भंडारा खूब खाइए, बड़ा मंगल है, और प्रभु का नाम लीजिए, लेकिन ट्रैफिक का विशेष ध्यान रखिए कि आपने कहीं गलत पार्क कर दिया और जो लोग उधर से निकल रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना।
1: ये हवाएं तेरी तू अगर मेरी।
2: जी हाँ बिल्कुल, हम आपको छोड़कर कहाँ जाने वाले हैं। बजकर 28 मिनट का वक्त हो चुका है और आप सुन रहे हैं शाम है। बहुत सारी चीज़ें हो रही शहर में और भाई बड़ा मंगल है तो भंडारे भी चल रहे हैं, और जब भंडारे चलते हैं तो आप साइड में अपनी बाइक और मोटरसाइकिल लगा के जब वो जाते हैं ना प्रसाद लेने, तो उससे लगता है जाम। तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। वैसे तो शाम होते होते भंडारों का जो भीड़ भाड़ है ना, और भंडारों में जो प्रसाद वितरण है थोड़ा सा कम हो जाता है और ट्रैफिक की वो उतनी दिक्कत रहती नहीं है।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा.
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण.
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
6: तो भाई आम खा रहे हैं आप? खा तो रहे होंगे, लेकिन अभी दशहरी आपको नहीं दिख रहा होगा ना. चिंता मत कीजिए, जो अपना वर्ल्ड फेम दशहरी है ना, बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाला है. और 1 जून से दशहरी आम की मंडी सजने वाली है ना. तो ठेलों पर आप देखेंगे दशहरी आम. वाह वाह वाह, क्या खुशबू आती है. और कितने भी आम खा लूँ, मैं अपनी बात करूँ, लेकिन मन में ही रहता है दशहरी कब से आएगा. तो भाई दशहरी आने वाला है, 1 जून से दशहरी आम की मंडी सज जाएगी. और देखिए शुरुआत में थोड़ा महंगा रहता है, तो मन को मारिएगा, थोड़ा सा ले लीजिएगा, लेकिन खाइएगा ज़रूर. और जैसे जैसे समय गुजरेगा थोड़ा सा रेट गिरता है, और फिर भरपूर खाइएगा. बस सेहत का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा धड़कन लखनऊ की.

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

तो भाई शाम में वो सुनते सुनते 6:43 हो चुके हैं और आप तैयार हो रहे होंगे 7 के प्रोग्राम के लिए। फ़ोन मिलाना है कि नहीं? बिल्कुल मिलाना है, 7 प्रोग्राम लेकर आऊँगा। हेलो FM सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले एक आपको एजुकेशनल अपडेट दे देता हूँ। कर्मचारी चयन आयोग, जिसे आप SSC के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी जो एक सबसे बड़ी

भर्ती परीक्षा होती है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL, तो ये जो एग्ज़ाम 2026 में होगा ना, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों और न्यायाधिकरण ग्रुपों में, विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 12,256 जो पद हैं उन पर भर्ती के लिए एक पहली बार एक सेक्सेशनल टाइमिंग लागू की गई है, यानी कि आपको एक घंटे की परीक्षा में प्रत्येक 15 मिनट में 25 सवालों के जवाब देने होंगे। तो ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और आप क्वेश्चन पढ़ते ही रह जाएं, है ना। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव अप्रोच, फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। फिलहाल राता लंबिया।

जी हाँ, चले जैसे हवाएं सनन सनन। और आजकल जो गर्मी पड़ रही है ना, बिल्कुल सनन सनन ही हवाएं चलती हैं, इतनी गर्म हवाएं लगती हैं। तो बस इतना ही कहूँगा कि अपना पूरा ख्याल रखिए और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की। शाम में अवध सर्वेश आज आपके साथ।

0: पकड़ता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: दिल दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है।
6: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

6:55 का वक्त, और जाते जाते एक आपको अपडेट दे देता हूँ। जी हाँ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और भाई नौकरी की तलाश में हैं, तो उनके लिए एक अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आरक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून को होगा, और वो भी 2 शिफ्टों में होगा। तो भाई लगे रहिए, उम्मीद करता हूँ इस बार रिजल्ट आपके ही पक्ष में आएगा। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, जो बाकी है वो हेलो फेम में पूरा किया जाएगा ना, फ़ोन मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। जी नहीं, सुनिए मुख्य समाचार यानी कि टॉप 10 न्यूज। शाम के 7 बजे हैं और हम 7 बजे लेकर आते हैं प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे नगर ईज ऑफ लिविंग की दृष्टि से स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित शहरों के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम लखनऊ की 413 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में 17 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में 65 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज हुए विशेष अनुष्ठान। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन पूजन को पहुंच रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान का श्रृंगार कर उन्हें सिंदूर अर्पित किया गया। बड़े मंगल पर लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में भी भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में जगह जगह भंडारों में छोटे बड़े सभी लोग पूरे भक्तिभाव के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर भंडारे में प्रसाद वितरण किया। अलीगंज के पुराना हनुमान मंदिर और नए हनुमान मंदिर क्षेत्र में मेले का भी आयोजन किया गया है। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी ने आज उन्नाव की पुरवा तहसील में जन चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। जन चौपाल में लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया और इटावा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जिला जज रजत सिंह जैन ने मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है हेलो FM।

0: चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।
1: तो भाई आपका फोन लगेगा नहीं लगेगा ये आपकी मेहनत और कोशिश पर निर्भर करेगा। हेलो एफएम लेकर सर्वेश आ चुका है और करना सिर्फ आपको इतना है 0522 2238 2242 2238 2252 और एक और नंबर है, जी हाँ 2982 377। ये नंबर्स आप जल्दी से मिलाएं और सीधे हमसे जुड़ जाएं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ हमको बताना चाहते हैं और गाना भी सुनना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। 7 बजे से लेकर हम 8 बजे तक आपके लिए हैं। इस दौरान आपको बराबर फ़ोन ट्राई करना है, ये वादा करिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अभी किसने कोशिश की है देखते हैं। हेलो
2: हेलो सर, चार भरा नमस्ते, गुड इवनिंग।
1: वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप?
2: सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आपके क्या हाल चाल हैं, आप कैसे हो?
1: मेरे हाल और मेरी चाल दोनों ही अच्छे हैं।
2: जी और आपको सुन के ना हम लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं।
1: क्या बात है,
2: इतनी खुशी होती है आपका कार्यक्रम सुन के, आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छी।
1: और जब आप लोग ऐसी तारीफ करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है ना, एफएम रेनबो की जो मेहनत है वो सफल हो रही है।
2: सर तारीफ करना तो सर बनता है, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतनी शिद्दत से कार्यक्रम करते हो, तो सर हम लोगों का मतलब हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है।
1: क्या बात है,
2: तारीफ करें।
1: वाह बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर, आज तो बहुत अच्छी नींद आने वाली है मुझे।
2: सर हम दुआ करते हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, थक गए होंगे आप बोलते।
1: नहीं नहीं, आप लोग खासकर जब हेलो एफएम में आप लोगों से बात होती है ना, तो बात करते
2: सर, मतलब सर जब आपकी आवाज़ रेडियो पे सुनाई देती है सर, सोचिए हम श्रोताओं का दिन कितना स्पेशल हो जाता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो एफएम रेनबो है, और आप हैं तभी एफएम रेनबो धड़क रहा है। फिलहाल आज
2: ये हम अपना परिचय तो दे दें।
1: हम तो जान गए, रिंकी पिंकी बोल रही हैं, लेकिन आप दीजिए परिचय, क्योंकि कुछ लोग अगर नए सुन रहे हैं, कुछ लोग दीजिए दीजिए परिचय दीजिए आप।
2: जी सर, एफएम रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर सीवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
1: क्या बात है, तो आज गाना भी बता दीजिए कौन सा सुनना चाह रही है।
2: जी सर सॉन्ग के बोलना, चाहे लाख तू पाए चाहे जान भी अब जाए, किलो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, मिलके ना होंगे
1: क्या बात है। आप ही पूरा गा दीजिए ना, हम गाना नहीं बजाते हैं। नहीं नहीं, अच्छा गा रही हैं, अच्छा गा रही हैं, अच्छा गा रही
2: हैं,
1: बिल्कुल डेडिकेट कीजिए, डेडिकेट कीजिए।
2: जी सर सबसे पहले आपको और हमारी फेवरेट अनाउंसर हैं दीप्ति जोशी मैम और पूनम शर्मा मैम और मेरी दोस्त हैं पूनम दीदी, गुंजन तिवारी, समा परवीन, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, पूनम दीदी, वकील अहमद भाई, मोहम्मद फैज भाई, जावेद अख्तर सर, नीलम वर्मा और शिवम सर, उनके बड़े भाई हैं सत्या भाई और राम भरोसे भाई।
1: बस
2: जी सर नमस्ते
1: नमस्ते जी नमस्ते।

0: और भाई देखिए 7:10 का वक्त हो चुका है, जल्दी से कोशिश कीजिए 0522 2338 842 0522 2338 852 और 2982377 ये हमारे नंबर्स हैं, इन पर जल्दी से कॉल कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि ये जल्दी से नहीं जुड़ेंगे तो फिर बाद में कहेंगे कि भाई देखिए फ़ोन ही नहीं लगता है, तो फ़ोन लगता है, कोशिश तो कीजिए, देखते हैं किसने कोशिश की है। हेलो,
1: हेलो सर
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: हम सुमित कश्यप बोल रहे हैं।
0: अच्छा, हम सुमित कौन सा गांव?
1: ग्राम अलीपुर मिचलौला, थाना औरास।
0: थाना औरास, जिला उन्नाव।
1: हाँ सर,
0: क्या करते हैं सुमित भाई?
1: सर खेती किसानी काम करते हैं।
0: बहुत बढ़िया काम करते हैं, और बताइए, गर्मी बहुत हो रही है ना उधर?
1: गर्मी बहुत हो रही है।
0: अरे यहाँ भी बहुत हो रही है, हर जगह हो रही
1: है। अभी तो तमाम तैयार हो गया, उसकी टूट चालू हो गई है।
0: अच्छा,
1: हमारे यहाँ बगल में मंडी, मियांगन मंडी लगती है ना।
0: जी जी जी जी जी,
1: चालू हो गई है।
0: हाँ बिल्कुल चालू होगी, हमने शामेवद में भी अपडेट दिया था कि 1 जून से दशहरी जो है ना मार्केट में आने लगेगा।
1: हाँ दशहरी टूट चालू हो गई अभी।
0: तो गाना कौन सा सुनना चाहेंगे ये बताएंगे?
1: गाना सर सुना दीजिए, अंदाज
0: लूंगा। तो कौन गाने के बोल तो बताइए।
1: आएगा मजा बरसात।
0: अरे वाह, बरसात आ जाए ना तो मजा ही आ जाए। बहुत गर्म पड़ रहा है ना?
1: गर्म पड़ रही, बरसात आने वाली है।
0: बरसात आने वाली, क्या बढ़िया बात कही है आपने कि बरसात आने वाली है। तो बरसात आएगी तो नहाएंगे
1: क्या?
0: बरसात में भीगेंगे कि नहीं?
1: हेलो,
0: कह रहे हैं बरसात में भीगेंगे कि नहीं भीगेंगे?
1: नहीं अभी तो
0: तो चलिए गाना आपका लगा दें जल्दी से।
1: हाँ लगा।
0: किसी का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, किसी को सुनवाना तो नहीं चाहेंगे
1: आपको? और
0: क्या बात है, सभी सुनने वालों के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका।

0: 7:45 मिनट का वक्त हो चुका है, जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि 7:20 से प्रादेशिक समाचार भी आपको सुनवाने हैं। देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं जल्दी से।
1: जी मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
0: अच्छा, और क्या हाल चाल है तालिब जी?
1: जी बढ़िया है, ठीक है सर जी। गर्म हो रही है?
0: हाँ, गर्म तो बहुत पड़ रही है। तो
1: नहा के आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, लेकिन उल्टा और ज्यादा पसीने से।
0: अच्छा, अक्सर कहता है कि जल्दी से नहा धोके तैयार होके बैठ जाओ, वैसा तो नहीं है?
1: ऐसा है, हम लोग इंतजार करते हैं।
0: अरे वाह,
1: रेडी हो जाए तब कॉल लगाएं।
0: जी जी जी,
1: अच्छा, जब मन से लगाते हैं तभी लग पाती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर नहीं लग पाती लेकिन लग जाती है।
0: बिल्कुल, दिल और दिल से और मन से जब कोई काम किया जाता है तो हो जाता है। जल्दी से गाना बता दें क्योंकि समय हो रहा है।
1: जी जी, गुमनाम मूवी का है और मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये वाला गीत सुनेंगे सर जी।
0: ओके, और किसी को डेडिकेट करना चाहें तो भी कर दीजिए
1: जी। आसिफ और साबिर हैं और अकबर और भाई हैं चौखंडे से भी, बस
0: बस,
1: और सभी सुनने वालों को।
0: हाँ, ये जरूरी है।
1: सभी सुनने
0: वालों को बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सभी लोग जी अपना ख्याल रखें इस गर्मी के मौसम में।
0: बस बस बस, बिल्कुल,
1: और हाइड्रेट रखें अपने शरीर को और सुनते रहें ऐसे ही। और हमारा नाम
0: सुनते रहें धड़कन लखनऊ की, है ना, तालिब के साथ, सर्वेश के साथ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर जी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
5: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है।

0: उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए।

0: करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेन प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
3: हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरत विद्युत की सप्लाई हो। और
1: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बारामती जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से

0: तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
2: पुरानी जींस और गिटार।
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: जगह।
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
6: समझे जनाब यारी।
5: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
7: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की और प्रोग्राम हेलो FM सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और करना सिर्फ आपको इतना है 0522 2338 42 2338 352 2938 और 2938 329 इन तीनों नंबर्स को आप ट्राई कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। समाचारों के दौरान किसी ने हमें ज्वाइन किया है, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो
8: हेलो
7: हेलो। ओहो, लग रहा है इनसे इंतज़ार नहीं हो पाया। कोई नहीं, गाना बता दिया था तो गाना हम सुनवा देते हैं। सुनिए आप।

0: 7:36 का वक्त हो चुका है और गानों का सिलसिला, आपके फोन कॉल्स का सिलसिला बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वक्त अभी हुआ है 7:36 और अभी भी आपके पास टाइम है, आप बात कर सकते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताएं।
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं।
0: कैसी हैं शमा आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके हम और अच्छे हो गए, आप बताइए कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ और हेलो एफएम प्रोग्राम में वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता हूँ। आप सभी लिसनर से बात होती है तो वो कहते हैं ना कि तरोताजगी आ जाती है। बिल्कुल
1: आप कुछ अच्छा प्रोग्राम करते हैं, जल्दी जल्दी आया करो।
0: ओके, जल्दी जल्दी आएंगे इस बार से, हमारे अधिकारी सुन रहे होंगे तो हम जल्दी जल्दी आएंगे। आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: सिर्फ तुम मूवी का।
0: सिर्फ तुम यानी कि एफएम रेनबो, और किसको सुनाना चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको।
0: थैंक यू।
1: बाबू अंसारी भाई, अकबर अंसारी भाई, सिराजुद्दीन भाई, मोहम्मद सद्दाम भाई, मोहम्मद फैज भाई, मोहम्मद अमीन भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, जावेद अख्तर भाई, वकील अहमद भाई, सत्यम कुमार भाई, विनीत कुमार भाई, और गुलाब साप्ती, साहबा अंसारी, रिंकी पिंकी, साजिया अंसारी, आरजे पूनम, महक अंसारी, जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को।
0: सभी सुनने वालों को सुनवाना चाहती है ना? देखिए गाना आपका आ गया।
1: ओके,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: हैं तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तो जब आप एफएम रेनबो से मिलते हैं ना तो बस आपके अंदर भी यही फीलिंग आती है दिल भर और जल्दी से फ़ोन लगाइए ना फिर तो 0522 2238 8542 2238 8552 और 2982 377 ये नंबर से हमारे अभी भी आपके पास वक्त है। 7:42 का वक्त हुआ है, जल्दी से हमें कॉल कीजिए। किसी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार, मेरा नाम वकील अहमद मंसूरी।
0: जी,
1: जिला सीतापुर।
0: जिला सीतापुर से वकील अहमद मंसूरी साहब ने हमको कॉल किया है।
1: और आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा जी,
1: जा रहे हैं आम के बाग में थे, वहीं से अब घर जा रहे हैं।
0: तो हमारे लिए आम तोड़े नहीं बाग से आपने?
1: नहीं, आप तो नहीं तोड़े, आए हैं आपको जरूर खिलाएंगे।
0: तो तोड़ के रखिए, हम आते हैं सीतापुर। क्या बात है। तो वकील अहमद
1: मंसूर,
0: बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। और गाना आज कौन सा सुनना चाहेंगे वकील साहब?
1: जी, ये माना मेरी जान
0: मोहब्बत सजा है, किसी को सुनवाना चाहेंगे?
1: जी हाँ, सुनाना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, नाम लीजिए।
1: नाम लेंगे
0: बिल्कुल।
1: साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी हैं, चमा परमीन हैं, और गुलसा सिद्दीकी और अमन नवाब, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी को, और रिंकी पिंकी खास
0: जी,
1: और आपको,
0: हमको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
1: और जितने लोग सुन रहे हैं सभी को,
0: सभी को सुनने वालों के लिए जी,
1: की सभी को एडवांस होते हैं।
0: बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: तो भाई एक बार फिर से हम आ चुके हैं और प्रोग्राम वही चल रहा है आपका हेलो FM। आप हमें कॉल कर रहे हैं 0522 2830 842 2830 852 और 2982 377। ये नंबर से हमारे जल्दी से कॉल कीजिए। वक्त बता दूं आपको, 7:48 का वक्त हुआ है और अभी भी आपके पास समय है हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और अपनी ही पसंद का गाना सुनने के लिए। और देखते हैं अभी कौन है लाइन पर। हेलो।
4: हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी।
3: वाह।
4: हाँ, कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो।
3: वाह क्या जी, नाम बताएं अपना। हम तो लग रहा था सोनू निगम जी ने कॉल किया है।
4: जी छोटा भाई सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ सर।
3: ओके सत्यम जी, कैसे हैं आप?
4: सर मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
3: जी हमारे भी आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है। तो आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे सत्यम जी?
4: सर गाना मैं सुनना चाहूंगा

0: जी
1: मेरे फेवरेट सिंगर हैं
0: ओके
1: उनकी आवाज में गाना मैं सुनना चाहूंगा।
0: जी
1: पहले सर मैं अपने दोस्तों के नाम ले
0: बिल्कुल नाम ले लीजिए लेकिन पहले गाना बता दीजिए।
1: मेरे देश में ओ मेरे देश में पवन चले पुरवाई।
0: बहुत अच्छे जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: देश में भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में।
0: हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को लेकिन जल्दी से नाम ले लीजिए तो मजा आ जाएगा।
1: सर
0: जी
1: पहले तो मेरे लखनऊ से सर्वेश सर हैं पर आप उनको जानते हैं।
0: ये भी सही था।
1: सीतापुर से मेरी बहन है समा परवीन अंसारी
0: जी,
1: लखीमपुर से बहन साहिबा अंसारी और हमारे बबली यादव भाई हैं, उनका पता तो मुझे नहीं मालूम है
0: जी
1: लेकिन नाम लेते रहते हैं
0: जी।
1: बस सर दोस्तों का प्रेम है नहीं तो मैं तो बुलाऊंगा।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका गाना आप तक पहुँच रहा है।

0: आप किसी भी चीज़ का इंतजार मत करिए। 7:55 का वक्त हो चुका है और अनवारुल भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूरी कोशिश में है आपको 12:00 तक पूरा मनोरंजन करेंगे। और अभी के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है जो हमसे बात करना चाहते हैं और बढ़िया सा गाना सुनना चाहते हैं, है ना? तो जल्दी से हम देखते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं, जल्दी से बताएं।
1: हम मिंटू तिवारी, ग्राम बगाना, तहसील पारा, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
0: फतेहपुर से बोल रहे हैं। गाना कौन सा सुनना चाहेंगे, जल्दी से बता दें।
1: ओ, बड़े घर की बेटी का, जिनका घर हो जैसे उनकी होत बड़ाई।
0: क्या बात है। और सुनवाना किन जी जी, नाम लीजिए, नाम लीजिए।
1: पहले तो रसूलपुर गुलरात हो गए, प्रभाकर तिवारी की, मुकेश कुमार हो गए, प्रतापगढ़ से हो गए, भगवान सिंह परमार जी हो गए,
0: जी
1: राम बाबू शर्मा जी हो गए,
0: okay.
1: मेरे बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, कितने लोग सुन रहे हैं, और FM 100.7 न्यूज़ सभी के लिए गाने के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मिंटू तिवारी जी आपका, और ये गाना आप तक पहुँच रहा है। और ये धार्मिक गाने के साथ ही एक अच्छी भावना के साथ इस गाने में एक मैसेज छिपा हुआ है, और इसी गाने के साथ मुझे अनुमति दीजिए 8:00 से लेकर 12:00 तक अनवारुल भाई आपके साथ रहेंगे, आबशार, रजनीगंधा, और उससे पहले आपको नए नए गाने, पॉपुलर गाने लेकर आएंगे, पॉप सॉन्ग्स जो होते हैं। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों को समय पर लेन देन, भुगतान संबंधी मुद्दों का तत्काल समाधान और अधिक या असफल भुगतान के मामलों में स्वचालित रिफंड सुनिश्चित करने के लिए मजबूत भुगतान प्रोटोकॉल स्थापित करने में CBSE की सहायता करने का निर्देश दिया। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पढ़ने के साथ साथ लेखन गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि इसके लिए सभी विद्यालयों में रीडिंग आवर, समाचार पत्र पठन और DDAR कैंपेन को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। सरकार शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखते हुए विद्यार्थियों के समग्र विकास पर कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि पुस्तिका सामान्य योग अभ्यास क्रम, प्रमुख पहलों और सार्वजनिक भागीदारी के अवसरों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे योग संगम, हरित योग, योग समावेश, योग पार्क और योग अनप्लग्ड के साथ साथ 21 जून तक की निर्धारित गतिविधियों का विवरण शामिल है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

खिड़कियां तो खुली थी, और अगर वो भी बंद थी तो भी आपके जो मन के दरवाजे हैं वो हमेशा खोल कर रखते हैं आप, तो बस उसी से दाखिल हो जाते हैं चुपके चुपके से हम। बुझा बुझा के वो शम्मे जला रहा होगा, चले भी आओ कोई दिल जला रहा होगा। मोहब्बत के खुमार में धीरे धीरे पिघलती शम्मा से बरसता प्यार आबशार, कभी जिम्मेदारियों की उलझन तो कभी बेफिक्री का खुमार आबशार। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में आज मैं आपका हम सफर अनवारुल हसन, कबूल कीजिए हमारा आदाब।

ख्यालों में जिंदगी गुजार देना कहीं से समझदारी नहीं होता, और इसलिए जो हकीकत की पथरीली जमीन है वहां तो पांव रखने ही होते हैं। आप भी रखिए, चीजों को देखिए आसपास और समझिए, और जो आपको लगता है कि चीजें ठीक हैं बस उसी पर भरोसा कीजिए। बहुत सारी चीजें जो हमारी इर्द गिर्द होती हैं वो भले ही किसी भी तरीके की हमें महसूस हो रही हो, कभी कभी सच्चाई नहीं होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चमकदार पानी होता है और उसमें सूरज का अक्स दिखाई पड़ता है, वो चमक अगर छू कर देखेंगे तो सूरज छू नहीं पाएंगे आप। ऐसे ही बहुत सारी बातें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ हम अपने नजरिए से समझते हैं और कुछ वक्त हमें सिखा देता है, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आसपास के कुछ लोग जानबूझकर पैदा करते हैं। इनसे भी तो बचना है।

ना तो चाहती हैं, पर होठों पर सजी हल्की सी मुस्कुराहट और चमकती आंखें इस बात की गवाह बन जाती हैं अक्सर कि कुछ ऐसा है जो छुप गया है। और जब उन बातों को मन के अंदर दफन किया जाता है, होठ तो चुप हो जाते हैं, लेकिन कभी आंखें पढ़ने की कोशिश कीजिए और अगर अकेले में देखिए उन आंखों को, तो उनसे कुछ चमकदार सी चीज और अगर चक्कर देखिए तो कुछ नमकीन सी चीज छलक जाती है उन आंखों से।

याद आती रहती है और मन बहुत सारी बातें भी आती रहती हैं और कभी कभी वो बातें जुबान पर आकर ठहर जाती हैं। उन्हीं दी आंखें दिल की खिड़कियों के उस पार सजते जज्बात तुम तक पहुंचा।

रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

वीरानी में तो बाहर आएगी जब लौटेंगे, जब रहेंगे, बहुत दूर तक चलेंगे और बहुत देर तक साथ रहेंगे आपके। फिलहाल 8:40 हो चुके हैं। हर शाम हर रात कुछ कहती है, कहती है कि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, धीरे धीरे खिड़की की चौखट पर उजाला रखती है और हम भी उठ खड़े होते हैं, बिखरी लटों के साथ, अध खुली पलकों के साथ, मगर एक नई उम्मीद के साथ। तो उम्मीद का दिया जरूर रोशन रखिएगा। आबशार से तो इजाजत लेंगे, लेकिन 9 बजे हम फिर लौटेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे और उसके बाद 9 बजे से रेनबो कैफे आप तक पहुंचेगा और 10 बजे महकेगी रजनीकंधा अनवारुल हसन के साथ। तो बस फिलहाल इजाजत दीजिए, थोड़ी देर का अंतराल और उसके बाद वापसी। शब्बा खैर।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना

0: तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे।

0: श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेल आपने बना कर रखा हुआ है वो हम तक पहुंचा देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हम उसको शामिल भी कर लेते हैं। भाई आप मेहनत करते हैं लिखने के लिए, भेजने के लिए, तो बिल्कुल हम उसे पढ़ेंगे। अगला मेल रामराज जी आपका है, श्री गणेशाय नमो लिखा है आपने। पॉप टाइम नहीं चल रहा है आज, मंगलवार और शनिवार ये जो दो दिन होते हैं इसमें रेनबो कैफ़े ही आप तक पहुंचता है, तो आज रेनबो कैफ़े ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से आपने ये मेल हमें किया है। रामराज, राजू भान, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, भुईरा, बजरंगी काका, और सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। उसके बाद आपने एक फरमाइश लिख दी है और हम इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, एक लाइन जोड़ देते हैं कि भाई ये फरमाइशी वाला प्रोग्राम नहीं है। तो बस इसलिए बस सुनते रहिए गाने, कोशिश करेंगे कि आप तक अच्छे ही पहुंचे। कृपया मेरा मेल पूरा पढ़िएगा और किसी भी गाने में शामिल कर लीजिएगा। मेरा नाम विराज मौर्य है और मैं ज़िला लखीमपुर खीरी पलिया कला से मेल कर रहा हूँ और ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। कार्यक्रम मैं दुकान पर बैठकर सुन रहा हूँ, मेरे मामा ध्रुव कुमार मौर्य जी की दुकान है। चलिए भाई, मामा जी को भी नमस्कार कहिएगा। मामा जी भी अगर सुन रहे हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं सुन रहे हैं आप चोरी से सुन तो नहीं सुन रहे कहीं कि मामा जी कहें कि अच्छा बैठे तो दुकान में हो काम कराने के बहाने से, वो गाना सुन रहे हो बैठे बैठे। लेकिन गाना सुनेंगे तो और भी आपके जो ग्राहक हैं ना वो रुके रहेंगे कि भाई ये गाना ख़त्म हो जाए या एक नया गाना शुरू हो जाए। तो चलिए अच्छा कर रहे हैं आप, और बाकी लोगों से भी कह दें कि अगर कुछ अच्छा बढ़िया सा आपके ज़िंदगी में गुजरा है, आज दिन में गुजरा है, तो बस आप हमसे आप शेयर कर सकते हैं, हमसे बांट सकते हैं। और अगर आपको मेल आईडी नहीं पता है तो भी हम आपको बता देते हैं कि fmakashwani@gmail.com हमारी मेल आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। कहीं तो एक बार स्पेलिंग भी बता दूं मैं, fmakashwani आकाशवाणी, यानी डब्लू नहीं है इसमें, वी है आकाशवाणी में, और lucknow lucknow@gmail.com आप इसमें हमें भेजेंगे। जैसे अभी एक मेल एकदम से हम तक पहुंचा, अचानक से प्रकट हुआ है, रिंकी पिंकी राय बरेली से गुल्लक शहसाधी। चलिए आपने और मेल में क्या लिखा है, विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, और अनवार हसन जी गुड इवनिंग, शुभ रात्रि आपको, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप कह रहे हैं आप अच्छा करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छे गाने भी आप सुपरहिट लाजवाब बजाते हैं ये और अच्छी बात है। आप आते हैं तो प्रोग्राम में गानों की बहार आती है, और इनके जो दोस्त हैं उनके नाम लिखे हैं, भाई वाह, ये सिलसिला बड़ा अच्छा चल निकला है दोस्तों के नाम। दोस्त कौन कौन है, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से, ओमकार सीतापुर से, नवनीत हरकेश लखनऊ से, ममता संतोष कुमार मौर्य, इतने लोगों के आपने नाम भी साथ में लिख दिए हैं, वो जब मेल करेंगे तो आपके भी नाम लिख देंगे, तो आप परेशान मत होइएगा ना, ये आदान प्रदान चलता रहेगा चिट्ठी पत्री का, मोहब्बत का, प्यार का। रणधीर गुप्ता जी आपका भी शुभ संदेश हम तक पहुंच चुका है, शुभ संध्या आपने लिखा है, शुभ संध्या आपको भी। अनवार हसन जी सप्रेम नमस्कार, नमस्कार आपको भी। गजलों का कार्यक्रम आपचार बहुत अच्छा लगा और रेनबो कैफे के गाने भी पसंद आ रहे हैं, और ओखला संगम विहार दिल्ली से आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, इतने लोगों के मेल हम तक पहुंच चुके, और मेल के प्रकट होने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक गाना आप तक बजा दें ना तो उसके बाद आते हैं, तो पहला गाना भोजपुरी था तो ये वाला हरियाणवी सॉन्ग एक आप तक पहुंचा देते हैं।

टूट जाते हैं, इसलिए बहुत धीमे धीमे धीमे चलते हैं, तो वो छन छन छन छन जब बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है, और कुछ लोग अकेले में डर भी जाते हैं। आप किस वाले में, आपको अच्छा लगता है या आप डरते हैं? क्योंकि बिल्कुल अकेले हैं, रात का 12 बज चुका है, एक बजने वाला है, फिर अचानक से घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देने लगी, तो कैसा लगता है आपको बताइएगा। अगर कुछ ऐसा भी कुछ अनुभव हो तो डराइएगा मत, बस देखिए हमको, क्योंकि हम यहाँ अकेले हैं स्टूडियो में, है ना, तो डर गए तो कैसे रुकेंगे यहाँ देर तक। नमस्ते अनवारुल सर जी, आप कैसे हैं? आप शार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और रेनबो कैफे बहुत गर्दा उड़ा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। हाँ, गर्दा तो आंधी भी उड़ा रही थी जो कल आई थी अचानक से एक संदेश के बाद। कल से मुझे इंतजार था सर जी आपका। अरे कल से इंतजार कर रहे थे आप? बबीता राव जी ने बताया था सर जी आ रहे हैं आज। अच्छा, बबीता राव जी को किसने बता दिया? आज मैं बहुत खुश हो गई थी, मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम व पोस्ट बमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। नीलू शर्मा दीदी, बबीता राव को राधे राधे बोल दीजिए। नीलू जी, बबीता जी, राधे राधे आपको, रोशनी रावत जी बोल रही हैं, हमने भी बोल दिया आपको, ठीक है। और ये स्टार करते चलें, ताकि ऐसे आपको आवाज़ कट कट आ रही होगी ना, हम स्टार करते जा रहे हैं, आपको स्टार मिल रहा है, यानी ये दोबारा कहीं आपका मेल ना पड़ जाए या आपका मेल रह ना जाए, इसलिए स्टार से पता चल जाता है कि अभी ये रह गया है। नमस्कार, अच्छा लगता है, केवल इतना लिखा है। लिखने वाले इंद्रपाल मिश्रा जी, ग्राम अमृता मोहली सीतापुर से आपने हमें ये छोटा सा मेल किया है 5 मिनट पहले। मनोज विश्वकर्मा जी, आपका भी संदेश आ चुका है, छत्तीसगढ़ से आपने लिखा है, जिला बलौदा बाजार, ग्राम तारा शिव से आपने लिखा है, गाने कम बातें ज्यादा फिर भी शो हिट है, क्योंकि अनवारुल भैया का अंदाज ही सुपर हिट है, आकाशवाणी से एफएम तक सफर जो तय किया है। अरे वाह, बड़ा पुराना याराना है लगता है आपको, बड़ा बड़ी जानकारी है भाई हम। सुनने वालों ने दिल से आपको अपना कहा। हाँ ये तो है, अनवारुल भैया को सादर प्रणाम, प्रोग्राम की प्रस्तुति लाजवाब और ज़बरदस्त, आबशार सुना बहुत अच्छा लगा, और अब जो है आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और उसके बाद आपने लिखा है कि रजनीकंधा तक आपके साथ रहूँगा। भाई वाह मनोज जी, ये साथ यूँ ही बना रहे तो बड़ी बड़ी खुशी भी होती है, इतने अपनेपन से जब आप कुछ लिखते हैं तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। बाबू अंसारी जी का भी मेल आ चुका है, देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से आपने हमें लिखा है, कैपिटल में लिख दिया है तो अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ हमको दिख रहा है। आपने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हसन सर, कैसे हैं आप? प्रोग्राम एकदम झमवा झमौवा लग रहा है। सर मूड बिल्कुल मस्ती मस्ती वाला हो रहा है। चलिए भाई, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरती के साथ गुजर जाए, मस्ती के साथ भी गुजर जाए। नसीब अंसारी साहब ने ये मेल किया है, साथ में मुंडन अंसारी हैं, कुलदीप गुप्ता हैं, बाबू अंसारी, इतने लोग। अच्छा, मेल तो बाबू अंसारी जी ने किया है, ये नाराज़ हो जाएंगे बाबू जी, कह देंगे नसीब अंसारी को कह दिया। अरे आप ही के भाई हैं, कोई बात नहीं। और आपने एक साथ में एक छोटा सा वीडियो जो क्लिप भेजा है जिसमें डांस चल रहा है, वो हम देख रहे हैं इस वक्त, और झमझमौवा हुए जा रहे हैं देख देख के। आनंद तिवारी जी, आपको भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद गाना आप तक पहुँचाएंगे। लिखा है कि हर एक

0: शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर लो जो पत्थर को भी तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल लो इतना कि हौसला देखकर मुश्किल आना ही छोड़ दे। जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है आज। चलिए उम्मीद हम भी ऐसा रखते हैं। आनंद तिवारी जी ने दारू कुइया मल्लावा हरदोई यूपी, और इस समय हम भिवानी राजस्थान में। सुना ये भी बड़ा अच्छा ट्रेंड है भाई, कि आपने ये भी बता दिया, ये अपना पता भी बता दिया, फिर आप कहाँ सुन रहे हैं। अब आपसे मिलने हम पता चला कि यहाँ पते में पहुँच जाए, हरदोई जाना था कल हमको, हमने सोचा आनंद जी से मिलेंगे, लेकिन आनंद जी ने लिख दिया कि भिवानी राजस्थान में सुन रहे हैं। अब राजस्थान हम आएंगे अगले हफ्ते, तब आपसे मिलेंगे। चलिए गाना एक और बजा देते हैं और उसके बाद फिर लौटेंगे।
1: यार जदों दी एंगेजमेंट हुई है उन्हें मैसेज का जवाब तो की देना, वो तो कॉल्स भी नहीं चुक रहा।
0: कुछ बातचीत कर रही है मैडम पहले, है ना, फिर उसके बाद धीमे धीमे गाएंगी। गाओ भाई गाओ। हाँ हाँ आ गए।

0: కొత్త ఆదత్ పాలో.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
4: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

जी, और ऐसे ही लाखों में एक रेनबो भी है और रेनबो में हम लोग भी हैं। रेनबो कैफे इस वक्त सुन रहे हैं, 9:23:51 हो चुके हैं। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूं, और आपके ढेर सारे मेल हम तक और पहुंचते बिल्कुल नीचे तक सरकते चले जा रहे हैं। फिर आप कहेंगे हमारा तो नीचे दब गया, तो फिर से भेज देंगे एक, तो फिर से मत भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा ईमानदारी के साथ कि आपका कोई मेल छूटे ना, मैं पढ़ दूं। अरविंद दुबे जी, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, इतने सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। और लिखा है कि वैसे तो मेरा मेल हमेशा शामिल हो जाता है, फिर भी विशेष आग्रह है कि मेल शामिल करें। भोजपुरिया, तड़का, हरियाणवी हिट्स, पंजाबी धमाल, अवधि, अपनापन वाले गीत गजब बवाल मचा रहे हैं। अच्छा, हम सभी पूरे परिवार के साथ रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम सुनते हैं, और अरविंद दुबे जी ने ये मेल हमको किया है, धर्मदेव पोस्ट, छठा जिला, मिर्ज़ापुर से। बहुत बहुत शुक्रिया इस संदेश के लिए। और देखिए, आपको मैंने शामिल कर लिया। सोनू भार्गव जी, आपने लिखा है कि गुड इवनिंग डियर सर जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई भी बुंदेली सॉन्ग सुना दीजिए। फरमाइश तो देखिए नहीं है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि सब इधर से उधर से उधर से जितनी भी जगह है ना, चारों दिशाओं में क्या बल्कि दसों दिशाओं से लाला के संगीत यहाँ पर इकट्ठा कर दें। तो ये मेल कहाँ से आया है? ग्राम चक उमरी, झरेखापुर जिला सीतापुर से आया है। वकील अहमद साहब, आपका भी मेल आ चुका है, और आपने

है कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, जल्दी जल्दी आया कीजिए। रेनबो कैफे में गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, आप भी आकर खा लें। अभी आपने सैटरडे को भी हमसे यही बात कही थी, ऐसा तो नहीं कि वही आपने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया? या हो सकता है अब इसी वक्त खाना खाते हो, बहुत टाइम के पक्के होंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, मैंने पढ़ दिया है और शुक्रिया इसके लिए। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथौरी, जिला सीतापुर, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और अहमद नवाब, सबके नाम आपने लिख दिए हैं, लिखा तो आप ही ने। और अगला मेल वारिस अली खान साहब का मेल है। अनवारुल भाई, आदाब अर्ज है, मैं दिया हूँ, मेरी फितरत है उजाला करना, वो समझते हैं कि मजबूर है जलने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर आपने लिख के भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखते हैं कि प्रचंड गर्मी ऐसे में मूवी यारियां का ट्रैक पानी पानी बजना चाहिए। सही बात है, पानी वाले गाने बजाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, बल्कि कहिए तो बारिश वाले बजा दें। चलिए ये फरमाइश ही नहीं है, लेकिन गाना अच्छा है जो आपने लिखा है, आज आप 12 बजे तक जगाएंगे। हाँ भैया, आप

शुक्रिया इसके लिए। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथौरी, जिला सीतापुर, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और अहमद नवाब, सबके नाम आपने लिख दिए हैं, लिखा तो आप ही ने। और अगला मेल वारिस अली खान साहब का मेल है। अनवर भाई आदाब अर्ज़ है, मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना, वो समझते हैं कि मजबूर है जलने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर आपने लिख के भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखते हैं कि प्रचंड गर्मी ऐसे में मूवी यारियां का ट्रैक पानी पानी बजना चाहिए। सही बात है, पानी वाले गाने बजाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, बल्कि कहीं तो बारिश वाले बजा दें। चलिए ये फरमाइशी नहीं है, लेकिन गाना अच्छा है जो आपने लिखा है, आज आप 12 बजे तक जगाएंगे। हाँ भैया, आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा। एडवोकेट वारिस अली खान साहब ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमें ये मेल किया है, शुक्रिया हमारे हमें इस मेल के लिए। और अगला मेल अमित यादव जी आपका है। सर जी, मुझे आज के गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सलाल अनवारुल जी, गुड इवनिंग, आई एम शिया यदुवंशी, गंगा गंज रोड, भानमऊ विलेज, नकटवा, बाराबंकी। देखिए हम पूरा पढ़ते हैं, पता आपका। और लिखा है कि अच्छा अच्छा आपको जो प्रोग्राम अच्छे लगे थे आपने वो भी लिख दिए, उनके भी कई लोगों के आपने नाम भी लिखे हैं, शुक्रिया। और मैंने पहले भी कहा था कि प्रोग्राम के बारे में कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो चलिए बुधवार को जो हमारे कार्यक्रम होता है उसमें आप कहिएगा। सुल्तान रजा साहब का भी मेल आ चुका है और आपने लिखा है, अनवारुल जी अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्ज़ी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, ज़ीशान रजा, मोनिस रजा, सादिक रजा और अम्मी पापा, बाकी FM रेनबो 100.7 भाई वास्तव के लिए लिख दिया है। और टू अटैचमेंट, भाई वाह, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है अटैचमेंट के लिए। परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हों तो सब साथ हों। चलिए मजाक के लिए अच्छा है, सबसे क्यों किसी के 12 बजाइए। पढ़ना लिखना समझदार बनना, मगर इतना भी समझदार मत बन जाना कि चाय के नुकसान बताने लगो। अच्छा, ये चाय के शौकीन है और इसलिए इन्होंने लिखा है कि जितने भी समझदार बन जाओ चाय के बारे में कुछ ना कहना, चाय को कुछ ना कहना भाई। और ये बहुत अच्छी बात कही है, हम भी यही कहते हैं। हाँ नहीं तो चलिए गाना बजा देते हैं, 9:28 हुए, मेल आपके बहुत सारे आ रहे हैं। और अच्छा मुझे पता है कि आज जब मैं यहाँ पर होता हूँ ना तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं, उनको मेरा नंबर पता है, तो कुछ लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे संदेश भेजने लगते हैं या मैसेज करने लगते हैं या कभी कभी फ़ोन भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे जो ऑफिशियल ID है FM@lucknow.com यहाँ पर आप मेल करेंगे तो हम ज़रूर शामिल करेंगे। और वैसे भी आज मेरा फ़ोन जो है वो लॉक हो चुका है, तो फ़ोन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मुझे पता नहीं है, मुझे बड़ा दिक्कत भी हो रही है बिल्कुल, क्या बताएं। ये मोबाइल देखिए उठाया मैंने, ये मेरे पास रखा हुआ ये रख दिया, कुछ नहीं आ रहा, ये बोल नहीं रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप फ़ोन कर रहे हैं हम उठा नहीं रहे। हाँ तो बस अभी हमको भी फ़ोन करना है, मुझे भी फ़ोन की बड़ी ज़रूरत है, तो हमारे ब्रॉडकास्टिंग असिस्टेंट यहाँ पर उबैद भाई बैठे हुए हैं, अभी हम इनसे फ़ोन मांगेंगे और इनके फ़ोन लेके एक फ़ोन करेंगे बड़ा व्यक्तिगत, आपको बताएंगे नहीं किसको कर रहे हैं। चलिए गाना हम बजा दे रहे हैं आपके लिए और उसके बाद जब लौटेंगे तो बहुत सारी मेल और भी हैं वो भी पढ़ेंगे।

0: करो।
1: बस करो भैया, राजा जी का दिल विल ना टूटे और राजा जी जहाँ रहना चाहे, घर में वहाँ रहे, चाहे पलंग के ऊपर रहे या पलंग के नीचे छुप के रहे, उन्हीं का घर है ना। तो डरते वरते किसी से नहीं है। 9:32 हो चुके हैं और रेनबो कैफे आज अनवारुल हसन के साथ आप सुन रहे हैं। सावित्री देवी जी, आपका मेल आ चुका है। गुड इवनिंग डियर अनवारुल सर जी, कैसे हो आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जी, हंस हंस कर बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा हंस हंस कर, हम फंस गए थे हंसने में यहाँ पर, यानी पढ़ने में इसको। हम विलेज भारतपुर बरगदही से लिख रहे हैं, अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारे साथ अनंत, ईशान, गुड़िया, ज्योति भाई और ज्योति भी आपका प्रोग्राम सुन रही हैं। थैंक यू। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जो ही बने रहिए। विराज जी, आपको भी पढ़ देते हैं जल्दी से। विराज मौर्य जी ने हमें लिखा है, लखीमपुर खीरी पलिया कला से मेल कर रहे हैं। ये प्रोग्राम रोज़ सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर कृपया एक बार ये मेल मेरा पूरा पढ़ लीजिएगा। अरे पढ़ दिया हमने पहले, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम शामिल करने के लिए और मेरे मामा ध्रुव कुमार मौर्य जी का भी। अच्छा ये तो हम पढ़ चुके थे पहले ही आपको। हाँ ये वही है जो अपना बैठे मार्केट में वहाँ से मेल कर रहे हैं बैठे बैठे। आयुषी मौर्य जी, आपका भी मेल आ चुका है। पॉप टाइम प्रोग्राम नहीं है ये, इस वक्त रेनबो कैफे। चलिए कोई बात नहीं, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बस इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है सर जी, आप आते हैं प्रोग्राम में तो चार चांद लग जाते हैं। चांद वैसे है बाहर आज, देखिएगा। विलेज मैनी पोस्ट औरास डिस्ट्रिक्ट उन्नाउस, इस टाइम न्यू अशोक नगर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ और वहाँ पे सुन रही हूँ। चलिए आप वहाँ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी कि आप रेनबो के साथ आपका जो रिश्ता है, जो नाता है, वो आपने यूँ ही बना कर रखा हुआ है। हाँ मैंने कहा कि ये जो पीछे नहीं बजाते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है, इससे टेम्पो बना रहता है ना। देवेश जी आपका भी आ चुका है मेल हमारे पास। देवेश भास्कर जी चिन्हट लखनऊ से आपने लिखा है, लिखा है अनवारू सर आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपको भी नमस्ते। आज काफ़ी समय के बाद आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब आप लगातार सुनते नहीं है। देखिए अभी मैं शनिवार को भी था, है ना, तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, बस ये अच्छाई और ये मोहब्बत ऐसी बना के रखिएगा। और ये एक मेल है जो दोबारा आ चुका है, चलिए मैंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि इसको भी पढ़ चुके हैं। एक और मेल है, ये भी दोबारा आया है और तीन मेल एक के बाद एक हमारे पास आए हुए हैं। इनमें से एक मेल हम पढ़ देते हैं क्योंकि सब में वही लिखा होगा। मेरा नाम शिवराज है और मैं बबीरहा जैनाबाद ज़िला बाराबंकी से हूँ। सर जी कोई भी गाना सुना दीजिए, भोजपुरी। देखिए इससे पहले ही भोजपुरी गाना बज रहा था, यानी आपने जब 9 मिनट पहले मेल किया तो उसके बाद ये गाना बज गया, तो यानी आप मान लीजिए कि आपकी फरमाइश पूरी हो गई, जबकि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। तालिब अंसारी साहब का मेल ग्राम राजा कटरा बाराबंकी से हमारे पास आया है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, और पिछले प्रोग्राम आबशार बहुत उम्दा लगा और जो गज़ल नुमा गीत, वो गज़ल ही थी सब। हाँ एक गज़ल ऐसी थी जो थोड़ा सी फास्ट थी, तो आपको मैं समझ रहा हूँ कि किसकी बात आप कर रहे हैं। वो उसमें आपने बहुत फुली जो है आपने कहा है कि मैंने इंजॉय किया है। अब धमाल वाला शो जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, हंस रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ थोड़ा सा मिस किया ये प्रोग्राम, बट कभी अच्छा थोड़ा सा आप नहीं सुन पाए थे, कोई बात नहीं, अब आप जुड़े हैं लगातार तो ऐसे जुड़े रहिए। अजय सिंह आपका मेल ही पढ़ देते हैं क्योंकि मेल बहुत आ चुके हैं हमारे पास। गुड इवनिंग प्रिय आरजे अनवारुल सर जी, कैसे हैं आप? सर प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, गाने कम बजाइए सर।

नहीं कम्बा जाइए, आप गाने तो हम लोग हर टाइम सुनते हैं सर, आप तो बस बोलिए। मैं भी कहने जा रहा था कि अभी कोई ये ना कह दे कि आप बोलते चले जा रहे हैं तो आप ही की मेल पढ़ रहा हूँ मैं, है ना सर। आपकी इतनी अच्छी बातें सुनने को जी तरसता है, हमारा भी तरसता है, हम खुद तरस जाते हैं। प्लीज़ सर, आप इतना अच्छा बोलते हैं तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, आपने खा लिया? आप देखिए दुखती रख पे हाथ रख दिया इन्होंने, यहाँ कहाँ खाना मिलेगा बताइए आप। अब खाना मुँह में रखेंगे ऐसे चप चप करेंगे तो बोलें कैसे। सर 12 बजे तक सुनूंगा मैं अजय कुमार सिंह, सीतापुर मेल शामिल करने के लिए धन्यवाद। देखिए मैं तो रात में घर गया खाता हूँ, 1:15 पे मेरा खाना होगा आज, ऐसा ही होता है रात वाले प्रोग्राम में, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम खाना खा पाएँ। और स्टूडियो में वैसे भी हम लोग कुछ भी कह लें लेकिन स्टूडियो में कुछ भी चीज़ खाना पीना कुछ भी अलाउ नहीं होता है। हाँ पानी की बॉटल ज़रूर मेरे पास रखी, इतनी छूट है हमारे लिए, हम सब के लिए, और उसको भी संभाल कर रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मशीनरी होती है तो उसमें नुकसान हो सकता है अगर कोई चीज़ गिर जाए तो, या कोई खाने की चीज़ गिर जाए तो चूहे आ सकते हैं या कॉकरोच हो सकते हैं या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हालाँकि सबका बहुत ध्यान रखा जाता है साफ़ सफाई का, तो बस इसलिए मैंने क्या बता दूं आपको। गुड इवनिंग सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ रहा है जब आप हम लोगों का नाम लेते हैं, नाम लेने में गरम कटार से, इसका क्या मतलब हुआ? फिर से पढ़ रहे हैं हम, है ना, लोगों का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं में गरम कटार से इस समय प्रोग्राम। अच्छा कोई जगह का नाम है मुझे लगता है जहाँ से आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, शिवम शुक्ला जी सुन रहे हैं, बस शिवम शुक्ला जी का नाम मैंने ले लिया क्योंकि उनको तभी अच्छा लगता है जब उनका नाम लिया जाता है। तो अब हम जल्दी से गाना आप तक पहुँचाएँगे और लीजिए, अब आप कहेंगे लीजिए एक फरमाइश पूरी हो गई आपकी।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी और 9:40 हो चुके हैं और यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम रेनबो कैफे अनवारुल हसन के साथ। और एक

जिसमें कढ़ाई है और कढ़ाई में मिठाई है जी। और ये सावित्री देवी जी ने भेजी है, लिखा है कि सर जी मिठाई बना रहे हैं, यानी ये हमको ललचवा रही हैं। ये कुछ रबड़ी अबड़ी कुछ बन रही है, बड़ी दूध में और सब में और बड़ा कसा जा रहा है उसको, चला चला के। चलिए आपने सबूत दे दिया है और अच्छा लगा देख के। खाना दिखाया मत करिए, खाना दिखाया नहीं आता, चोरी से खाया जाता है। राजेश कुमार जी का मेल आ चुका है, गुड इवनिंग अनवारू सर जी, प्रोग्राम सुनकर मस्त लग रहा है सर, हम खाना खा रहे हैं, आप गाने बहुत प्यारे चुनकर बजा रहे हैं, आपको ईमेल बुद्धेश्वर लखनऊ से भेज रहे हैं। भाई वाह, वाकई लखनऊ अंदाज ही है ये आपका, जिस तरह से आपने लिखा है, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए उससे पता चल जाता है कि आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़िम उस्मानी साहब का मेल हमारे पास महमूदाबाद सीतापुर से अभी अभी आया है। सलामुअलैकुम अनवारुल हसन जी, वालेकुम सलाम, मज़ा आ रहा है सुनने में, आपकी आवाज़ अच्छी चली, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया, अच्छा, सोशल मीडिया से भी आप कह रहे हैं कि हमारी जान पहचान है, हाँ हम भी झांक लेते हैं कभी कभी वहाँ पर आपको, और कुछ लोग तो झाँक के चले जाते हैं, देखते सब रहते हैं, है ना। एक ये भी बड़ा ट्रेंड है सोशल मीडिया में कि लोग जो है नज़र बहुत रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, और अगर बहुत अच्छी बात पसंद आ जाती है ना, तो जो बहुत जानने वाले होते हैं वो लाइक वाइक नहीं करते हैं, वो चोरी से झाँक के चले जाते हैं, थोड़ा सा जल के थोड़ा सा कुड़ के। ऐसा ना किया करिए, लाइक कर दिया करिए, हम भी कर देंगे आपको। राशि का मेल आ चुका है, गुड इवनिंग रिस्पेक्टिव सर जी, उम्मीद है बहुत अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर जी, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, ईमेल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तसल्ली से, सबने अपनी अपनी हाजिरी लगवा दी है तो मैं पीछे क्यों रहूँ, है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कभी पीछे मत रहिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, लखनऊ से ही आपने हमें मेल किया है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से झूम रहे हैं, अरे वाह, मुझे लग रहा है कि आज पूरे घर में तहलका मचा दूंगी मैं, नाच नाच कर तोड़ फोड़ कर डालूंगी। भाई ऐसा मत करिए, कोई मुझे पकड़ लो नहीं तो गिर जाएंगे। चलिए गिरिए नहीं है, और अच्छी बात है, कभी कभी ऐसा करना भी अच्छा लगता है। बहुत सारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी समस्याओं में हम लोग जूझते रहते हैं, तो जब थोड़ी देर हंसी मजाक हो जाता है ना, और आप थोड़ा सा खुल के हंस लेते हैं, ये भी एक थेरेपी है, और बहुत से लोगों को इस थेरेपी को लेने के लिए आर्टिफिशियल हंसी हंसनी पड़ती है। मैं कई सारे ऐसी जगह लखनऊ में जानता हूँ जहाँ सुबह आप जाइए तो वहाँ पर जो है वो ठाके लगवाए जाते हैं, और लोग ठाके लगा लगा के हंसते हैं, बेवजह में भी लगाते हैं, क्योंकि इससे हमारे फेफड़ों में अच्छी ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन अच्छे जाने से ऐसे बहुत आराम मिल जाता है। तो ऐसे तो बिना वजह हंसने से अच्छा है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ ख़ास तौर से उनको भी वक्त दीजिए, सिर्फ मोबाइल में ही चिपके रहना और उसी में वक्त गुजार देना नहीं ठीक है, थोड़ा सा अपने परिवार के साथ भी हंसिए मुस्कुराइए, ठाके लगवाइए उनको, तो सबको अच्छा लगेगा, और उनको ये भी अच्छा लगेगा कि आप उन्हें समय दे पा रहे हैं। निर्मल गुप्ता जी, आपने मेल हमको किया है, भेटिया लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश में ही हम लोग हैं। मैं निर्मल गुप्ता, जनपद लखीमपुर खीरी ग्राम भेटिया से आपके कार्यक्रमों का नियमित श्रोता हूँ, आपकी मधुर आवाज़, बेहतरीन प्रस्तुति और श्रोताओं से आत्मीय जुड़ाव कार्यक्रम को विशेष बना देते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत हर कार्यक्रम, अब तो बहुत तारीफ आपने बहुत ज़्यादा कर दी भाई हमारी, अब हम अकेले बैठे हैं, हम बार बार कहते हैं कि दो लोग हों इसमें तो हमें आराम हो जाए, आप हमारी तारीफ़ करें, और हम अपना जो भी हमारे साथी हो हम उनसे कह दें धीमे से कि हमारी तारीफ़ आई, पढ़ दो इसको। चलिए पढ़ देते हैं हम, मनोरंजन और सकारात्मक ऊर्जा से कार्यक्रम भरपूर होता है, कृपया मेरी ओर से आपको और एफएम रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हूं, यदि संभव हो तो मेरे नाम और मेरे गांव का उल्लेख अपने कार्यक्रम अवश्य करें। कर दिया है हमने, और दो बार हो गया, क्योंकि मैंने पहले नीचे पढ़ा, फिर आपने जो ऊपर जहाँ से मेल लिखा है ना उसमें भी लिख दिया है, तो चलिए बहुत खुश रहिए निर्मल गुप्ता जी, और ऐसे ही शुभकामनाएं संदेश, क्या आप खुद भी, आपको भी शुभकामनाएं कि आप रेनबो के साथ जुड़े हैं। अतुल कुमार यादव जी ने ग्राम खुरेहटा खैराबाद सीतापुर से मेल किया है, और हेलो सर जी कैसे हैं, सभी भाइयों को राम राम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। सर एक शिकायत है, कई बार हमारे मेल शामिल नहीं किए गए हैं, अब देखिए हम तो आता है तो सब पढ़ देते हैं, और सभी लोग कोशिश करते हैं, कभी कभी मेल देर में पहुँचते हैं हम तक, जब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मैं बिल्कुल ख़त्म होने को होता है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है, वैसा हम लोग कोशिश करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे मेल शामिल जब हम बाकी का कर रहे हैं, तो आपसे कोई दुश्मनी थोड़े, आप तो वैसे भी खैराबाद में रहते हैं, इतना पुराना आँख का मशहूर अस्पताल है वहाँ पे, है ना। प्लीज़ सारे मेल शामिल कर लिया करिए, अच्छा लगता है जब किसी का नाम बोला जाता है, और आप लिख रहे हैं कि आप का साथ ही रहूँगा 12 बजे तक, चलिए ज़हर नसीब, हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे साथ रहेंगे। राजेश कुमार ने लिखा है कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके रेडियो के माइक में

पक्का चींटी आ जाती होंगी। अब देखिए हम कह दें आ जाती तो आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब गंदा रहता, हमने झांक के देखा चींटी तो नहीं है, है तो नहीं वैसे अभी ही। अवधेश कुमार जी आपका मेल भी आ चुका है, नमस्ते। एफएम रेडियो हमारे जीवन का एक अनूठा और सुलभ हिस्सा है, यह न केवल बेहतरीन मनोरंजन संगीत प्रदान करता है बल्कि हमें ताज़ा जानकारी से भी जोड़े रखता है। अवधेश कुमार माधवपुर बाराबंकी से आपने मेल किया है और हम आपको एक बढ़िया सा गाना सुना रहे हैं।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

जी गाना वाना गा के निकल लिया वो लोग, 9:53 हो चुके हैं और आपके, मुझे लगा था कि मेल कम है लेकिन अचानक से एकदम से ढेर सारी मेल आ, उफो। अब पढ़ने तो पढ़ेंगे, देखिए जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। मुनेश कुमार राज जी ने हमें गांव भानपुर हरोवा ज़िला लखीमपुर खीरी से भेजा है और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। आरजे जी राम राम, आपको भी राम राम, पूरी टीम को नमस्कार। कल आ रहे हैं लखनऊ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद रजिस्टर का स्थापना दिवस है तो आप वहाँ पर आने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, लखनऊ आइए और लखनऊ का भी आनंद लीजिए। बड़ी लंबी आपने भाई, थोड़ा सा मेल को ज़्यादा बड़ा हो गया है, आपको अच्छा लग रहा है, बस बढ़िया है। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम में चल रहा है मस्त मस्त, पर ये गर्मी डाल रही है रंग में भंग, और कार्यक्रम की प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है, आपको अच्छा लगता है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जमशेद जी वैसे नहीं है इस वक्त, आप निशा अभी रेडियो ट्यून किया है, मैं दूसरा व्यक्ति हूँ, जमशेद जी तक आपकी तारीफ पहुँचा दूँगा। और एक संदेश हमारे पास अयोध्या प्रसाद जी का लालपुर सीतापुर से, और वो लगातार हमें सुनते हैं और जब रास्ते में जाते हैं ना तो बताते हैं कि हम हेलमेट के अंदर अपना मोबाइल घुसेड़ लेते हैं, यानी फंसा देते हैं वहाँ पे और रास्ते में सुनते चले जाते हैं। बस आवाज़ थोड़ी सी कम रखा करिए कि बाहर की आवाज़ें भी आपको सुनाई पड़ती रहें तो कोई दिक्कत ना आए। डियर आरजी अनवर हसन जी नमस्कार, रेनबो कैफे कार्यक्रम जैसे शुरू होता है वैसे ही अच्छा लगता है, सिंदूरी शाम के समय किसी म्यूजिकल कैफे में बैठे हो ऐसा लगता है, और आप जब अपने शेर व शायरी से इस प्रोग्राम में और ज़्यादा रोचकता लाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत सिंह जी कैसरगंज बहराइच से, आपने हमें ये मेल किया इसके लिए। और अहमद नवाब जी आपका भी मेल आज आ गया, हेलो अनवर सर आप कैसे हैं, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप मूड ऑफ को मूड ऑन कर देते हैं बिल्कुल पंखे की तरह। सॉरी आज लेट हो गई, कूलर का पंप नहीं चल रहा था, मैंने ही ठीक किया। अरे वाह क्या बात है, आपके घर का कूलर ना चले तो मुझे बुला लिया, अरे हम खुद कर लेते हैं, आज हमने फोल्डिंग पलंग सही करी है घर में। ये फोटो आपको भेज रही हूँ, बताइएगा कैसी है। अरे वाह हमारी फ़ोटो बनाई है इन्होंने AI से और हमारी, अरे वाह क्या बात है, ये लीजिए, हम फॉरवर्ड में गए और ये हमने फॉरवर्ड कर दिए, वाह वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया।

या और जल्दी से और भी मेल पढ़ देते हैं क्या, ताकि सब सब लोगों के मेल शामिल हो जाए। कुलदीप मौर्य धनीपुर मितौली लखीमपुर खीरी से लिख रहे हैं, राधे राधे। इन सभी लोगों के नाम ले लीजिए, कुलदीप मौर्य, पूनम मौर्य, मनोज मौर्य, प्रतीक मौर्य, कुणाल मौर्य और पूर्वी मौर्य। आपको आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, यानी आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी ने लिखा है कि सर आपसे मिलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, कैसे मिले आपसे, आप रात में आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो रात ही मिल लीजिए, कौन मना कर रहा है, हैं? प्रोग्राम आप रेडियो से में मुलाकात करी रहे हमसे, है ना? चलिए आप कभी आएंगे यहाँ तो मुलाकात भी आपसे होगी, ऐसा नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। सीनू हसन जी ने मेल किया है कि हेलो अनवारुल सर, आज मैं आपके ही शहर में सुन रहा हूँ, बालागंज, और आप की आपकी क्लिप लाइक करता हूँ। अच्छा, कौन वाली? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सभी श्रोताओं और को और फेवरेट आरजी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारी सी याद, आप कैसे हैं? और भैया लोगों, पानी खूब पियो, गर्मी बहुत पड़ रही, धूप में बाहर निकलने से बचे और सुनते रहें एफएम रेनबो। और आपने हमें नागपुर महाराष्ट्र से ये मेल किया है, वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया इस ओर ध्यान दिलाने के लिए। और ये सही बात भी है, गुलिफ्शा सिद्दीकी, आपका मेल भी आ चुका है, आपने लिखा है कि मैं संडीला में इस प्रोग्राम को सुन रही, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आज थोड़ी बिजी थी तो मैंने अभी अभी रेडियो ऑन किया तो सोचा मेल कर दूँ। चलिए बहुत अच्छा आपने सोचा और उस पर आपने अमल भी किया, इसके लिए आपको और भी शुक्रिया। साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा, आप सभी लोग सुन रहे हैं। एक मेल और बचा है, अब मेल प्लीज मत कीजिए, वक्त बहुत कम बचा है। आदरणीय अनवारुल सर जी, आरजे अनवारुल सर जी नमस्कार, मैं आपका नियमित श्रोता महेंद्र देपन, गांव रूण, जिला नागौर, राजस्थान में, और एक बार फिर आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ जुड़ा हूं। और आज हमारे सेठ जी की, अच्छा, मेरी जनसरी शादी की सालगिरह थी, जिसकी वजह से मैं दिन भर तैयारियों में काफ़ी काम में व्यस्त था। भागदौड़ के कारण मुझे हमेशा की तरह आपके लिए शानदार और धमाकेदार पोस्टर बनाने का समय नहीं मिल पाया। अरे कोई बात नहीं यार, आपने मेल किया, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दिल से याद करने वालों जो है उनकी दूरी कभी कम नहीं होती है, और काम से फ्री होते ही हमने फौरन लखनऊ की मुझे याद आई, रेनबो की याद आई, और बस तुरंत हम आपके साथ शामिल हो गए। और आपको मेरे बोलने का अंदाज़ा अच्छा लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि गानों का चयन हमेशा की तरह आज भी समा बांध रहा है, काम की थकान आपके शो को सुनते ही पल भर में दूर हो गई। चलिए महन जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम बचा है इसलिए जल्दी से ये दीवानी सी लड़की जो है इसको हम इसके साथ आपको छोड़ जा रहे हैं इस गाने के साथ, और आपसे इजाज़त लेते हैं, बस थोड़ी देर में लौटेंगे और हम तो चलिए बस इजाज़त दीजिए, रजनीगंधा की खुशबू आप तक पहुंचेगी अनवारुल हसन के साथ, लौटते हैं थोड़ी देर में।

10 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों और अभिभावकों के नाम पाती लिखी है। इसमें उन्होंने बच्चों को न सिर्फ छुट्टियों का सदुपयोग करने की राह दिखाई है, बल्कि इको फ्रेंडली पर्यटन और जिम्मेदार जीवन शैली को अपनाने की सीख भी दी है। मुख्यमंत्री योगी ने लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां आप सभी के लिए आनंद, उत्साह और नए शोध का समय लेकर आती हैं। स्कूल की व्यस्त दिनचर्या से थोड़ी राहत मिलते ही मन कुछ नया सीखने, नए स्थान देखने और अपनों के साथ समय बिताने को उत्सुक उठता है। किशोर एवं युवा इन छुट्टियों में नई भाषा या नया कौशल सीख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज नगर निगम कार्यकारिणी के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों पर आधारित 3 साल बेमिसाल पुस्तिका का विमोचन और नगर निगम की लगभग 400 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज आज विकास, सुशासन और सुरक्षा का नया मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने महापौर गणेश केसरवानी और नगर निगम की टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि नगर निगम को सदी के सबसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्राम विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग की सभी कार्य योजना पर ठोस व प्रभावी एवं त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपने कैंप कार्यालय 7 कालिदास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। जनपद मैनपुरी में आगामी 31 मई को आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने केंद्र व्यवस्थापकों, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा हर हाल में नकल विहीन, शांतिपूर्ण और सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराई जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर प्रत्येक परीक्षार्थी की सघन तलाशी ली जाए तथा किसी भी अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति न दी जाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, रात के

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

मेरी आंख बंद थी जब तलक वो नजर में नूरे जमाल था, खुली आंख थो न खबर रही कि वो ख्वाब था या ख्याल था।

खिड़की से बाहर देखिए तो उस पार चांद आधा सा टंगा हुआ है और कमरे में थकी और खामोशी बसी है। दीवार पर घड़ी की टिक टिक जैसे जैसे पुराने दोस्त की धीमी सी सरगोशी। थोड़ा सा दिल भारी है, थोड़ा सा दिमाग उलझा हुआ है। बातें बहुत सी हैं पर लफ्ज कम पड़ जाते हैं अक्सर। यादें भी अजब चीज हैं, चलते चलते अचानक आकर कंधे पर हाथ रख देती हैं और हम चौंक कर मुस्कुरा देते हैं। ऐसा ही एक और वक्त, 10:06:19, रजनीगंधा का ये सफर और आपके दोस्त अनवारुल हसन का साथ। स्वागत है सफर में। नमस्कार।

जी, और कोई जब आ जाता है आपका अपना, तो मन तो खुश हो ही जाता है, मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर भी रहती है, और आपका काम में भी मन लगता है, और आपको भी लगता है कि जो मेहमान है, जो ख़ास है, जो आपका अपना है, उसके लिए क्या कर दिया जाए कि ये पल यादगार बन जाए। तो बस थोड़ी सी कभी कभी मन की खिड़की भी खोल दीजिए, ठंडी हवा भी आने दीजिए, जहाँ पर कुछ नरमाहट भी है, कुछ खुशबू है, कुछ यादें हैं, थोड़ा सा तन्हा सा सुकून भी है, बल्ब की पीली रोशनी में परछाइयाँ भी थककर बैठ गई हैं, और तकिए की सिलवटें अधूरे ख्वाबों की तरह है, अधूरे मगर प्यारे से ख्वाब। तो इन प्यारे ख्वाबों को और भी मोहब्बत के साथ जवा होने दीजिए, बढ़ने दीजिए, और अपने दिल के करीब कर लीजिए उनको जो आ गए हैं अभी अभी।

सुर्ख जोड़ा वो पहने महकते हुए कुछ बहकते हुए कुछ झिझकते हुए उनकी सूरत कयामत से कुछ कम न थी उनका पर्दा हटाना सितम हो गया।

जब दुनिया के शोर में तुम्हारी आवाज दब जाए, मैं धीरे से कहूंगा तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि हम साथ हैं। इसलिए सारे नजारे बाकी हैं अभी, और नजारों का लुत्फ उठाना भी बाकी है। 10:26:06 हो चुके हैं, बहुत सारे छुपे हुए नजारे सामने लाने का काम रजनीकंदा में आज मैं कर रहा हूं। मैं आपके साथ आपका दोस्त अनवारुल हसन।

अपने सपनों को सजाते हो। इसलिए याद रखना, चाहे वक्त बदले, हालात बदले, लोग बदले, पर मेरा वादा नहीं बदलेगा। हर हाल में ये साथ यूं ही बना रहे, और इसलिए भी क्योंकि ये रिश्ता कुछ खास है।

सफर लंबा हो या छोटा, बारिश हो या धूप, हर मोड़ पर, हर कदम पर मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। गिरे तो संभाल दूंगा, रुके तो हौसला दूंगा, और जब तुम उदास हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारी मुस्कुराहट वापस दिला दूंगा। रिश्ता सिर्फ खुशी में नहीं बनता, दर्द में, खामोशी में, गलतियों में, इन सब में, और मैं इन सब के बीच तुम्हारे साथ हूं, आज, कल और हर वो कल जिसमें तुम

0: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बनके पिघल जाता है आंखों से कभी। पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तानें, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जागती रातों को सपनों का खजाना मिल जाए, तुम जो मिल जाओ तो जीने का बहाना मिल जाए, तुम जो नजरों को उठाओ तो सितारे झुक जाएं, तुम जो पलकों को झुकाओ तो जमाने रुक जाएं।

और ये ऐसे ख्वाब हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, हर दिल के अंदर बनते हैं, बसते हैं और मिलकर भी देखे जाते हैं। खूबसूरत ख्वाब मैंने भी देखे हैं तुम्हारे लिए। उम्मीद की रोशनी और दुआओं के सिलसिले, हर पल में एक नया रंग हो, हर राह पर बस खुशियों का संग हो। तुम्हारी मुस्कुराहट से सुबह सजती रहे, तुम्हारी खामोशी में भी एक कहानी बुनती रहे। ये ख्वाब तुम्हारे लिए हैं जिनमें सिर्फ प्यार हो, अमन हो और खुशनुमा ख्याल हो। जहां थकन हो वहां सुकून मिले, जहां अंधेरा हो वहां नूर मिले और हर कल आज से ज्यादा खूबसूरत हो। बस इसी दुआ के साथ यही कहूंगा कि यही ख्वाब मैंने भी बुने हैं तुम्हारे लिए। लेकिन क्या ये जो लेकिन है ना, ये लेकिन कई सारे सवाल मुश्किल कर देता है, खड़े कर देता है कई सारे सवाल। जो चीजें आसानी से चल रही थी उनमें भी कुछ मुश्किलें पैदा हो जाती हैं कि क्या हर ख्वाब पूरा हो जाता है। कुछ ख्वाब टूट भी तो जाते हैं, टूटने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं, जिद भी हो सकती है, कुछ ईगो भी हो सकती है, अपने को ना झुकाना, चीजों को एडजस्ट ना करना, हर सवाल का जवाब दे देना। जबकि रिश्ते कभी कभी ऐसे भी बचा लिए जाते हैं कि खामोशी के साथ, कि आपको चीजें पता हैं लेकिन अगर लगे कि ये बातें कुछ तल्ख हो सकती हैं तो शायद आप उन्हें कहीं पर रोक लें अपने जुबान से बाहर आने से पहले। काफी चीजें ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं ठीक होती तो फिर क्या होता है। समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। 10:55 हो चुके हैं, अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए, हम तो लौटेंगे समाचारों के बाद भी, आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए अपने दर्दमंद दोस्त अनवारुल हसन को, लौटते हैं बहुत जल्दी।

नमस्कार। रात के 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। तुलसीपीठ के संस्थापक रामभद्राचार्य महाराज ने आज वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता का पता चलता है। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर को देखकर लगता है कि कितनी परिश्रम के साथ इसे गढ़ा गया है। आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर माँ गंगा के भक्तों को आशीर्वाद देते हुए उनकी मंगल कामना करता हूँ। श्री काशी विश्वनाथ दर्शन कर माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिंदी और

30 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुस्तिका सामान्य योग अभ्यासक्रम, प्रमुख पहलों और सार्वजनिक भागीदारी के अवसरों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे योग संगम, हरित योग, योग समावेश, योग पार्क और योग अनप्लग्ड के साथ साथ 21 जून तक की निर्धारित गतिविधियों का विवरण शामिल है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में देश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों को उससे निपटने का प्रभावी मंत्र दिया है, जिसका पालन देश के नागरिक स्वेच्छा से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी प्रकार के सरकारी दबाव या अनिवार्य आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि जनता ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए सकारात्मक सहभागिता निभाई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार जनहित और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जान आंखों से किस तरह निकले, लज्जते इंतजार बाकी है, जिंदगी में बड़ी कशिश है, अभी आपका एतबार बाकी है। लेकिन इसके बाद भी आज फिर आंसू है आंखों में और दिल कुछ कह नहीं पा रहा है। खामोशियां बहुत कुछ बोलती हैं, बस सुनने वाला कोई नहीं रहता। हर मुस्कान के पीछे छुपा दर्द, हर ख्वाब के पीछे की एक अधूरी सी रात, जिसे अपना समझा था वही बन गया सबसे बड़ी बात। आज फिर आंसू है आंखों में, लेकिन शिकायत नहीं है किसी से, बस टूटा हुआ सा एक एहसास है जो जुड़ नहीं पाया किसी भी रीत के साथ और किसी प्रीत के साथ। 11:04 हो चुके हैं। रजनीकंधा आप सुन रहे हैं अनवारुल हसन के साथ।

जमुना तट सुनसान, श्याम की मुरली चुप है। जमुना तट सुनसान, श्याम की मुरली चुप है। हो गया कौन कसूर राधिका के कंगन से, मंजिल हो गई दूर मुसाफिर चूर थकन से, चोट लगी भरपूर जमी को नील गगन से। और इस चोट का जो दर्द है वो कभी कभी दिखाया नहीं जाता, अकेले ही सहना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि इस दर्द की खबर उन्हें ना हो जिनके लिए बेकरार हैं आप, लेकिन फिर भी कुछ बातें मन में ही रहें तो अच्छा है। हालांकि सारा हाल पता है उन्हें।

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

रोशनी का ऐसा कुछ यारों ने बंटवारा किया, हम सिमट कर अपनी ही परछाइयों में रह गए। तेरी यादों के सितारे और गमे दुनिया की भीड़, भीड़ इतनी थी कि हम तन्हाइयों में रह गए।

0: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
2: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई।

0: जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

जज्बात के नर्म आंचल के तले पनाह पाते हैं इंसानी रिश्ते। सुख की छांव और दुख भरी धूप के ताने बाने से बुनते हैं, उधलते हैं, फिर बन जाते हैं बहुत सारे रिश्ते। एहसास की सुलगती चिंगारी से तपिश पाते हैं गर्म जोशी से भरे हुए रिश्ते। टूटती बिखरती उम्मीदों के साए में तनी हुई डोर की तरह कभी कभी खींचे खींचे से रहते हैं रिश्ते। और रजनीगंधा के इस हिस्से में ऐसे ही बेनाम रिश्तों की दास्तान भी शामिल है, और इस दास्तान के साथ में आपका दर्दमंद दोस्त, जी हाँ, अनवारुल हसन। और कौन,

0: सुना दे। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये घुमारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

मोहब्बत का तूफान ऐसा था कि कश्ती का सहारा भी उड़ गया और नदी का किनारा भी। कभी जिस मोहब्बत पर सबसे ज्यादा भरोसा था आज वही कहीं खोसी गई। अब वो बातें नहीं रहती, न वो रातों की लंबी मुलाकातें होती हैं, और ना ही किसी के इंतजार में धड़कता है दिल। जिंदगी तो चल रही है मगर अब उसमें वो सुकून नहीं रहता, क्योंकि मोहब्बत का सहारा नहीं है। पहले हर दर्द हल्का लगता था क्योंकि कोई अपना था जो खड़ा रहता था साथ, लेकिन हालात जब बदल जाते हैं तो आंसू भी चुपचाप बह जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा, हो सकता है सच कहते हो, पर कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पूरी उम्र साथ चलते हैं। ना किसी से शिकायत, ना किसी से उम्मीद, बस खुद से समझौता कर लेने से शायद कुछ उम्मीदें जगे या कुछ सुकून मिले, या ये समझ लेने से कि मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। 11:41 और 20 सेकंड हो चुके हैं। ऐसे ही गुमनाम हुए एक और सहारे की याद रजनीगंधा में आपके दर्दमंद दोस्त अनवारुल हसन के साथ।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

सूर्य जैसे ही छुआ जख्म जिगर बह निकला, मैं ये समझा था मेरे गम की दवा आती है। वक्त ने फिर कोई पत्थर मेरी जानिब फेंका, फिर मेरे जख्मों से रोने की सदा आती है।

ये संदेश हम सबके लिए भी है, और अगर थोड़ी सी रुकावटें आती भी हैं तो बस वही सबसे बड़ा इलाज है कि हम इस तरफ देखें कि रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, हर रात का सवेरा ज़रूर होता है। तो बस इस उम्मीद की रस्सी को थामे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और रेनबो सुनते रहिए। इजाज़त दीजिए फ़िलहाल अपने दोस्त अनवारुल हसन को, बहुत जल्द फिर हो जाएगी मुलाकात जब आप चाहेंगे। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नगर निगम लखनऊ अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से नगरीय जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़ा है। नगरीय निकायों में जितनी अच्छी सुविधाएं होंगी, उतनी ही तेजी से राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को और बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री आज यहां नगर निगम लखनऊ की 413 करोड़ रुपए लागत की 342 जनकल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वाराणसी में गंगा दशहरा महोत्सव 2026 के अवसर पर दशाश्वमेघ घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भव्य आयोजन किया गया। स्वच्छ गंगा, स्वच्छ घाट, स्वच्छ काशी और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने मां गंगा के प्रति आस्था व्यक्त की। संस्था द्वारा पिछले 9 वर्षों से चलाए जा रहे एक संकल्प गंगा किनारे अभियान के तहत लोगों को गंगा और पर्यावरण स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गंगा सेवा निधि के 11 अर्चकों और 22 देव कन्याओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य गंगा आरती की। प्रदेश सरकार ने पंचायत व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वर्तमान ग्राम प्रधानों को अस्थायी रूप से ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 27 मई से प्रभावी होगी तथा नई ग्राम

पंचायतों की प्रथम बैठक तक लागू रहेगी। बलरामपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने एवं जन सामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिए गए। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:14 पर और सूर्यास्त 6:52 पर होगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात के 12:32 हो रहे हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।